Hello.

0: स्वररंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने नवल किशोर मलिक द्वारा गाया राग रामकली सुना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:10 और ठीक 20 सेकंड हुए हैं और अब वक्त है भक्ति गीतों के कार्यक्रम वंदना का। तो दोस्तों, आज है शनिवार, तो आज का पहली जो प्रस्तुति है आज की, वो हम समर्पित करते हैं न्याय के देवता, कर्म फलदाता सूर्यपुत्र भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई शनिदेव की आराधना जीवन के कष्टों को दूर करती है, धैर्य, न्याय, संयम और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो आइए श्रद्धा से अपने मन को एकाग्र करें और भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें।

दोस्तों, मान्यता है कि जो श्रद्धा पूर्वक श्री हनुमान जी का स्मरण करता है उसके भय संकट और बाधाएं दूर होती है। वहीं शनिदेव सच्चे कर्मों का फल देकर जीवन में न्याय, धैर्य और अनुशासन का संदेश देते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से शनिदेव के कष्टदायक प्रभाव भी शांत हो जाते हैं।

इसी के साथ आज का वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन में संत कबीर के विचार।

एक बार संत कबीर एक गांव में सत्संग करने जा रहे थे। रास्ते में एक छोटा गांव पड़ता था। कबीर जी ज्यों ही उस छोटे गांव से गुजरे तो वहां के एक निवासी ने उन्हें रोक लिया और कुछ खाने का अनुरोध किया। संत कबीर ने कहा कि अभी तो उन्हें भूख नहीं, आते समय जरूर वो खाना खाकर जाएंगे। खाने की बात नहीं है कबीर साहब, असल बात तो ये है कि आपसे कुछ पूछना था, इस वजह से आपसे कुछ समय चाह रहे थे, एक गांववासी बोला। क्या पूछना चाह रहे थे? अगर सवाल का जवाब जल्द दे सका तो जरूर बताता जाऊंगा, नहीं तो शाम को आते समय जवाब दूंगा, कबीर जी बोले। यही कि भगवान हैं या नहीं, और अगर हैं तो वो हमें नजर क्यों नहीं आते, वो गांववासी बोला। सवाल सुनकर कबीर जी सोच में पड़ गए। उन्होंने पलटकर उस गांववासी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? कबीर जी बोले, मुझे ये पता होता तो आपसे क्यों पूछता, वो बोला। ग्रामवासी का ये जवाब सुनकर कबीर जी ने पासी पेड़ की डाल पर उड़ती फुदकती चिड़िया की तरफ देखा और उस ग्रामवासी से कहा, तुम शाम तक इस चिड़िया की सारी हरकतों को देखते रहो और शाम को जब मैं यहाँ से गुजरूं तो मुझे इसका सारा वाकया सुनाना। ये कहकर कबीर जी सत्संग के लिए चले गए। वो ग्रामवासी दिन भर चिड़िया की हरकत को देखता रहा। चिड़िया दूर दूर से तिनके तोड़ तोड़ कर लाती और अपना घोंसला बनाती। कभी कोई बच्चा उस चिड़िया की तरफ पत्थर फेंकता, कभी उसकी अन्य सखी चिड़ियाएं उससे लड़ाई करती, तो कभी कोई कौवा आकर उसके घोंसले को बिखेर जाता। मगर शाम होते होते चिड़िया ने घोंसला तैयार कर लिया। ठीक शाम होते ही कबीर दास जी सत्संग खत्म करके उस गांव से गुजरे और उस ग्रामवासी से मिले और पूछा, हाँ जी, आपने देखा चिड़िया दिन भर क्या कर रही थी? ग्रामवासी ने कबीर जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, कबीर साहब, आप सचमुच संत हैं। दरअसल कल जो आंधी आई थी उसमें मेरा छप्पर उड़ गया था और इसी सदमे के कारण मैंने आपसे भगवान के होने न होने का कारण पूछा था। तो क्या आपको उत्तर मिल गया? कबीर जी ने पूछा। जी बिल्कुल मिल गया, वो ग्रामवासी बोला। अब अपना नया छप्पर बनवा लो, वैसे भी वो छप्पर पुराना हो चुका था, कभी भी गिर सकता था। शुक्र करो आंधी के समय कोई छप्पर के अंदर नहीं था, कहते हुए संत कबीर शाम के साए में डूब चुकी उस पगडंडी की ओर बढ़ गए। ग्रामवासी उन्हें दूर तक निहारता रह गया।

संत कबीर के विचार पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से बालकांड का भाग 120।

विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।

0: रामचरितमानस से बालकांड का भाग 120 अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, टीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 6:55 होने को है। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार प्रसारित होंगे, उसके बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः सायंकाले पंजाबस्य जालंधर नगरात् आभासीय माध्यमेन देशस्य 20 राज्येषु पुनर्विकसितानां 75 रेलस्थानकानां उद्घाटनम् अकरोत्। एतेषां स्थानकानां अमृत भारत स्थानक

0: योजनायाः अन्तर्गतम् आधुनिकीकरणं जातम्। एषा योजना विश्वस्य बृहत्तमासु स्थानक पुनर्विकास योजनासु अन्यतमा अस्ति। प्रायः 70.5 लाख करोड़ रुपयेण व्ययेन विकसितानि एतानि स्थानकानि यात्रिसौविध्यैः समलंकृतानि सन्ति। पुनर्विकसितेषु स्थानकेषु पंजाबस्य जालंधर कैंट, SAS नगरम, श्री मुक्तसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब इत्येतेषां स्थानकानां समावेशः अस्ति। तदतिरिक्तं गुजरात, ओडिशा, दक्षिण रेल क्षेत्राणां अनेकानि स्थानकानि अपि अत्र सम्मिलितानि सन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री करटोली अंबाला रेलसेवां, अमृतसर वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस चेत्येताभ्यां हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। ह्यः जालंधरे प्रधानमंत्रिणा लोकार्पितानि राष्ट्राय समर्पितानि च एतानि पुनर्विकसितानि स्थानकानि एते द्वे रेलसेवे च रेलमार्गावसंरचना परियोजनानां भागाः सन्ति। एतासां परियोजनानां व्ययः 70.4 लाख करोड़ रुपयेण अस्ति। अवसरेस्मिन् प्रधानमंत्री अवदत् यत् 75 पुनर्विकसित रेलस्थानकानां उद्घाटनं भारतीय रेल विभागस्य विगतेषु कतिपय वर्षेषु अभवत्, तीव्र परिवर्तनस्य द्योतकं च अस्ति।
1: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: पूर्वान्ने एव प्रधानमंत्री हरियाणा राज्यस्य जिंद रेल स्थानकात् भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन इत्यनेन चालित रेलयानाय अपि हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतत् रेलयानं जिंद सोनीपत रेलस्थानकयोः मध्ये संचरिष्यति, अथ 91 किलोमीटर मिता दूरता प्रायः द्विहोरायां पूर्णं करिष्यति। वाणिज्य उद्योगमंत्री पीयूष गोयलः ह्यः एस्टोनिया देशस्य राजधान्यां ताल्लिन नगरे तत्रत्य विदेशमंत्रिणा मार्गुत साह्यकना इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्याम नेतृभ्याम भारत एस्टोनिया देशयोः मध्ये व्यापार, निवेश, अंकिकीय परिवर्तन, साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी चेत्येषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य सुदृढीकरण विषये विचार विमर्शः कृतः। अनन्तरं साख्यकना इत्यस्य उपस्थितौ मन्त्रिणा भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चम् अपि अभिसंबोधितम्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः गतरात्रौ पश्चिमबंगालराज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां सिलिगुड़ी इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। सिलिगुड़ीनगरस्य बागडोगरा विमानस्थानके आगमनावधौ पश्चिमबंगालस्य मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा तस्य स्वागतं विहितम्। श्रीशाहः अद्य जुमागाछ नगरस्य सीमाचौकी इत्यत्र VSF इत्यस्य 18वां बटालियन इत्यस्य भ्रमणं करिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका तथा द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री PV सिंधुः अद्य प्रातः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपांत्य चक्रीय स्पर्धायां चीन देशस्य चेन युफेई सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री को रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन यूफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय संजय मट्टू। Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations

ललित दीक्षित की आवाज में भी आप सुन रहे थे भजन। संगत कलाकार थे तबले पर ऋतु मिश्रा, सितार पर रईस अहमद और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। इसी के साथ संगीति का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की सुबह आपके लिए ढेर सारी मुस्कान और नई उम्मीदें लेकर आई होगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के संग।

जी हाँ, सुहानी सुबह, और उम्मीद है आपकी सुबह शुरू हो चुकी होगी। चाय की चुस्की, अखबार की सुर्खियाँ, और दिल में आज कुछ अच्छा करने का इरादा लेकर, क्योंकि दोस्तों हर सुबह हमें एक नया मौका देती है खुद से बेहतर बनने का और खुद से बेहतर करने का।

दोस्तों, अगर आज मन थोड़ा भारी है तो याद रखिए, रात कितनी भी अंधेरी हो लेकिन उस रात का अंत ज़रूर होता है और सुबह जो होती है वो नई उम्मीद लेकर आती है, नए सपनों को नई उड़ान देती है। सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, ये वो मौका होता है जब हम कल की थकान को अलविदा कहकर आज के सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं।

0: दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ा सच ये है कि हालात हमेशा हमारे मन के मुताबिक नहीं होते, लेकिन उन हालात में हम क्या बनते हैं, क्या करते हैं, कितना धैर्य रखते हैं, वो पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। हार हर इंसान को मिलती है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई हार मान लेता है और कोई उसी हार से सीख कर आगे बढ़ जाता है। जी हाँ, लेकिन डर की वजह से चलना नहीं छोड़ना चाहिए, संघर्ष करना नहीं छोड़ना चाहिए, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जो लोग आज तुम पर शक कर रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाते, वही कल तुम्हारी मेहनत की मिसाल देंगे। बस चलते रहें, धीमे सही, लेकिन रुके नहीं।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

0: जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी तो इसी का नाम है कि खुशियाँ और गम साथ साथ ही चलते हैं। अगर आज गम है, अगर कोई आज प्रॉब्लम है, तो ये मान के चलिए कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। अगर आज कोई गम है तो भाई ये दुख तो हटना ही है और खुशियाँ तो आनी ही हैं। तो भाई कितनी भी उलझने जो होंगी, मुझे उम्मीद है कि आप इस गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में संगीत सुनकर उसको घोल कर पी गए होंगे। जी हाँ, और भाई ज़िंदगी में इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है, थोड़ी देर में प्रसारित होगा समाचार प्रभात। उसके बाद अंग्रेजी समाचार और उर्दू समाचार भी आप सुनेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया।

0: दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार

0: जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं ये कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने

0: उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आइलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आइलैंड बनाया।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
3: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मॉनसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab.

0: स्काईरूट एरोस्पेस आज सुबह विक्रम 1 को पहली बार इसके मदार में पहुंचाएगा। प्राइवेट कंपनी के जरिए तैयार किया गया ये भारत का पहला रॉकेट है जो सैयारचों को खला में ले जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को भारत के खलाई सफ़र में एक तारीखी नया बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि 4 सतहों वाले इस रॉकेट को तेज़ रफ्तार से और मांग किए जाने पर सैयारों को खला में ले जाने की खिदमात फराहम करने के मकसद से तैयार किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मिशन से मुल्क के नौजवानों की सलाहियत, अज़्म और कारोबारी जज्बे की अक्कासी होती है। साथ ही साथ इससे भारत के खलाई शोबे की असलाहत नुमायाँ होती हैं जिनसे इख्तरा और कारोबारी जज्बे के लिए नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश का इजहार किया है। एजेंसी ने मुजाहिरीन और हिफाजती दस्तों के अहलकारों की हलाकतों की तहकीक़ात के लिए कहा है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ से मुतालिक कमिश्नर वॉल्कर टर्क ने अपने एक बयान में पाकिस्तान के हुकाम से ज़ोर देकर कहा कि वह तहम्मुल से काम लें, बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करें और महीने के अवाखिर में इलाकाई इंतखाबात से पहले तशद्दुद के जिन वाकयात की इत्तला दी गई है उनकी जवाबदेही कायम करें। जनाब टर्क ने अमन व सुकून बरकरार रखने की अपील की है क्योंकि खित्ते में कशीदगी का सिलसिला लगातार जारी है। हाई कमिश्नर ने सभी हलाकतों की फौरी, मुकम्मल और गैर जानबदाराना तफ्तीश के लिए आवाज़ उठाई है जो बेचैनी के सबब वाक़ हुई हैं। इस दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हुकूमत हमेशा कहती रही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख मरकज के ज़ेर इंतज़ाम सभी इलाके भारत का अटूट हिस्सा हैं।
1: मैं ये कहना चाहूँगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
0: गजा में आज एक तदफीन के दौरान हुए इसराइल के फिजाई हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और दीगर 22 जख्मी हो गए। नुसीरत पनागुजी कैंप में वाक़े अवदा अस्पताल ने हलाक होने वालों की तादाद की तस्दीक की है। इस हमले पर इसराइली फौज की जानिब से कोई फौरी तबसरा नहीं किया गया। इसराइल और हमास ग्रुप गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जंग बंदी समझौते पर राजी हुए थे जिसका मकसद 2 साल तवील जंग को रोकना था। इंतहाई शिद्दत की लड़ाई अब कम हो गई है, ताहम जंग बंदी के नफाज के बाद से गजा में कम अज़ कम 1,123 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन समझौते के नाकाम होने के बाद अमरीकी फौजों ने कल लगातार 7वीं रात ईरान पर हमले जारी रखे। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान की फौजी सलाहियतों को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी फौज के फिजाई हमलों की शुरुआत के कुछ ही देर बाद कल रात जुनूबी बंदरगाही शहरों बंदर अब्बास और सिरिक में कई धमाके सुने गए। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि उसके ड्रोन्स ने खित्ते में मौजूद अमरीकी मोर्चों के खिलाफ अपने ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर उर्दुन और कुवैत में अमरीकी फौजी मराकज को निशाना बनाया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 16,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के 3 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का मुश्तरका तौर पर संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से पुणे खित्ते में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा, सफ़र के वक्त और ट्रैफिक में कमी आएगी, नीज़ सनती व इकतसादी तरक्की को फ़रोग हासिल होगा। इन प्रोजेक्टों पर डिज़ाइन, रकूम की फराहम, तामीरात, कामकाज और मुंतकली DFBOT की तर्ज पर अमल दरामद किया जाएगा जिन्हें 4 साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय महकमे मौसमियात ने हिमालय के ज़ैली मगरबी बंगाल इलाके और सिक्किम में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश और अलग अलग जगहों पर इंतहाई दर्जे की बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने साहली आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाओं की पेशगोई की है। इस दौरान आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में गर्मी और नमी का इम्कान है। मैक्सिको के जनूबी साहिल पर कल 7.4 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबॉर्न ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलजले के बाद किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम उन्होंने

0: कहा कि हिफाजत इंतजाम कर लिए गए हैं। जंजबार के सदर और इनकलाबी काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हुसैन अली मोइनवी, जो भारत के चार रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं, आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले सदर मोइनवी ने कल चेन्नई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 63वें तकसीम असनाद में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि IIT मद्रास के पहले बैन अवी कैंपस IIT मद्रास जंजीबार का क्याम तालीमी संगमील से कहीं ज़्यादा की नुमाइंदगी करता है। मारूफ भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जापान ओपन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी चीन की शेन यूफी को शिकस्त दी। सिंधु कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की साबिक आलमी चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के दस्तबरदार होने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची थीं। फीफा आलमी कप में आज रात मायामी स्टेडियम में यूरोपीय हरीफ फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा मुकाम हासिल करने के लिए प्लेऑफ मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होगा। तीसरे मुकाम के लिए प्लेऑफ मैच को आलमी कप के हिस्से के तौर पर साल 1934 में टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन में शामिल किया गया था। इसके बाद से सिर्फ साल 1950 के एडिशन में ये मैच नहीं हो सका था। इस दौरान कल रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप का फाइनल मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। हॉकी इंडिया आज से मुल्क भर में मुल्कगीर सतह पर कोचिंग और इंतजामी उमूर के तौर तरीकों से मुतालिक वर्कशॉप का आगाज़ करेगा, ताकि मुल्की सतह पर हॉकी के फरोग के लिए इको निज़ाम को मुस्तहकम किया जा सके। ये थीं खबरें, और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। ये ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक चलेगी। फॉरेस्ट सर्विस के अफसरान महज जंगलात के मुंतजिम नहीं हैं, बल्कि कुदरती वरसे के भी मुहाफिज हैं। इस बात का इजहार ख्याल सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ट्रेनी अफसरान से मुलाकात के दौरान किया। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। सतीश गोलछा की जगह अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की खबर को रोजनामा इनकलाब समेत दीगर अखबारों ने खसूसी तौर पर शाये किया है। खबरों के मुताबिक वजारत दाखिला का हुक्म जारी होते ही उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, जबकि रोजनामा इनकलाब ने अमरीका और ईरान की तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हमले जारी रहने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में BSF की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। वो हिफाजत इंतजाम का जायजा लेंगे और तरक्याती इकदाम का आगाज करेंगे। अकवाम मुत्तहदा की इंसानी हकूक से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश जाहिर की है। उसने मुजाहिरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज़ उठाई है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्लेऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका।
3: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में स्वीकार करिए अपने दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। दोस्तों, मॉनसून के मौसम में नमी बढ़ने और जल जनित बीमारियों की संभावना के कारण स्वस्थ रहना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वातावरण में नमी वायरस और बैक्टीरिया के पनपने के लिए आदर्श समय होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम पर्याप्त सावधानी बरतें, ताकि हम वायरल बुखार, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकें। बारिश के दौरान नाक कान और गले के संक्रमण की भी आशंका रहती है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया नाक कान गले के विशेषज्ञ

0: डॉक्टर सुधीर माझी को। आप वरिष्ठ ईएनटी विशेषज्ञ हैं और आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के साथ लंबा अनुभव रहा है। आइए जानें बरसात में नाक कान और गले में होने वाली आम समस्याओं और उसके उपचार के बारे में। आपसे बात कर रही हैं रश्मि गुप्ता।
1: सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि मानसून के सीजन में गला, नाक और कान की ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत क्यों होती है?
2: हमें नाक, कान, गला अलग से सावधानी बरतने की बहुत ही ज़रूरत है रेनी सीजन में, क्योंकि हमें रेनी सीजन में एलर्जी की भी शिकायत काफ़ी लोगों की बढ़ जाती है। अगर वो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस से, एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस से, तो हमें साइनोसाइटिस और राइनाइटिस के एलर्जी से बचाव करना है, क्योंकि बरसात में पॉलन ग्रेन्स, डस्ट और पानी से भी लोगों को वो होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। और कान में एक स्पेशल वो है कि फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। काफ़ी लोग मतलब इस समय गर्मियों में स्विमिंग भी करते हैं
1: जी,
2: तो बरसातों में हमारा सुझाव यही है कि स्विमिंग बंद कर देनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि गंदा पानी भी होता है, बहुत लोग तैरते हैं और वो पानी अंदर जाता है और आपके कान में फफूंदी, हम लोग कॉमन टर्म में फफूंदी बोलते हैं, जो ब्रेड पे लग जाता है, या तो वाइट होता है या तो ब्लैक होता है। वाइट हम लोग कैंडिडा, जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनमें कैंडिडा वाला इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। और ब्लैक फंगस होता है, वो काला होता है, एस्परजिलोसिस। तो हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है कान का, कि पानी का ज़्यादा मॉइस्चर ना हो। कूलर का उपयोग कान के एकदम नज़दीक ना करें, उससे मॉइस्चर बढ़ता है, मतलब मॉइस्चर से हमें बचना है मतलब कि। और ड्राई रखना है, फेस को भी ड्राई रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है कि नाक और आँख और ये सब कान को छुए ना, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर से लगाएं, और तो क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस है, टॉन्सिलाइटिस भी होने के चांसेस है, साइनोसाइटिस भी होने के चांसेस है, एलर्जिक राइनाइटिस भी होने के चांसेस है, और कानों में फंगल इन्फेक्शन, और स्पेशली अगर किसी के कानों के पर्दे में छेद है, बहता है पहले से, तो उसमें तो और भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस।
1: तो सर, इनके लिए कोई घरेलू उपचार?
2: एक तो है कि जिसको एलर्जिक राइनाइटिस की है शिकायत पहले से, क्योंकि एलर्जी तो ऐसी चीज है कि वो लाइफ लॉन्ग चलता है, कंट्रोल हो जाएगा आपका 90% अगर आप ट्रीटमेंट ठीक से करेंगे तो, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो पॉल्यूशन की वजह से आप हर तीसरे आदमी को, तीसरे चौथे आदमी को यहाँ पे है।
1: बिल्कुल।
2: तो दूसरा तो है कि आप या तो मास्क, सिंपल मास्क यूज करें बरसात में ज्यादा, तो वो भी है कि पॉल्यूशन से बचेंगे आप। और अपने गंदे हाथों से अनावश्यक कान को और नाक को ना टच करें, थोड़ा सैनिटाइजर यूज करें, और मॉर्निंग में उठ के अनमोल विलोम करें, मतलब अनमोल विलोम, हाँ 10 बार भी करें, तो जिससे कि हमारा सांसों का लेने का ये बढ़ जाती है मतलब कि,
1: और हाँ,
2: और रुमाल का भी, हैंगरचीफ का यूज करें हर हमेशा, हैंगरचीफ से ही नाक को टच करें, खुले हाथ से ना करें मतलब। उसके बाद है कि एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर नहीं यूज करना है, ना बहुत ठंडा पानी पीना है ना बहुत गर्म पानी पीना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना है, वो ध्यान रखना है खासकर बरसात में, उससे भी एलर्जी बढ़ती है मतलब की। और नॉर्मली आप हल्का गुनगुना पानी में नमक डाल के अगर सवेरे शाम गरारा करते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा रहता है मतलब।
1: तो सर, जैसे बरसात के मौसम में आपने बताया कि कानों का इन्फेक्शन आपने बताया, तो ये इन्फेक्शन का किसी बड़ी बीमारी की और भी संकेत करते हैं?
2: डेफिनेटली अगर किसी के कान के पर्दे में पहले से छेद है और वो सपोज डायबिटिक भी है, तो अगर डायबिटिक भी है और कान के पर्दे में ऑलरेडी छेद है, तो वो अगर उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर है, बहुत ही सीरियस भी हो सकता है फंगल इन्फेक्शन, वो उसको हम लोग मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं, जिसमें कि फिर हमें एक तो डायबिटीज को सबसे पहले इंसुलिन वगैरह से कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो दिमागों तक फैल सकता है। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो कि ध्यान रखना है। नॉर्मल तो लोगों को नहीं हो सकता है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं और उनको अगर कान के पर्दे में छेद नहीं भी है या है, तब भी उनको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और उसमें ध्यान रखना है बिल्कुल। और स्विमिंग के समय आप वही है कि प्लास्टिक का जो वो आता है, रुई मत लगाएं, रुई से और भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। प्लास्टिक का जो वो मिलता है वो लगा के स्विमिंग करें, कान में पानी नहीं जाना चाहिए। रिफ्रेश मतलब ईयर ड्रॉप भी आता है, जो डालें तो ड्राई हो जाता है मतलब की।
1: सर, कुछ लोगों को कान में खुजली की भी शिकायत इन दिनों में बढ़ जाती है, तो क्या ये भी इन्फेक्शन ही है? वो बरसात के दिनों में, नमी के दिनों में ज्यादा हो जाती है।
2: एलर्जी की वजह से आपका ये इचिंग वाला जो प्रॉब्लम होता है, एलर्जी की वजह से होता है। और फंगल इन्फेक्शन में दो सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लेन है, पेशेंट एक्सट्रीम पेन

0: रखना है, खुजली होने पर बहुत ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट कराइए, आप ड्रॉप डालिए, डॉक्टर के पास जाके मिलिए, दवा खाइए और ड्रॉप डालिए, लेकिन अपने से खुजाना नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब बरसातों में ये कॉमन वो है मतलब।
1: जी सर, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन हो जाती है नाक कान गले की कि तब हमें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है?
0: नाक अगर तीनों आपस में कनेक्टेड है, बरसात में मतलब एलर्जी की वजह से टॉन्सिलाइटिस भी बढ़ जाने के चांसेस रहते हैं, फेरेंजाइटिस भी इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होते हैं, और ये तीनों आपस में अगर एक में इन्फेक्शन होता है तो तीनों में फैलने की मतलब संभावना बढ़ जाती है। अगर आप पहले ही से एलर्जिक राइनाइटिस मतलब नाक का आपका एलर्जी का बीमारी है, उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा छींकी आएंगी, मॉर्निंग में उठने के बाद बाउट्स ऑफ स्नीजिंग होगा, आँखों में जलन होगी, आँखों से पानी आएगा, नाकों से पानी आएगा, तो ये एलर्जी वाला जो है फीचर्स, इसमें आपको साइट्रस फ्रूट खाना है और आपको अनमोल विलोम करना चाहिए, आपको इम्यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए, विटामिन सी च्यूएबल विटामिन सी टैबलेट ऐसे भी हम लोग खा सकते हैं मतलब कि, और ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये जो हमारा जंक फूड है उसको अवॉइड करना है, वो भी एलर्जी बढ़ाता है।
1: एक ही ईयरफोन या हेडफोन सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं?
0: बिल्कुल, ईयरफोन तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यंग जनरेशन में है, ये उनको शुरू में पता नहीं चलता है, लेकिन हम लोगों ने इस पे काफ़ी प्रोग्राम किया है कि अगर आप लगातार ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, हाई वॉल्यूम में म्यूज़िक सुन रहे हैं और नॉर्मल भी कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको नॉइज इंड्यूस डीफनेस की ओर ले जाएगा। शुरू में नहीं पता चलता है, लेकिन धीरे धीरे 40-50 के बाद अगर आप शुरू से यूज़ कर रहे हो तो आपका एक प्रेस बाइकोसिस चीज़ होती है, जैसे आँखों में कैटरेक्ट होता है, तो प्रेस बाइकोसिस जैसे हमारा एज बढ़ता है, अगर हम डायबिटिक हैं तो उसमें और जल्दी आता है प्रेस बाइकोसिस, नॉर्मल फेनोमेना है, लेकिन 50-60 के बाद ये हमारा जो नस होता है कानों में सुनने का नस, वो कमज़ोर होने लगता है, तो उसको हम प्रेस बाइकोसिस बोलते हैं। तो अगर ज़्यादा आप हियरिंग ये यूज़ कर रहे हैं ईयरफोन, तो उससे नॉइज इंड्यूस स्टीफनेस होने के चांसेस हैं, बिल्कुल बचना चाहिए। और बरसातों में क्या है, अगर आप डाले हो तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ने के चांसेस है, तो उससे फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो बिल्कुल मतलब लिमिटेड यूज़ करें, अगर ऑफिस में आप कर रहे हो तो लिमिटेड यूज़ करो, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेटर ऑन बहुत ही प्रोफाउंड इफेक्ट होता है, सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, तो उसका इलाज तुरंत होना चाहिए, और अगर नहीं करने पर परमानेंटली फिर हियरिंग लौट नहीं पाता है, अगर हमने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में उसका इलाज कर लिया सडन सेंसरी हियरिंग लॉस का, तो वो लौट आता है, तो ये मतलब ईयरफोन यूज़ करने का एक साइड इफेक्ट ये भी है, सडन सेंसरी हियरिंग लॉस भी होता है। लाउडनेस इंड्यूस डीफनेस तो एक अलग चीज़ है, वो तो धीरे धीरे आएगी, लेकिन सडन सेंसरी हियरिंग लॉस भी होता है, तो अवॉइड करना चाहिए।
1: बरसात के दिनों में सर अक्सर ऐसा होता है कि लोग बाहर से आते हैं, बारिश में भीग जाते हैं, तो उसके बाद एकदम से वो उन्हें जुकाम हो जाता है, कुछ लोग एकदम जाके पंखे के नीचे या एसी में बैठ जाते हैं, तो और भी ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने आप को बचा सकते हैं?
0: मैंने सबसे पहले ही बताया, कभी भी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। आप बाहर से भींग के आए घर में और तुरंत आप एसी में चले गए या तुरंत शावर लेने चले गए, नहीं करना है, पहले अपने बॉडी को एक्लिमेटाइज करना है, आके अच्छे तरीके से तौलिए से पोछिए, पूरा ड्राई कर लीजिए, फेस आपका गीला नहीं रहना चाहिए, कान के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, कान के अंदर मतलब तौलिए से जो जितना तक कान में आप पहुँच सकता है उतना साफ कर लीजिए, सारा आपको ड्राई कर लेना है। आर्मपिट वगैरह में आप जो है पाउडर लगाइए, लेकिन लिक्विड चीज़ें मत लगाइए बरसात के दिन में, उससे ह्यूमिडिटी बढ़ती है और फिर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस, तो ह्यूमिडिटी आपको कंट्रोल करना है बाहर से आने के बाद। जब बाहर में भी आप मतलब हैं तो भींगने के बाद मतलब कोशिश करें कि आप उससे बच के रहें, क्योंकि भींगने के बाद फिर एलर्जी शुरू होती है, छींके बाउट्स ऑफ मतलब स्नीजिंग काफ़ी आएगा, नाकों से फिर डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, फिर टॉन्सिल मतलब साइनस सब आपस में रिलेटेड है, एक बार साइनसाइटिस का इन्फेक्शन हुआ तो आपको नेजल ब्लॉकेज होगा, स्नीजिंग होगा, सर में दर्द होगा और पीछे बलगम भी, नाक से पीछे गले में बलगम भी गिरना शुरू हो जाता है, ये साइनसाइटिस के फीचर्स हैं
1: जी।
0: और उससे फिर टॉन्सिल भी इन्फेक्शन होगा, कानों में इन्फेक्शन आराम से, अगर साइनस में इन्फेक्शन है नाक में इन्फेक्शन है तो वो कानों में चला जाता है स्टेकिन ट्यूब के थ्रू,
1: जी,
0: तो वो आपको बचाव करना है मतलब कि।
1: तो कुल मिलाकर नाक, कान और गला तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यदि आप वाकई में बरसात के मौसम में खुद को बचाना चाहते हैं तो आपको इस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। सर, आपने बहुत सारी बातें बताई किस तरह से हम अपने नाक, कान, गले के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, तो एक बार चलते चलते मैं आपसे फिर जानना चाहूँगी।

0: हमारे उन सारे लिसनर्स के लिए कि किस तरह से हम क्या क्या सावधानियां रखें और साथ साथ खान पान में किस चीज़ का परहेज करें कि हम बरसात के दिनों में खुद को इस संक्रमण से बचा सकें।
1: बरसात के दिनों में एक तो सबसे बड़ा तो पानी आपका सबसे बड़ा भगवान ने एक वो दिया है, पानी। अब कम से कम 5-6 लीटर तो आप पानी ज़रूर पीना चाहिए पूरे 24 घंटे में,
0: जी
1: वो सबसे बड़ा हमारा वो है। और अगर पानी थोड़ा सा गर्म हो, सुसुम जिसको बोलते हैं हम
0: जी
1: लोग
0: जी
1: अपने शब्दों
0: गुनगुना
1: में,
0: सा जी
1: गुनगुना पानी पिए तो बहुत ही अच्छा है, मतलब खासकर बरसात में। और रात में अगर दिन में नहीं भी कर पा रहे हैं तो रात में एक बार हल्का गुनगुना पानी में नमक डाल के गरारे कर लीजिए, उससे अच्छा कोई एंटीबायोटिक नहीं होता और आपका गला बिल्कुल ठीक रहेगा। ये तो गले के लिए तो एक बहुत ही वो है। रात दोनों टाइम ब्रश करें, मतलब सवेरे भी और रात में खाने के बाद भी, डिनर के
0: जी
1: बाद भी ब्रश करना चाहिए। और खाने में तो वही मैं कहूँगा, आजकल इम्यूनिटी लोगों की बहुत घट गई है तो इम्यूनिटी पे पूरा ध्यान दें। फल खाना चाहिए, फल जो नॉर्मल जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, सेब हो गया, ये सब तो बहुत ही, जो डायबिटिक वगैरह है थोड़ा सा मीठा फल अवॉइड करें,
0: अवॉइड
1: लेकिन
0: करें। जी
1: पपीता तो एकदम हर मौसम में मिलता है, एप्पल हर हमेशा मिलता है,
0: जी
1: ये दोनों फल तो सबसे। और केला में बहुत एनर्जी होती है, कैल्शियम होता है, तो हमें अपना पूरा विटामिन इनटेक भी इंटैक्ट रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल लोग धूप में नहीं निकलते हैं, और विटामिन डी मोस्टली आप देखोगे 50 ईयर्स के बाद खासकर फीमेल्स में भी विटामिन डी की बहुत कमी होती है, तो हमें सन का जरूर लेना चाहिए। नेचुरल
0: जी
1: नेचुरल
0: जी
1: जो विटामिन डी का सोर्स ऑफ वो है वो सन, तो इसलिए
0: जी
1: सन में, बच्चों की बरसात में सन नहीं निकलता है, तो जब भी आपको मौका मिले सन में आना चाहिए। केवल एसी, हाँ एसी इज ऑल्सो ए फैक्टर कि एलर्जी बढ़ाती है।
0: जी
1: आप देखोगे मोस्टली लोग जो आते हैं वो एसी में 24 आवर्स एसी में रहते हैं, उनको एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है।
0: जी
1: तो उसके लिए वही है, अनुलोम विलोम मैंने बताया, मॉर्निंग में उठ के 10 बार भी 15 बार भी अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। नींबू पानी मॉर्निंग में जरूर पीना चाहिए, नींबू पानी में शहद मिला के अगर पीते हैं तो सबसे अच्छा है, मतलब। और गुनगुना पानी से आप नमक डाल के गरारे करिए, मतलब कि।
0: जी सर, आपने बहुत सारी बातें बताई। हमारे लिसनर्स के लिए आज का प्रोग्राम काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।
2: अभी आप भेंटवार्ता सुन रहे थे। बरसात में नाक कान और गले में होने वाली आम समस्याएं और इनका उपचार, हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर सुधीर माझी, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ। आपसे बात कर रही थी रश्मि गुप्ता। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। दोस्तों, 27 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व सिर और गर्दन कैंसर दिवस, यानी वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे। ये दिन इन कैंसरों के लक्षणों, जोखिम कारकों और रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी फैलाने का अवसर है। आइए अधिक जानकारी लेते हैं कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर डोडुल मंडल से।
3: नमस्कार। आज हम हेड नेक कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। 95% ऑफ हेड नेक कैंसर जो होते हैं वो होते हैं स्मोकिंग एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट से। अब ये स्मोकिंग अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, अल्कोहल भी एक रीजन है। स्मोकिंग में बीड़ी भी है, सिगरेट भी है, हुक्का भी है। किसी किसी लोग को लगता है कि अब हुक्का पानी से फिल्टर होकर आ रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत फहमी है। टोबैको, जैसे च्यूइंग टोबैको हो गया, तमकू मिक्स करके जो आजकल गुटखा वगैरह जो सब होते हैं गाल के अंदर रखते हैं, खैनी, पान मसाला, ये है जो 95% ओरल कैंसर या हेड नेक कैंसर के कारण है। एक वायरल इन्फेक्शन भी होती है, बट वो हमारा देश में उतना कॉमन नहीं है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV। ये मेनली ओरोफेरिंग्स कैंसर में होती है। ओरोफेरिंग्स यानी जो हमारा थ्रोट का पीछे वाला पार्ट जो है, रेयर केस डेंटल ट्रॉमा, उससे भी हो सकती है। हमारा शरीर का जिस ऑर्गेन में कैंसर होगा, कैंसर का लक्षण उस हिसाब से होती है। किसी का अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर है या कैंसर है तो उसमें सिर दर्द हो सकता है, दौरा पड़ सकता है, बेहोशी हो सकती है। किसी का अगर थ्रोट कैंसर यानी हेड नेक कैंसर होती है तो उसमें किसी को वॉयस में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर दिख सकते हैं, नोज से ब्लीड हो सकता है, किसी को अगर फूड पाइप के कैंसर है तो उनको खान पान में प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम है तो उनको पेट में दर्द हो सकता है। जैसे कुछ सर्कोमाज होते हैं बोन्स या मसल्स में होती है, उसमें हड्डी में पेन दर्द होती है, आपको एक स्वेलिंग जिसको हम कहते हैं कि ट्यूमर रसोली, कई बार बाहर से दिखता भी है कि थाई में ट्यूमर आ गया या हड्डी के ऊपर कोई फूल गया, तो ये पूरा निर्भर करता है कि किस ऑर्गन में हो रही है। कोई अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रही है, बॉडी की किसी भी ऑर्गन से

0: ब्लीडिंग हो रही है जो कि नेचुरल नहीं है, कोई भी अल्सर या घाव जो ठीक नहीं हो रही है, कोई भी खांसी जो 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है ठीक नहीं हो रही है, कोई मोल जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बर्थ मार्क भी कहते हैं, सडनली अगर उसका कलर और शेप चेंज हो जाता है, तो ये सब हम ध्यान रखते हैं और स्क्रीनिंग करके आप इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कैंसर की सस्पिशन होती है तो फिर उसमें स्कैन वगैरह ज़रूरत होती है।
1: श्रोताओं, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य। नए स्कूल सत्र के लिए परामर्श छात्रों को नए शैक्षणिक वर्ष के लिए तैयार करने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसमें शैक्षणिक, भावात्मक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल होता है। नए सत्र के लिए परामर्श, इस विषय पर आइए सुनिए ये भेंट वार्ता। हमारे विशेषज्ञ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर मीना चंद्रा। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मनोरोग विभाग की प्रोफेसर और विभाग का अध्यक्ष हैं। आपसे बात कर रही हैं देविका चुग, आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं।
2: डॉक्टर साहब, जब नया सेशन शुरू होता है तो बच्चों की लाइफ में बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ पॉजिटिव एक्साइटमेंट के साथ और कुछ नेगेटिव एंजाइटी के साथ भी। आपके हिसाब से ये नए चेंजेस उनके इमोशनल और मेंटल हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं?
3: नया सेशन का अनुभव करीब 12 बार होता है। जो प्राइमरी सेक्शंस हैं उनमें अलग अनुभव होते हैं, मिडिल स्कूल तक बच्चों को एक पैटर्न पता चल जाता है तो अलग अनुभव होते हैं, और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम क्लासेस वाले हैं उनको थोड़ा सा अलग अनुभव होता है। नए सेशन में एक्साइटमेंट होती है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें नए नए रोल्स भी मिलते हैं, तो एक सीनियोरिटी का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी आता है कि हाँ, जैसे हम पिछले साल थे उससे अब हम ज़्यादा परिपक्व हैं, ज़्यादा मैच्योर हैं। फिर भी कुछ बच्चों को नई क्लास में जाके घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, तनाव हो सकता है, कई बार नई क्लास उन्हें पसंद नहीं होती, कई बार वो नई क्लास के साथ साथ नए स्कूल में भी जाते हैं जहां वो एडजस्ट नहीं कर पाते, कई बार पुरानी क्लास टीचर से अच्छे संबंध होते हैं, नई क्लास टीचर से वो समन्वय नहीं बैठ पाता, उसलिए भी बच्चे परेशान होते हैं। और कुछ कुछ परेशानियाँ होती हैं जैसे बुलिंग है जो स्कूल में देखी जाती है, उससे भी बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि हर कक्षा में कोर्स ज़्यादा मुश्किल होता जाता है, तो कई बच्चे पढ़ाई की दृष्टि से भी संघर्ष कर रहे होते हैं, कई बच्चे सामाजिक दृष्टि से संघर्ष करते हैं कि नई क्लास में फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे या नई क्लास में टीचर से सही समन्वय नहीं है, घबराहट हो सकती है, थोड़ा सा मन उदास हो सकता है, कई बार बच्चे अपने में गुमसुम हो जाते हैं, उनका किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता, वो कुछ एंजॉय नहीं कर पाते या वो कई बार उदंड हो जाते हैं, जल्दी से अपना आपा खो बैठते हैं, गुस्सा करने लगते हैं या स्कूल जाने को मना भी कर देते हैं कि अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो इस तरीके के लक्षण हम देखते हैं कि पॉजिटिव भी होता है और थोड़ा नेगेटिव भी होता है।
2: जी, मैं बिल्कुल आपसे अग्री करती हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही बच्चों के मन में आ सकता है, ये बस डिपेंड करता है कि कौन से बच्चे में कैसा वो उभर के आएगा। मेरा अगला प्रश्न ये है, कई बार पेरेंट्स को बच्चों के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं पर वो इग्नोर कर देते हैं सोच के कि ये तो एज का एक फेज है, शायद ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स को किस स्टेज पर सीरियस हो जाना चाहिए?
3: पेरेंट्स को हर स्टेज पे सीरियस रहना चाहिए। कई बार हम देखते हैं माँ बाप को पता भी नहीं होता बच्चे की मानसिक अवस्था कैसी है, बच्चा परेशान है या बच्चा दुखी है या बच्चे को कोई चीज चाहिए, तो माँ बाप को पता भी नहीं होता। दूसरा, माँ बाप कई बार अपनी ग्लानी, अपना गिल्ट कम करने के लिए चीज़ों से की बारिश कर देते हैं बच्चों पे, जो बच्चा चीज़ मांगे या ना मांगे उसे चीज़ों में बिजी रखते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य चीज़ों में नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य तो मन में है। तो मानसिक अवस्था के बारे में जानना माँ बाप का फर्ज है, कर्तव्य है। आप बच्चे के साथ बैठें, बात करें, उसको देखें, उसकी नटखट चीज़ों में खुश भी हों या बच्चा परेशान हो तो आप पता लगाएं कि बच्चा क्यों परेशान है। तो एक दिन में नहीं होता, ये गहरा रिश्ता है, संवाद स्थापित करना है तो शुरू से ही करना है। जब बच्चा परेशान हो और आप तब पूछना चाहें तो बच्चा कई बार नहीं खुल के बता पाता क्योंकि उससे कभी किसी ने बातचीत की नहीं होती, उससे सिर्फ चीज़ों की बातचीत होती है। तो बच्चे का दिन कैसे गया, आज आपने क्या किया, आज आप कहाँ परेशान हुए, आप आज कहाँ खुश हुए, आप संडे को क्या करना चाहते हैं, ये सारे सवाल अगर बच्चे से हम लगातार पूछते हैं तो बच्चे को समझ में आता है कि मेरे माँ बाप, मेरे बड़े भाई बहन मेरी प्रोग्रेस में इंटरेस्टेड हैं, उनको फर्क पड़ता है कि मैं परेशान

0: या खुश हूँ, तो बच्चा खुल के बताना शुरू करता है। तो संवाद तो पहला कदम है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए। कभी भी आपको बच्चे में कुछ फर्क नजर आए जो उसके अपने स्वभाव से अलग हो, और वो फर्क कई दिनों तक नजर आए, एक दिन तो कोई भी बच्चा परेशान हो सकता है, लेकिन आप देखते हैं कि पहले हमारा बच्चा ऐसे नहीं था और अब बच्चा ऐसे है, तो आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि बदलाव जो है और काफी दिन तक अगर चलने वाला बदलाव है, उसकी कोई वजह होगी, और वजह है तो उसका निदान भी होगा और उसका इलाज भी संभव है। तो जो चेंज फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन जो है कि पहले बच्चा क्या था, पहले बच्चा खूब बहिर्मुखी था, सबसे बातचीत करता था, अब बच्चा चुपचाप हो गया है, अंतर्मुखी हो लग रहा है, तो ये चेंज अपने आप नहीं आता, कोई ना कोई वजह रहती है। तो अगर बदलाव आ रहा है और कुछ बदलाव वो सस्टेन्ड है, कुछ दिनों तक चल रहा है, आपको वजह नहीं समझ में आ रही, तो बच्चे से संवाद स्थापित करें, उसके टीचर से संवाद स्थापित करें, उसके फ्रेंड से भी संवाद स्थापित करें कि बच्चे में बदलाव क्यों आ रहा है या क्या बात हुई, और उसके आगे तो एक रास्ता है बच्चे को मदद करने का।
1: अगर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही नोटिस करते हैं कि बच्चा अलग बिहेव कर रहा है, तो पहला स्टेप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
0: अगर पेरेंट्स फील करते हैं कि बच्चा अलग व्यवहार कर रहा है, तो उन्हें टीचर्स से बात करनी चाहिए, और टीचर्स अगर को लगता है कि बच्चा अलग व्यवहार कर रहा है, तो उन्हें पेरेंट्स से बात करें। अगर बच्चे में दोनों का ऐसा मत है कि बच्चे में परेशानी है, तो हमें उसका एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन कराना चाहिए, एक साइकियाट्रिस्ट को मिले, मनोचिकित्सक असेसमेंट करते हैं बच्चे की क्या परेशानी है उसको समझते हैं, ज़रूरत होती है तो उसको दवाई दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरत हो तभी, ऐसा कोई मनोचिकित्सक ना होगा जो ज़बरदस्ती बच्चों को दवाई दे देगा। ज़्यादातर बच्चे काउंसलिंग के लिए भेजे जाते हैं और वो काउंसलर्स के पास जाते हैं, लेकिन इनिशियल असेसमेंट से एक अच्छा काम होता है कि बच्चे को अगर कोई गंभीर समस्या है, और वो हो भी सकती है, चाइल्डहुड ऑनसेट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो जल्दी से पकड़ में आ जाते हैं, उनका इलाज शुरू हो जाता है। साथ में कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम माइमेटिक्स कहते हैं, कि वो लगती हैं व्यवहार में दिक्कतें, लेकिन उसका कारण कुछ और है। जैसे अगर बच्चे को दौरे की समस्या है, लेकिन लग रहा है कि बच्चा बिल्कुल गुमसुम हो जाता है, या बच्चे को चाइल्डहुड ऑनसेट डायबिटीज़ है और बच्चे को बीच बीच में घबराहट बेचैनी हो जाती है, तो एक कम्प्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है, एक साइकियाट्रिस्ट को मिलना ज़रूरी है, जिससे आपके माइमेटिक्स रूल आउट हो जाए, और अगर कुछ गंभीर चाइल्डहुड ऑनसेट प्रॉब्लम्स हैं उनका अगर दवाई के जरिए इलाज करना है, तो वो शुरू हो जाए। लेकिन अधिकतर बच्चे, मैं दोबारा कहूँगी, काउंसलिंग के लिए भेजे जाते हैं, और जो काउंसलर्स होते हैं वो बच्चे से संवाद स्थापित करते हैं, बच्चे को असेस करते हैं, माँ बाप से भी संवाद स्थापित करते हैं, कई बार वो टीचर से भी संवाद स्थापित करते हैं। आजकल टेली मेंटल हेल्थ की दुनिया में ये बहुत आसान हो गया है, और टीचर्स कई बार रिपोर्ट्स भी लिख के भेजती हैं, और बच्चे का एक फ्रेमवर्क बना के उसके तहत बच्चे की काउंसलिंग शुरू की जाती है। बच्चे का क्या प्रमुख लक्षण है, किस दिशा में हमें उसको मदद करनी है, और साथ ही साथ माँ बाप की भी काउंसलिंग होती है, कैसे मदद करें जिससे बच्चे की वाकई मदद हो पाए, ये काउंसलर बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से माँ बाप को बता देते हैं अपने काउंसलिंग सेशन में। तो ये एक प्रक्रिया होती है, लेकिन ये कोई वन टाइम प्रक्रिया नहीं है कि एक ही बार होती है, बच्चे की जरूरत के अनुसार कई सेशंस लेने पड़ सकते हैं, और जब बच्चा सही हो जाता है, इम्प्रूव कर जाता है, तो काउंसलिंग टर्मिनेट भी होती है। ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग शुरू हो गई तो जीवन भर चलेगी, अगर दोबारा आवश्यकता होगी तो दोबारा भी हो सकती है। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है, ये पूरा वैज्ञानिक तौर पे प्रोसेस है, तो उसमें से गुजरने से बच्चे को लाभ मिलेगा, तो हिचकिचाना नहीं चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली होता कैसे है? क्योंकि क्या है ना, आजकल पेरेंट्स और बच्चे दोनों थोड़े बहुत हेजिटेंट हो जाते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, तो मैं ये चाहूँगी कि आप एक बारी समझाएं कि एक काउंसलर किस तरीके से उनकी मदद कर सकता है।
0: काउंसलर के पास जब बच्चा रेफर होके आता है, तो काउंसलर बच्चे की पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, उसके जन्म से लेके पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, और उसकी जो अभी की समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तार से पूछते हैं, और उसके जो मानसिक अवस्था है उसका आकलन करते हैं, जिसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहते हैं। उसके बेसिस पे वो एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं, और एक काउंसलिंग का भी एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, कि बच्चे को अगर परेशानी किसी समस्या को लेके है, तो उस समस्या के लिए हेल्प करेंगे, या बच्चे के जीवन में कुछ ऐसा घटित हो गया जिसको बच्चा नहीं कोप अप कर पा रहा, तो उस हिसाब से हेल्प करेंगे। अगर बच्चे में ऐसे कुछ विषम तरीके के

0: हैं, तो जिसे हम मैलअडैप्टिव कॉग्निटिव स्कीमास कहते हैं, तो बच्चों को उस तरीके से हेल्प करेंगे। अगर बच्चे को एग्ज़ाम से पहले एंग्जाइटी होती है तो एग्जामिनेशन एंग्जाइटी के हिसाब से हेल्प करेंगे। तो जो बच्चे को समस्या है उसके अनुसार काउंसलिंग फ्रेमवर्क तैयार होता है। उस काउंसलिंग फ्रेमवर्क के तहत काउंसलर डिसाइड करते हैं कि कितने सेशंस लेने हैं, कितने सेशन बच्चे के लेने हैं, कितने सेशन माँ बाप के लेने हैं। बीच बीच में बच्चे का आकलन दोबारा भी करते हैं कि काउंसलिंग से बच्चे में क्या सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा, या कई बार क्या होता है काउंसलिंग करते करते कोई और समस्या भी बच्चा एक्सप्रेस कर देता है जो उसने शुरू में नहीं बताई होती, या माँ बाप ने भी शुरू में नहीं ध्यान दिया होता, तो काउंसलिंग की दिशा कई बार थोड़ी सी बदलती भी है। लेकिन आखिरी परिणाम यही है कि जो भी बच्चा परेशानी के साथ आया था, काउंसलिंग के जरिए बच्चा अपने में परिवर्तन लाता है, माँ बाप अपने में परिवर्तन लाते हैं और वो समस्या से बाहर निकलते हैं और बच्चा स्किल सीख जाता है कि कभी दोबारा भी भविष्य में ऐसी कोई समस्या होगी तो वो उसको मैनेज कर लेगा, क्योंकि अब उसको स्किल आ गया है। तो हम स्किल बिल्डिंग भी करते हैं काउंसलिंग में। तो ये कई तरीके हैं जिसके तहत काउंसलर बच्चे को मदद करते हैं आगे बढ़ने में। मेरा संदेश सभी बच्चों और सभी माता पिता के लिए है कि जो मानसिक रोग हैं वो साधे हैं, जो मानसिक परेशानियां हैं उनका हल है, समस्या है तो समाधान है। हिचके नहीं, ये ना सोचें कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, अपने जीवन में आगे बढ़ें। और इसके लिए अगर आपको मदद लेनी है मनोचिकित्सक की, काउंसलर की, तो उसमें लेने में कोई भी परेशानी नहीं महसूस करें। आप खुले मन से काउंसलिंग के लिए जाएं और जो भी आपको डायरेक्शन दिए जाते हैं उनका पालन करें और जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतने ज़्यादा पावरफुल इंसाइट्स दिए हैं और आई एम श्योर कि जो भी पेरेंट्स और बच्चे अभी ये सुन रहे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और सपोर्टेड फील कर रहे होंगे।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, नए सत्र के लिए परामर्श। हमारी विशेषज्ञ थी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मीना चंद्रा। आप प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डॉक्टर आरएमएल अस्पताल में। आपसे बात कर रही थी देविका चुग। आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली है और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती आकाश। धरती आकाश में आज आप सुनेंगे वर्षा जल संचयन जल संकट का समाधान। इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं गोपाल सिंह, सेवानिवृत्त तकनीकी विशेषज्ञ दिल्ली जल बोर्ड से। और बातचीत जो की जाएगी वो दिलीप झा उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही ऊर्जा संरक्षण पर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी अहम जानकारी देंगे। तो सुनते हैं ये कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
5: धरती आकाश के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
6: हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। धरती पर 3/4 जल की मात्रा बहुत बड़ी लगती है, लेकिन उसमें पीने योग्य जल बहुत ही कम है और उसकी भी मात्रा दिन ब दिन कम होती जा रही है, बढ़ते शहरीकरण के कारण, पक्कीकरण के कारण। इन समस्याओं को देखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल संचय की प्रक्रिया अपनाई गई है। जल संचय विधि क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है, इसकी तकनीकी किस तरह की है और इसके फायदे क्या हैं, किस तरह इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री गोपाल सिंह। आप दिल्ली जल बोर्ड से रिटायर्ड हैं और जल संचय रेन वाटर हार्वेस्टिंग में इनका एक लंबा अनुभव है। गोपाल सिंह जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
7: आपका भी, दर्शकों का भी बहुत अभिवादन।
6: ये बताइए कि जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो ये असल में क्या है?
7: जो बारिश होती है उसी से जो गिरने वाला

0: पानी है, हम उसी को रेन कहते हैं। और जब इस पानी को हम बचाने की जो प्रक्रिया है वो हार्वेस्टिंग है। तो ये दोनों मिला के एक शब्द हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम इसको कैसे सेव करें, तो इसकी दो टेक्निक है। एक तो हम इसे संचयन कर लें, कोई स्टोरेज बना के उसमें स्टोर कर लें और उसे दोबारा यूज कर लें। दूसरा तरीका है कि हम इसे नीचे जमीन में रिचार्ज कर दें। तो रिचार्ज के जो मेथडोलॉजी है वो डिफरेंट मेथडोलॉजी है, वो डिपेंड करेगी आपके जमीन की मृदा कैसी है। अगर रेतीली मिट्टी है तो वो जमीन में आराम से सोख जाएगा। आप गड्ढा करेंगे, गड्ढा करके फिल्टर मीडिया डालना है, फिल्टर मीडिया के थ्रू और पानी नीचे परकुलेट होकर जमीन में चला जाएगा। हम जो गड्ढा बना के फिल्टर मीडिया जो डालते हैं उसकी क्यों जरूरत है? उसकी जरूरत इसलिए है कि नेचुरल फिल्टर तो काम करता है जमीन, वही पानी परकुलेट करती है, लेकिन फिल्टर मीडिया इसलिए डालते हैं कि वो जमीन के जो स्लॉट्स हैं उनके वॉइड्स हैं वो ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए फिल्टर मीडिया डालते हैं। अगर वो ब्लॉक हो गए तो पानी सोखना बंद हो जाएगा, इसलिए फिल्टर मीडिया दोबारा रिप्लेस करके। और आज उसकी सिंपल बहुत तकनीक आ गई है। अभी जो हम डाल रहे हैं नीचे ग्रेवल डाल दिया और सैंड डाल दिया, ऊपर से एक जियो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन डाल देते हैं। जियो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन एक तरह से फिल्टर का काम करती है। अगर जो भी उसमें फाइन पार्टिकल्स आएंगे, कुछ भी आएगा, वो उसके ऊपर रुक जाएगा। एक तरह कपड़े का होता है फिल्टर, उसे इकट्ठा किया, साफ करके दोबारा बिछा दे। इजी मेंटेनेंस है, बहुत इजीली किया जा सकता है। जहां मिट्टी की अच्छी है, परकुलेशन रेट अच्छा है, वहां तो ये हमारा टेक्निक ठीक है। लेकिन जहां परकुलेशन रेट ठीक नहीं है, अब जैसे भाई चिकनी मिट्टी है, तो वहां पर ये देखना पड़ेगा कि हमें किस लेवल पे वो परकुलेशन वाला स्ट्रेटा मिल रहा है। हमें फिर वहां उसके लिए एक बोट डालना पड़ेगा जिससे वो पानी परकुलेट होके उस स्ट्रेटा में परकुलेशन वाले में चला जाए और वो पानी वहां जमीन में सोख जाए। ऐसा भी है कि कई बार हम हार्ड रॉक में काम करते हैं, तो हार्ड रॉक में तो वहां कोई ऐसा मिलता नहीं, लेकिन वहां पे भी बहुत सक्सेसफुल परकुलेशन हो सकता है। वहां पे क्या है, अगर इम्प्रीवियस रॉक है तो पानी नहीं जाएगा। अगर वहां फिशर रॉक्स हैं, उनमें पानी बहुत अच्छा जाता है, बहुत बढ़िया परकुलेट होता है, क्योंकि रॉक्स के अंदर स्लॉट्स होते हैं, हल्के हल्के वो क्रैक्स होते हैं, वो क्रैक के थ्रू पानी चला जाता है। तो ये सिंपल तकनीक है। ये तो रहा अर्बन एरियाज के लिए। अब मैं बात करूंगा रूरल एरियाज के लिए कि रूरल एरियाज में हम कैसे पानी को सेव करें। अब जैसे सपोज हमारा खेत है, खेत के अंदर जब हमारी फसल कट जाती है तो फसल की कटाई के बाद हम उसकी जुताई करते हैं, जिससे क्या है कि ऊपर के जो उसके वॉइड्स क्लॉग हुए हैं मिट्टी के वो खुल जाए, जिससे वो पानी बरसेगा तो वो सीधा जमीन में चला जाएगा। दूसरा, उसके किनारे अगर इस तरह का है तो हम किनारे पे एक खड्डा बना दें और वो खड्डे में अगर मिट्टी हमारी परकुलेट वाली है तो नेचुरल चला जाएगा। नीचे उसमें ग्रेवल डाल दें और फिल्टर डाल दें नॉर्मल सा। अगर बहुत ज्यादा मिट्टी वैसी है तो उसकी जगह एक बोर डाल दें। बोर की लेकिन एक है कि हम बोर जो डालेंगे वो कम से कम जमीन के जो ग्राउंड वाटर का पानी है उससे 5 मीटर ऊपर रहना चाहिए। उसकी डेप्थ 5 मीटर ऊपर रहनी चाहिए।
1: ऐसा किस लिए?
0: ऐसा इसीलिए कि पानी को कम से कम 5 मीटर फिल्टर जमीन से होके जाए। अगर वो पानी किसी वजह से कोई कंटेमिनेट हुआ तो वो 5 मीटर की लेयर उसे परकुलेट करके फिल्टर करके नीचे जमीन में वाटर में भेजेगी। अगर डायरेक्ट हमने कनेक्ट कर दिया तो वो सीधा का सीधा ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। जैसे कभी द्वारका वाले केस में चल रहा है, वहां TDS 8,500 पहुंच गया, वो कारण वही था। वो कोर्ट में केस भी चल रहा है उसका।
1: उसका तो स्वास्थ्य पे बहुत
0: नहीं, वो तो अनयूजेबल है वो तो। लेकिन एक चीज हम और कर सकते हैं कि बारिश खाली शहरों में नहीं होती, गांव में नहीं होती, हर जगह होती है। जहां बूंद गिरे हम उसको वहीं सेव करें। तो इसके जो फायदे होंगे, एक तो हमारा पानी प्रिजर्व हो जाएगा, दूसरा जो पानी नीचे का खराब हुआ है फ्रेश वाटर मिलने से उसकी क्वालिटी सुधरेगी, तीसरा फायदा ये होगा कि उससे फ्लड भी नहीं आएगी। फ्लड आने का मेन कारण क्या है कि वो बूंद बूंद खट्टा होता है और बहता जाता है और एक जगह खट्टा हो जाता है, वही फ्लडिंग करता है। हम आए दिन शहरों में देखते हैं कि यहाँ फ्लडिंग हो गई, वहां फ्लडिंग हो गई, वहां गाड़ियां डूब गई, यहां रास्ता नहीं है। ये सिंपल सा है कि जहां बारिश की बूंद गिरती है उसको वहीं हम प्रिजर्व कर लें, वहीं उसको हार्वेस्ट कर दें या स्टोर कर लें या हार्वेस्ट कर लें। तो सिंपल सा तरीका है, ना फ्लड होगी, पानी की हमारे पास कोई कमी नहीं होगी। जब फ्लड आती है तो उस टाइम अगर हम पानी को स्टोर कर लें या रिचार्ज कर दें। कई बार होता है कि अब जैसे यमुना के केस में फ्लड आती है, फ्लड के दौरान क्या होता है कि फ्लड आके चली जाती है, पूरा जो डैमेज है वो करके चली जाती है। यमुना का लेवल तो पानी का बहुत ऊंचा है, वहां तो रिचार्ज हो नहीं सकता, लेकिन वहां से अगर थोड़ा दूर जाएंगे तो वहां का जमीन का लेवल, पानी का लेवल नीचा होगा। तो उस पानी को वहां जाके हार्वेस्ट भी कर सकते हैं और डियर यमुना के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। वो पानी हमें पूरे साल के लिए हमारे वाटर रिक्वायरमेंट के लिए काम आएगा, ट्रीट करके हम सप्लाई कर सकते हैं।
1: अगर हम दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें जहां शहरीकरण बढ़ रहा है, यमुना का भी इनक्रोचमेंट हो रहा है, प्रदूषित नदी नाले यमुना में मिल रहे हैं, तो पेयजल की घनघोर कमी दिख रही है और अभी और दिखेगी। इस क्षेत्र के लिए चूंकि आप दिल्ली जल बोर्ड में रहे हैं, आपके अनुभव क्या है कि किस तरह की कार्य योजनाएं बनाई गई, सफलताएं क्या है और आपको क्या लगता है और क्या सुधार की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है?
0: मेरे हिसाब से पानी की जो कमी है हम दो

0: तरह से पूरा कर सकते हैं, एक तो पानी की क्वालिटी, फ्रेश वाटर की क्वालिटी बढ़ाकर, दूसरा हम जो यूज कर रहे हैं उसको रिसाइकल करके, रियूज करके। तो रियूज में भी हम पानी की काफी बड़ी क्वांटिटी, हम जैसे मैक्सिमम हमारा जो वाटर यूज होता है फ्लशिंग में होता है, गार्डनिंग में होता है, फ्लोर वॉशिंग में होता है, कार वॉशिंग में होता है, तो ये पानी हम अपने घर का जो यूज्ड पानी है उसको रिसाइकल करके इनमें यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी जो खपत है वो घट जाएगी। खपत घटने का मतलब है कि जो हमारी 1200 MGD अगर पर डे की यूज है तो वो घट के सीधा 800 पे आ गया। अगर हमने 30-35% भी अगर हमने बचा लिया इससे तो वो 800 पे आ जाएगा। तो ये 800 हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इतना पानी तो हम बढ़ा नहीं सकते। अब तो काफी सारे लोग इस बात पे भी फोकस कर रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कि हम जेडल डीप पे काम करें।
1: अच्छा
0: हाँ, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज।
1: अच्छा
0: तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में क्या होता है कि हम सारा जितना अपना वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम रिसाइकल करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट उस लेवल तक करते हैं कि वो पानी हमारा जो नॉन पोर्टेबल पर्पज है उसमें यूज हो जाए, फायर में काम आ जाए, और दूसरे जो पीने के अलावा पानी है, फ्लशिंग है, गार्डनिंग है, वॉशिंग है, इन सब में यूज हो जाए। तो वहाँ जो इस तरह से वो रिसाइकल करके उसको लगातार करते हैं, इससे हमारी जो खपत है वो हमारी कम हो जाएगी, हमारी जो वाटर डिपेंडेंसी, जो एक्सट्रैक्शन है, हम जिस पानी पर भरोसे हैं वो पानी हमारी कम जरूरत होगी, तो वो धीमे धीमे हमारा स्टोर बढ़ता जाएगा। दूसरा, हम ऊपर से रिचार्ज कर रहे हैं तो पानी की क्वालिटी सुधरेगी। तो हम इस तरह से कई स्टेप ले सकते हैं कि हम पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है।
1: निश्चित रूप से ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है।
0: जी,
1: दिल्ली में जैसे कि 14 मंजिल, 15 मंजिल से लेके 30-40 मंजिल तक के मकान बन रहे
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: जमीन से कई मीटर नीचे तक उसके बेस बनाए जा रहे हैं,
0: जी
1: दोहन हो रहा है, एक एक सोसाइटी में 500 से लेके 5,000 तक के लोग रह रहे हैं
0: जी जी
1: संख्या
0: जी
1: में। ऐसी स्थिति में इन जगहों पर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, रिड्यूस रिसाइकिल और रीयूज के लिए
0: जी
1: किस तरह की आपको लगता है कि किस स्तर पर सरकार को पहुंचना चाहिए उनसे कराने के लिए, और उन सोसाइटियों को सरकार या संस्थाओं के पास पहुंचना चाहिए कि इस तकनीक का फायदा अपनी सोसाइटी में करने के लिए?
0: सबसे पहला इस मामले में हमें जन जागृति अभियान चलाएं, जिससे लोगों को इस बात को अवेयर कराएं कि कल पानी नहीं होगा, आज तो आपको पानी मिल रहा है लेकिन आपकी जनरेशन को क्या मिलेगा। तो ये बात उनके समझ आ जाए तो फिर वो करना उनके लिए आसान हो जाएगा। चाहे वो लाख लोग कहें, कोई करने को तैयार नहीं होता। इवन प्रैक्टिकली आज भी हम उस टारगेट पे क्यों नहीं पहुंच पाए, भाई सरकार भी कोशिश कर रही है, सब कुछ एफर्ट्स, डिपार्टमेंट भी काम कर रहे हैं, लेकिन उतना टारगेट क्यों नहीं अचीव हो पा रहा, क्योंकि उसमें पब्लिक की भागीदारी उतनी नहीं है, उन्हें अवेयर नहीं है, उस बात का एहसास नहीं है उन्हें कि अगर कल पानी खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे और हमारी जनरेशन क्या करेगी। तो उस चीज के लिए जरूरत है कि सबसे पहले हम उस लेवल पे काम करें कि अवेयर करें, उनको प्रोत्साहित करें और इंसेंटिव भी दें। तो इस तरह से उनको अवेयर, जब तक नहीं होंगे वो, किसी को कितना ही कुछ भी कह लो कोई सुनेगा ही नहीं ना करेगा। इसलिए जरूरी है हम पहले स्टेप पे अवेयरनेस वाला है, जगह जगह कैंप्स लगा के और उससे अवेयर करके फिर लोगों को बताएं भी इसका ये महत्व है। अगर नहीं करेंगे, अगर वो नहीं भी बिल्कुल भी अगर जैसे टाइम दें,
1: नहीं
0: कोई इतने
1: नहीं
0: टाइम के
1: मान
0: अंदर आप
1: लीजिए
0: करना,
1: जागरूक हो गए, करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, हाँ संपर्क करेंगे?
0: नहीं वैसे तो हमारे देखो CGW भी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है दिल्ली में, हम उससे संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेल है, वहां से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारा बहुत सारा लिटरेचर जल बोर्ड की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, और वहां से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनके हम कैंप भी लगवा सकते हैं, लोगों को उनको अवेयर करने के लिए एक बेहतर तकनीक समझाएं। इसमें हम सिंप्लीफाइड मेथड्स को यूज करें और उन्हें अवेयर कराएं कि भाई पानी हमें बचाना है।
1: निश्चित रूप से
0: हाँ
1: सबसे बड़ी बात है जागरूकता की, जन जागरूकता की,
0: जी,
1: क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या अभी
0: जब तक वो अवेयर नहीं होंगे तब तक वो कुछ नहीं करेंगे।
1: गर्मियों में आने वाली है, और
0: जी
1: ये
0: जी
1: आने वाले लोगों के लिए जो जनरेशन आएगा उनके लिए समस्या रहेगी। इससे पहले कि कहीं देर हो जाए
0: जी
1: और
0: जी
1: जल न मिले, जल के बिना जीवन सूख जाए, शहर खाली हो जाए, पलायन हो जाए,
0: जी जी
1: जरूरी है कि अभी जो जल है उसको किस तरह से कम खपत करें, बारिश जल का संरक्षण करें, बाढ़ के जल का संरक्षण करें, तकनीकी सहयोग लें,
0: जी
1: संस्थाओं
0: जी
1: से संपर्क करें। इसका महत्व आगे आने वाले समय में वर्तमान समय के साथ साथ काफी होने वाला है। श्री गोपाल सिंह जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सब मैनेजमेंट, इसकी तकनीकी और इसके होने वाले फायदे उठाने के लिए आवश्यक जन जागरूकता आदि की बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
2: कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में

0: हमारी क्या भूमिका हो सकती है?
1: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है। और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहें। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पर हमें काम करना पड़ेगा।

0: और इसी के साथ धरती आकाश का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय हो गया है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का।

0: इस दिवस की शुरुआत दुनिया भर के लोगों लई नेल्सन मंडेला नूं पछाणन दे तरीके वजो हुई सी। ए न्याय आज़ादी अते समानता लई उन्हां दे जीवन भर दे काम लईए। नवंबर 2009 विच संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र जनरल असैम्बली विच मंडेला दिवस नूं अधिकारत बनाया। दुनिया ने 18 जुलाई 2010 नूं पहला मंडेला दिवस न्यूयॉर्क विच मनाया। उदों तो नेल्सन मंडेला फाउंडेशन दक्षणी अफ्रीका अते होर थावां ते इस दे भाईवालां ने मंडेला दिवस नूं जारी रख्या है। मंडेला दिवस हुण लोकां नूं दूजियां दी मदद करन लई इक विश्वव्यापी सद्दा है। ज़्यादातर लोगों लई नेल्सन मंडेला दा जन्मदिन उन्हां दे जीवन नूं याद करन दे समें तो वध दे इह दिन कुछ करन बारे वी है। नेल्सन मंडेला दी विरासत हिम्मत माण समानता अते दूजियां दी देखभाल ते बणी है। 18 जुलाई नूं सानू उन्हां कदरां कीमतां दी वरतों करन अते उन्हां नूं असल बनाउण लई कहा जांदा है। दक्षणी अफ्रीकी लोकां ने नेल्सन मंडेला नूं लंबे समय तो एक नेता अते उम्मीद दी निशानी वजो सन्मानित किया है। बाकी दुनिया हुण हर साल अजा ही करती है। जदों असी 18 जुलाई नूं मनाते हाँ तो हर जगह लोग एक अजिही जिंदगी दा जशन मनाते हैं जो सेवा एकता अते इस भावना नूं उत्साहित करती है कि असी सारे जुड़े हुए हाँ। नेल्सन मंडेला दा जीवन अजे भी लोगों इस अंतरराष्ट्रीय दिवस के अर्थ नूं समझण विच मदद करता है। वह दक्षणी अफ्रीका विच रंग भेद विरुद्ध लड़ाई की अगवाई करन साबका राष्ट्रपति वजो सेवा करन अते एक जनतक शख्सियत होने लई जाने जांदे सी जो वक्-वक् समयां अते पिछोकड़ां दे लोकां नाल जुड़दे सी। उन्हां दा काम हमेशा मनुखी अधिकारां चीज़ां नूं निरपक्ष बनाउण अते लोकां नूं इकट्ठे लियाउण बारे सी। राष्ट्रपति बनन तो पहला नेल्सन मंडेला एक मनुखी अधिकार वकील सी। उन्होंने बाद विच 27 साल जेल विच बिताए। इसने उन्होंने बेइंसाफी के विरुद्ध खड़े होने का एक मजबूत संकेत बना दिता। 1993 विच नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार मिलिया क्योंकि उन्होंने दक्षणी अफ्रीका विच रंग भेद नूं खत्म करन विच मदद कीती सी। लोक उन्हां नूं शांति दा संस्थापक कहिंदे हन क्योंकि उन्हां ने नसलवाद नूं रोकण अते लोकां विच इलाज लिआउण लई सख्त मेहनत कीती। इसे लई नेल्सन मंडेला दिवस बहुत सारे लोकां लई बहुत मायने रखदा है। 2026 लई मंडेला दिवस मुहिम दा सुनेहा एक स्पष्ट जनतक सद्दा दिंदा है, गरीबी अते बेइंसाफी नाल लड़ना अजे भी तुहाडे हत्थां विच है। इह अज दीआं समस्यावां बारे गल करदा है जिवें कि लोकां दा पक्ष लैणा, जमीन गुआना, मौसम दा दबाव, युद्ध अते बहुत सारे लोकां नूं अपने घर छड्डण लई मजबूर करना। इस साल लई एक छोटे थीम दी बजाए इह मंडेला दिवस मुहिम दा सुनेहा एक विश्वव्यापी खुल्ला सद्दा दिंदा है। तुहानूं अपने नेड़े लोड़वंदां नूं लभणा चाहीदा ते उन्हां लई अते उन्हां नाल जो तुसीं कर सकदे हो ओह करना चाहीदा है। इस तरहां इह दिवस असल कारवाई बारे सिर्फ शब्दां बारे नहीं है। काम करन दा ये तरीका नेल्सन मंडेला दी न्याय अते साडे सांझे जीवन प्रति डूंघी वचनबद्धता नूं दर्शांदा है। इह लोकां समूहां अते पूरे कस्बिआं नूं इकट्ठे दयालता दिखाउण लई कहि के शांति दी संस्कृति बनाउण विच वी मदद करदा है। 2026 विच इह दिवस मुहिम दा सुनेहा सधारण है। तब्दीली उदों शुरू हुंदी है जदों रोज़ाना लोक दूजिआं दी मदद करन दा फैसला करदे हन। सो नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस इस गल दी एक मजबूत याद दवांदा है कि एक व्यक्ति दुनिया विच किन्ना बदला लिया सकदा है। यह दिन सानू सारिया नू छोटे छोटे दयालु काम करके अपने नेड़े दे लोकां नू वापस दे के अते समाजक न्याय लई खड़े होके नेल्सन मंडेला दी मिसाल ते चलन लई कहिंदा है। तुहानू दूजिआं नू इस दा हिस्सा बनन विच मदद करन लई सिर्फ कुछ समा बिताने की लोड़ है। ये तुहाडे आले दुआले दे लोकां दे जीवन विच चंगे बदलाव लिआउण विच मदद करन दा एक तरीका है। तुसी सिखाण अपने हुनरां नूं सांझा करन जां किसे कारण लई स्वै इच्छा नाल काम करन वर्गियां चीज़ां राही शामिल हो सकदे हो। हर छोटा जिहा काम मायने रखदा है अते जेकर असी सारे हिस्सा लैंदे हां तां इह कुछ वड्डा जोड़दा है। जेकर असी सारे मिलके काम करिए तां दुनिया बेहतर होएगी। ते आओ हुण सुणदे हां इक वार्ता जिसका विशा है शांति अते टिकाऊ विकास ते वार्ताकार ने मोहिंदर पाल।
1: शांति अते टिकाऊ विकास मनुखी जीवन दे सब तो महत्वपूर्ण अंग हन। जिथे शांति हुंदी है उत्थे मनुखता खिड़दी है, लोग खुशहाली वल वधदे हन अते समाज विकसित हुंदा है। जिथे शांति नहीं उत्थे अशांति अते हिंसा विकास दे सारे यत्नां नूं नष्ट कर दिंदे हन। किसी भी देश विच शांति उस दे विकास लई महत्वपूर्ण कारक है। जिस देश विच शांति हुंदी है उह देश तरक्की करदा है। जिस प्रांत विच शांति हुंदी है वह प्रांत तरक्की करता है। जिस शहर में शांति होंगी है वह शहर तरक्की करता है। जिस परिवार में

चिंतपुर्णी मैया तेरी जय होए। हुणे असीं सुन रहे सी ए पेंट अमरजीत बिजली दी आवाज़ विच। अगली पेंट ए सौण दा महीना चाले आ गए दातिए। आओ सुनदे हां ए पेंट अमृता विरक ते साथियां दी आवाज़ विच।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है। इसे हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये रॉकेट मिशन आगमन के तहत सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों, खासकर युवाओं से इस ऐतिहासिक मिशन को देखने और टीम स्काई रूट की सफलता की कामना करने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चौथे नंबर की चार चेन यू की खिलाफ पहला गेम 21-19 से जीता। वहीं दूसरे गेम में वो 15-10 से आगे थी, तभी चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इसके बाद सिंधु को विजेता घोषित किया गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। वहीं बिहार, कर्नाटक, केरला, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बारिश की संभावना है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड 75 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशंस अक्रॉस 20 स्टेट्स फ्रॉम जालंधर इन पंजाब यस्टरडे। These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme ABSS, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. India's first private orbital rocket, Vikram 1, developed by Hyderabad-based Skyroot Aerospace, is all set for its maiden test flight today as part of Mission Agaman. The liftoff is scheduled for 11:30 a.m. Indian time from the first launch pad at the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. The launch will mark the first flight of an orbital-class rocket fully designed and developed by an Indian private company from domestic soil. Vikram 1 is named in honour of father of the Indian space programme, Dr. Vikram Sarabhai. Prime Minister Narendra Modi described the mission as a historic new chapter in India's space journey. The Prime Minister urged citizens, especially the youth, to follow this historic mission and join in wishing Team Skyroot success by using the hashtag, #IndiaWithVikram1. Union Home Minister Amit Shah will today visit the BSF's 18th Battalion Border Outpost at Jamkachi in West Bengal, located near the India-Bangladesh border, to inaugurate and lay the foundation stone for several BSF-related development projects. Home Minister will also chair a meeting in Siliguri to review border management and security-related issues in the state. The government has convened an all-party meeting tomorrow ahead of the monsoon session of Parliament beginning on

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 10:10 और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 20 सेकंड। अब समय हो गया है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम आपकी पसंद का। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप कुछ ही पलों में अभी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जी हाँ, इस बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के साथ, इस जानकारी के साथ अब हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत में। जैसे कि मैंने पिछले शनिवार को भी आपसे कहा था कि इस शनिवार को भी होगी आपसे मुलाकात। थोड़ा सा इशारा समझे नहीं तो भैया आपको बता दूं कि मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट सुषमा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस शनिवार को भी बहुत सारी बातें करेंगे, तो हमेशा की तरह बहुत सारी गपशप बातें होंगी, लेकिन अच्छे अच्छे गीत भी होंगे और आपकी मेल्स का भी इंतज़ार रहेगा। आज का सवाल क्या होगा ये तो हम आपको बताएंगे अब इस बहुत ही सुंदर से गीत के बाद। पहले आप सुने इस खूबसूरत गीत को जो कि है हम है राही प्यार के फिल्म से, क्योंकि हम और आप सभी एक राही बनने वाले हैं फिलहाल एक घंटे तक मेरे साथ, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत आपका अपना कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इस सफर में मुझे आप सबका साथ ज़रूर चाहिए। आपके सवाल मेरे और जवाब आपके, आपके मेल्स और आपके जो खत हैं ऑनलाइन उन्हें हम जरूर शामिल करेंगे। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आपके

खूबसूरत गीत और इसका पिक्चराइजेशन अगर आप याद करेंगे तो जूही चावला और आमिर खान, रियली जूही चावला इतनी सुंदर लग रही है, उनके मुस्कान दिल को एक बार छू जाती है, कहते ना कि सीना छलनी कर जाती है, सब लोग मतलब लड़के तो क्या लड़कियां भी उनके मुस्कान की इतनी दीवानी थी उस वक्त, कहा जाता है कि और आज के समय भी आप जब भी जूही चावला जी को देखेंगे तो उनकी मुस्कान, वो कहते ना किलर सी उनकी जो स्माइल है ना, वो सबके दिल को अंदर तक छू जाती है, गुदगुदा जाती है और मदहोश कर जाती है। तो इस फिल्म तो सच में ही बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका पिक्चराइजेशन, इसका गीत बहुत अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक। और आप हम सभी श्रोताओं को एक बार फिर से बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और उस पर चल रहा है आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत, और आज है आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा। और दोस्तों हमेशा की तरह हम आज भी मैं एक सवाल पूछने वाली हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले जो श्रोता आज नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। तो ipradiodelhi@gmail.com ये हमारी मेल आईडी है, इस पर आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। ख़ास तौर पर जो सवाल अब मैं पूछने वाली हूं आपसे उससे जुड़ा अगर कोई जवाब होगा आपके पास, अपनी बात अगर आप कहना चाहते हैं तो वो ज़रूर ipradiodelhi@gmail.com पर हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। आपका मैसेज मैं ज़रूर शामिल करूँगी अगर हमारे इस सवाल से संबंधित होगा तो। और सवाल ये है दोस्तों कि आपने देखा होगा इस कहते हैं जैसे गाने के बोल थे कि बहुत श्रृंगार अच्छा लगता है धर, मतलब अगर कोई भी यही सेम लाइन्स हमारी धरती के पर भी सूट करती हैं। कहा जाता ना कि धरती जो है वो बरसात के मौसम में खिल जाती है, जवा जवा सी दिखती है, लेकिन अगर बरसात ही ना हो और हम इस जल का इतना दोहन करते हैं, उसका इतना विनाश कर देते हैं, उसे इतना नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो कैसे हमारी धरती मुस्कुराएगी, जवा जवा सी दिखेगी, कैसे हमारी इस धरती पर अलग अलग मौसम आएंगे। तो बस सवाल इतना कि बरसात आपने देखा होगा कि देश के बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां अभी तक बारिश नहीं हुई है, किसान परेशान हैं क्योंकि उन्हें बुआई करनी है और अनाज पैदा नहीं होगा, क्योंकि किसान अनाज नहीं बोएगा तो पैदा कहां से होगा, हम क्या खाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जल का संरक्षण हो, और जल का संरक्षण के लिए हम छोटी छोटी अपनी पहल कर सकते हैं, जैसे हम बिना वजह बार बार जो काम हम एक गिलास पानी में कर सकते हैं उसके लिए हम 10 गिलास पानी न लगाएं। बर्तन धोते समय भी कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपना नल खुला छोड़ते हैं और लगातार पानी बहता रहता है और बड़े आराम आराम से वो बर्तन साफ कर रहे होते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा घर की सफाई करते हैं, मैं शहरों में जब देखती हूँ बड़ा दुख होता है, लोग एकदम से ग्राउंड वाटर का ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि बड़ी सी मोटी सी पाइप लेके अपने घर के आगे धुलाई कर रहे हैं, अपने वाहनों को चाहे वो बाइक हो, गाड़ियाँ हो, उनकी कारें हों, उन सबको धो रहे होते हैं। ऐसे लगता है लोगों को पानी की कोई चिंता ही नहीं है, लेकिन दोस्तों हमें सचेत होना पड़ेगा। और आज सिर्फ इतना ही सवाल आप सबसे कि आप सब अपने स्तर पर पानी को बचाने का किस तरह से प्रयास करते हैं। अगर आपका हो सकता है कि आपका कोई ऐसा प्रयास, ऐसा उपाय जो आप अपनाते हैं पानी को बचाने के लिए, तो वो हमारे लाखों श्रोता जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनके काम आ जाए। ज़रूर भेजें अपना जवाब और इंतज़ार रहेगा मुझे भी आपकी मेल्स का। एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए, और इस गीत को सुनवाने का एक और मकसद, ये गीत गाया है सुखविंदर सिंह जी ने और आज सुखविंदर सिंह का जन्मदिन भी है, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से सुखविंदर सिंह जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ताल फिल्म से ये बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके लिए।

बहुत ही खूबसूरत गीत, और सुखविंदर सिंह जी की आवाज़ तो सभी जानते हैं कि कितनी हाई पिच पर वो गा लेते हैं ना, सच में बहुत सल्यूट है इनको। और आज ऐसे भी सुखविंदर जी का जन्मदिन है, तो हमारे श्रोता भी खुश होंगे, क्योंकि हमारे सुखविंदर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हमारे श्रोताओं की तरफ से मिल रही हैं। और देखिए, मैं सबसे पहला संदेश जो मैं देख रही हूँ, ये है हमारे आज के लकी लिसनर जिनका मेल मैं अभी देख रही हूँ, ये है रामेश्वर कठेरिया, उमा कांत कठेरिया, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा और बेद हैं, बेद बाबू करके। इन्होंने लिखा कि आपका प्रोग्राम हम सुन रहे हैं, आपको प्यार भरा नमस्कार। और इन्होंने लिखा है कि हाँ, मुंगेशापुर कानपुर देहात से इन्होंने संदेश भेजा है। लेकिन हाँ, जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसके बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। हमने लिखा कि आप पानी को बचाने के लिए क्या क्या ऐसे उपाय करते हैं, चाहे घर पे ही हो, किस तरह से आपका पानी बच सके, बचत हो, उसके लिए आप किस तरह के छोटे छोटे उपाय करते हैं, अपनी जीवन दिनचर्या को किस तरह से आप अपनाते हैं, कैसे छोटे छोटे मतलब होता ना कि पानी की एक एक बूंद को बचाना है जिससे हमें भी पानी मिले और हमारे साथियों को भी। तो ऐसा ही एक संदेश हमारे पास आया जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। लिखते हैं कि पानी की हर बूंद है अमृत, मत तुम इसे बहाओ, कल का जीवन सुरक्षित ना आज से नियम बनाओ, नदियों और तालाबों को प्रदूषण से बचाओ, इस अनमोल रतन की कीमत दुनिया को समझाओ, जब भी करने जाओ ब्रश नल खुला मत छोड़ना, काम खत्म हो जाए तो रुक पानी का मोड़ना, बाल्टी और मग से नहाओ, शावर को तुम त्यागो, पानी की बर्बादी देखकर समय रहते अब जागो, टपक रहे जो घर के नल उनको तुरंत सुधारो, बूंद बूंद की इस चोरी को सूझ बूझ से मारो, वर्षा का जो जल आए छतों पर उसे बचाओ। और ये बहुत ही खूबसूरत संदेश, आपने तो इसी एक खूबसूरत संदेश में सारे उपाय सुझा दिए। और अगर आप अपने जीवन में इन सब चीज़ों को अपनाते हैं तो सच में सैल्यूट है आपको कि आप पानी को बचाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारे साथी हैं गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी और मनीष पवार, और हाँ बाड़मेर राज से लिखा हुआ है, यानी शायद राजस्थान से लिखा है इन्होंने, इसलिए राज लिखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये संदेश पढ़कर बहुत अच्छा लगा। और यही चाहते हैं कि हमारे साथ ही हमारे प्रोग्राम से जुड़ें, लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ अपना नाम सुनने के लिए। अगर हम आपसे कुछ पूछते हैं तो इसका आप सोचिए कि आप अपना नाम सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आपका नाम पढ़ा जाएगा, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि आपका नाम जब आप इतने उत्सुक होते हैं और उसके साथ एक संदेश भी अगर लोग सुनेंगे, एक मैसेज जाएगा, तो कितने ही लोगों को कितनी अच्छी चीज़ें करने को मिल जाएंगी। और साथियों, अगला संदेश है रविंदर सिंह छावड़ा जी का, और ये भी लिखते हैं कि जल प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है, इसका कोई विकल्प नहीं, इसलिए इसकी हर बूंद की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। जल संरक्षण केवल बड़े प्रयासों से नहीं बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतों से भी संभव है। घर, विद्यालय, कार्यालय और खेत, हर जगह पानी का सोच समझ कर उपयोग करें, बेवजह बहते नलों को तुरंत बंद करें और वर्षा के जल का संग्रह करें। जैसे कि पिछले संदेश में हमने आपको बताया, जो हमारे दूसरे साथी हैं उन्होंने कहा था, पेड़ पौधे लगाएं और जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाएं, आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग कर खेती में भी पानी की बचत की जा सकती है। जी बिल्कुल सही, जिसे बोलते हैं ड्रिपिंग सिस्टम, जहां बार आप लगातार पानी ही अपना ट्यूबवेल खुला ना छोड़कर एक एक बूंद से आप हर एक पौधे को सींच सकते हैं। जब हर व्यक्ति ये संकल्प लेगा कि वो एक एक बूंद की कीमत समझेगा, तभी जल संकट से बचा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही, और ये संदेश हमारे करोड़ों लिसनर्स तक पहुंचा है, और उम्मीद करते हैं कि इस पूरी जो आपने उपाय बताए, इन्हें ज़रूर हमारे श्रोता अपने जीवन में अपनाएंगे और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे। इंद्रजीत कौर छावड़ा जी के साथ और स्वीटी छावड़ा के साथ टैगोर गार्डन नई दिल्ली से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुँचाया था। संदीप मक्कर हैं जिनका संदेश अभी अभी हमारे पास आया, इन्होंने भी लिखा कि सुखविंदर सिंह जी को जन्मदिन की मुबारकबाद। इन्होंने ज्योति, मन्नत और भरत और कमल को के साथ अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की।

हैं सुखविंदर जी के लिए, पिंगा वाला चौक गोराया जलंधर से। अगला गाना भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले एक और संदेश मैं शामिल करना चाहूंगी। इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास माणिकपुरी, राजा दास और उज्जवल दास जी ने ये संदेश भेजा है, और ये लिखते हैं कि जल है तो कल है, वृक्ष है फल है, पानी हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है, जल के बिना सब सूना है, हमें पानी की बचत करनी चाहिए, हम अपने घर में नल कभी खुला नहीं छोड़ते, गाड़ी कभी पाइप से नहीं धोते, नल चालू करके कभी नहीं नहाते, जिससे पानी की बर्बादी होती ही नहीं है, क्योंकि हर एक एक बूंद अमूल्य है, सभी को पानी बचाना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि देख सकते हैं इतना जल संकट है, आने वाले समय में अगर लोगों ने सही समय पर अपनी सजगता को नहीं दर्शाया, यानी पानी को ना बचाया और ना ही पेड़ पौधे लगाए, तो और कुओं का तालाबों का संरक्षण नहीं किया, तो आने वाले समय में हमें पीने के पानी के लिए तरसना पड़ेगा, एक एक बूंद के लिए दुर्लभ हो जाएगा और इतना कीमती होगा। कहते ना, अगला युद्ध सिर्फ जल के लिए ही होगा। तो और भी मैसेज शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत गीत सपने फिल्म से।

हाँ बहुत ही खूबसूरत गीत, बस मन करता है कि झूम जाए। और सच में मेरा तो, मैं तो झूम भी रही थी, कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी इस गीत के कदमों के साथ, जो ताल थिरक, मतलब जो होता ना म्यूजिक बज रहा था उसमें जो कदम से कदम थिरक रहे थे, तो मन कर रहा था कि भाई अपने भी हम बस झूम लें। और मैं कोशिश तो पूरी कर रही थी अपनी तरफ से। दोस्तों आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत अपनी दोस्त सुषमा के साथ। और आज हमने आपसे पूछा कि आप अपनी दिनचर्या में पानी को बचाने के लिए किस तरह के प्रयास करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं और इस साल तो बोला भी गया है कि अल नीनो के इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ रहा है। और दिल्ली जैसे शहरों में तो हम रोज़ आप देख रहे हैं कि पानी पीने का मिलता कम है और नाले का पानी मिक्स होकर ज़रूर आता है। क्योंकि पानी कम है तो क्या करे सरकार, वाटर हो सकता है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से साफ़ करके, क्योंकि जैसे कि चेन्नई जैसे शहर में एक ही पानी को बहुत बार रिसाइकल किया जाता है, पीने का पानी उसके लिए अलग नल जो कि डायरेक्ट वाटर सप्लाई होती है। और ऐसे ही बहुत सारी दिल्ली में भी सोसाइटी हैं जिन्होंने अपनी ही सोसाइटी में जो पानी का इस्तेमाल होता है, जैसे टॉयलेट, वॉशरूम, घर का, किचन का जितना भी पानी होता है, उसके लिए एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सोसाइटी के अंदर लगे हुए हैं। और उसी पानी को फिर रिसाइकलिंग यूज़ होता है, उसका रिसाइकल कैसे, उसे वॉशरूम में यूज़ करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा फ्लश में कितना सारा पानी जाता है जब हम एक बार फ्लश करते हैं, तो हमेशा आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी को ज़रूर अपनाना चाहिए। और आजकल जिनके यहाँ पे पुराने फ्लश हैं वॉशरूम में, उन्हें रिप्लेस कराएं, महंगे ज़रूर पड़ेंगे, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट फ्लश आ रहे हैं उससे सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि पानी कम लगता है, उसमें हवा का प्रेशर इतना होता है कि शायद बहुत कम, आधा लीटर पानी के अंदर ही आपका पूरी जो गंदगी है वो क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे और प्रयास करके जो रोज़मर्रा में हमारे वॉशरूम में ही कितना लीटर पानी, ना जाने कितना लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। तो श्रोताओं, हम सिर्फ इतना ही संदेश आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि छोटे छोटे प्रयासों से हम प्रकृति को भी बचा सकते हैं, पानी को भी बचा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के जनजीवन को और किसानों की को भी बचा सकते हैं। इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा, क्योंकि लोगों को पता है, अक्सर जो मैं आसपास अपने देखती हूँ उनकी सोच पता है क्या है, उन्हें लगता है हम तो शहरों में रहते हैं, हमें क्या मतलब, जो परेशानी झेलेगा, जो खेती करेगा कमाएगा वो अपने आप इंतज़ाम करेगा। भाई ऐसा नहीं होता है, हम एक कहते हैं ना सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें सबके लिए सोचना है, पशु पक्षी एक दूसरे के लिए, समाज के लिए, वही अगर हम मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो एक दूसरे के काम भी आएंगे और मुसीबत भी नहीं आएगी। तो एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज एक और हमारे श्रोता ने भेजा है जिसे हम शामिल करेंगे कुछ ही सेकेंड्स में। और ये साथी हैं हमारे

भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीम्पा, कपिल छीम्पा, ईशान और पूजा परिहार ने, और ये लिखते हैं कि आदरणीय मैडम जी आपको हार्दिक नमस्कार। तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। ये लिखते हैं कि प्रोग्राम इन्हें पसंद आ रहा है, गीत भी इन्हें पसंद आ रहा है। मैंने कोशिश किया आज ऐसे गीत आपको सुनवाऊँ सभी श्रोताओं को जो शायद कई सालों से आपने ना सुने हों। तो ये लिखते हैं कि पानी बचाने के बारे में आप आज अच्छा सुनवा रहे हैं, तो देखिए इसमें आपका भी योगदान है कि आप किस तरह से पानी बचाते हैं या नहीं बचाते हैं। तो बचाना शुरू करें, अपने आसपास भी लोगों को आप ज़रूर जागरूक करें कि छोटे छोटे काम, जैसे आपने देखा होगा कि घरों में ही औरतें सफाई करती हैं या मेल भी सफाई करते हैं या धुलाई करने में ही साफ पीने के पानी को इतना वेस्ट कर देते हैं, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, बार बार एक ही चीज़ को करते रहेंगे, धोएंगे उसे अच्छे से। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय पता क्या है, आप जब कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने का जो पानी खंगालने का बच जाता है उसी पानी को रीयूज करिए, उसे वॉशरूम में यूज कर सकते हैं, उसी से घर की सफाई भी कर सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे या फिर जो पानी बच जाता है जिसमें ज़्यादा साबुन ना हो उसी को आप अपने पौधों में, अपनी बगिया में दे सकते हैं, घर के आगे थोड़ा छोटा छोटा या यूं कहें कि थोड़ा थोड़ा सा छिड़काव सा कर सकते हैं। तो ये भी पानी बचाने का एक प्रयास है। और कोशिश करें कि जहाँ पानी के स्रोत हों वहाँ सफाई रखें, अगर मिट्टी उस स्रोत से निकल गई है तो उसे भी साफ करने में अपना योगदान दें, क्योंकि आप स्रोत को साफ नहीं करेंगे, इसी यही कारण है कि हमारी जो कुएं हैं, बावड़ियां हैं और नदियां हैं वो मरती जा रही हैं, क्योंकि लोगों को शहरीकरण की इतनी आदत हो गई, या यूं कहें कि लोग बहाना लगाते हैं टाइम नहीं है। इवन सी गांवों में हम देखते हैं तो वहां पे भी अधिकतर लोग अब नलों का ही पानी का इंतजार करते हैं। भाई नल से पानी लीजिए, लेकिन अगर आपके आसपास कुआं बावड़ी है या कोई नौला है पानी का तो उसकी सफाई भी नियमित तौर से करें, ताकि आपके यहाँ पर पृथ्वी का जो प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहे और प्राकृतिक रूप से जो पानी आता है वो भी आप सबको मिलता रहे। चाहे आप उसे पीने के लिए इस्तेमाल ना करें लेकिन आपके खेतों को, आपके आसपास वो पानी मिलेगा तो आपका जो आसपास है, आपके गांव, आपके किसान और आपका घर बार सब खुशहाल रहेगा। हमारी सबसे बड़ी बात कि हमारी प्रकृति खुश रही, जवां जवां रहेगी, हरियाली दिखेगी, अनाज समय पर मिलेगा और किसान भी खुश रहेंगे। और एक और साथी हैं उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, इन्होंने कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश के साथ लिखा कि जल हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें हर रोज़ जल बचाना चाहिए, कम जल से काम करना सीखना है। जी सीखना है, अभी बहुत सारे लोग सीख चुके हैं और हमें अपनाना है अपने जीवन में। मोहम्मद कमर हैं, उन्होंने भी लिखा कि पानी ही हमारी जान है और पानी ही हमारी आन है, ना बरसे तो विनाश और बरसे तो शान है। जी गुन्नौर से लिखते हैं आदिल कमर, बिल्कुल सही बात कही है आपने, क्योंकि आपने देखा कि इतना संतुलन जो है वो गड़बड़ा गया है कि जब पानी बरस, आप देखा है हमने पिछले कुछ सालों से कि एक साथ ही बारिश होने लग जाती है और एक साथ ही सब

0: और पहाड़ों की तरफ भी अंधाधुंध होकर हम कूच करना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा होगा पहाड़ों में भी कितना एकदम भीड़ बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी वहाँ का संतुलन खराब होता है और पर्यावरण के नुकसान हम सबको झेलने पड़ते हैं। अब अगला संदेश जो है रेवाड़ी हरियाणा से है, ये रेवाड़ी से है, ये लिखते हैं कि हम लोग पानी को बचाने के लिए काफ़ी तरीके से कोशिश करते हैं। जैसे जो आरओ है उसका पानी निकलता है, उससे हम कपड़े धोने के लिए उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, कूलर में उसे डाल देते हैं, और बहुत तरीके हैं पानी को बचाने के। बिल्कुल सही कहा आपने, आरओ का तो इतना पानी वेस्ट होता है, मैं सच में दिल दुखता है जब लोग उसे यूं ही फेंक देते हैं नालियों में। और अगले हमारे श्रोता हैं कूड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित और गर्बी और हिमाक्ष, इनकी तरफ से इन्होंने संदेश भेजा और बस इन्होंने अपने नाम को शामिल करने की गुजारिश की है। ये लिखते हैं कि जल ही जीवन है, जल को सुरक्षित रखना हमारा नैतिक फर्ज है। पौधों को पानी देते समय और गाड़ी को धोते समय विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी ना बहाएं, उसे बचाएं। अगर हम ये संकल्प लें तो जल को बचाकर रखना, तो यकीनन रेगिस्तान में भी इसकी पूर्ति हो सकती है। ये चंडीगढ़ से सतीश अनेजा जी और बिमला जी ने हमें संदेश भेजा है, तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। पंकज शर्मा है जिन्होंने संदेश भेजा अपने साथियों के साथ। बिट्टू भाटिया हैं, इन्होंने भी लिखा हरियाणा झज्जर से, और इन्होंने अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है अपने साथियों रीटा और रजत मयंक भाटिया के साथ, इन्होंने ये संदेश भेजा। हीरामणि जी हैं, उन्होंने भी अपना संदेश भेजा है। हरजिंदर सिंह भाटिया जी ने ये संदेश भेजा है, और इन्होंने आज के विषय से संबंधित तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं एक बार देखती हूँ। ये लिख रहे हैं कि हाँ, ये सिर्फ चाहते हैं कि हम चाय, ये लिख रहे हैं कि चाय की चुस्की के साथ लेते हुए हम प्रोग्राम सुन रहे हैं। स्टेशन रोड जमशेदपुर से इन्होंने संदेश भेजा है सोनू एंजल और पपी भाटिया के साथ, और हैप्पी वीकेंड। तो आपको भी बहुत बहुत साप्ताहिक जो अवकाश है आपका, उसकी बहुत बहुत बधाई, आपका भी हैप्पी वीकेंड। मोहनदास हैं, ये लिखते हैं किशनगंज बिहार से, रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, और ये लिखते हैं कि जल ही जीवन है, किसी भी गीत में शामिल होने के लिए इन्होंने कहा। पर्यावरण, ये लिखते हैं कि पर्यावरण बचाओ देश बचाओ, हम लोग पानी को बेशकीमती माने, उसका सही इस्तेमाल करें और जितना हो उतना पानी हम बचा सकें, दूसरों को भी बचाने के तरीके बताएं, यही इंसानियत है। ये हमारे साथी हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद फूल वाले, सदफ आरजू, जूही इकबाल, इमरान, और कापसेड़ा बॉर्डर से भी इन्होंने साथियों के नाम लिखे हैं, आमना, आसमा, आशु और इनके समस्त परिवार के जन, उनकी तरफ से इन्होंने ये संदेश भेजा। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी मेल्स भी शामिल कर लिया, और गीत जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। बहुत ही सुंदर गीत है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। फूल और कांटे फिल्म से है ये जी, अजय देवगन और कौन याद करिए जी, मधु, वही इस फिल्म के मुख्य नायक थे। बहुत ही खूबसूरत गीत अलका याग्निक की आवाज में।
1: तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल कर...
0: और साथ में कुमार सानू।

बहुत ही खूबसूरत गीत। और देखिए कुछ कुछ यादें सबकी ताज़ा हो गई होंगी और बहुत सारे मैसेजेस देख रही हूँ मैं स्क्रीन पर जो कि आ चुके हैं हमारे पास। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक, मधु नायक जी ने संदेश भेजा है और इन्होंने पानी बचाने को लेकर वैसे कुछ नहीं कहा है। साथियों आज हमने कहा कि आप अपनी तरफ से किस तरह के प्रयास करते हैं पानी को बचाने के, हमें ज़रूर बताएं। अनु बरजातियाँ जी हैं, वो लिखती हैं, अगर ठंडी छाँव चाहते हो तो कुल्हाड़ी मत चलाओ, पेड़ चलाओ, पेड़ लगाओ। अगर नदियों को जिंदा देखना चाहते हो तो कचरा मत फेंको, पानी बचाओ। अगर धरती को सांस लेते देखना चाहते हो तो प्रदूषण मत फैलाओ, पेड़ लगाओ। और इन्होंने 100% सच बात कही है। शमशुल खान और अनुराज बेनारा के साथ इन्होंने ये संदेश मुंबई से भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से सभी साथी हमारे प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। समय कम है लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी आपके संदेशों को जरूर शामिल करूं जो अभी आए हैं। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य और कोयल मल्होत्रा तथा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से भी कुछ साथियों जैसे पीयूष कोयल और डुगू भाविका सिक्का का संदेश आया है हमारे पास। ये लिखते हैं कि

आज खोरवाल जी का संदेश हम शामिल कर चुके हैं, नहीं वैसे नहीं शामिल किया था, लेकिन इन्होंने भेजा है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी और गीतिका भानु प्रकाश के साथ अपना संदेश। सुरेंद्र संधु ने संदेश भेजा है अनिता रोहित और रितेश शिखा प्रतीक्षा संधु के साथ गुलाम रोड हरगोविंद सिंह नगर नवांशहर से। आपने भी नहीं बताया कि पानी बचाने के लिए आप किस तरह के प्रयास करते हैं। स्वर्ण सिंह जी ने भी संदेश भेजा है गाँव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर और गुरलाल अविराज सिंह के साथ अपना संदेश, और इन्होंने भी कहा कि किसी भी गीतना में शामिल करें। डोल राणा जी ने संदेश भेजा है और ये लिखते हैं कि पानी का बचाओ प्रेरणादायक, शायद ये लिखना चाहते हैं कि पानी के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं वो अच्छा है, जल जीवन का आधार है और इसे बचाना है, बेहद ज़रूरी है इसे बचाना, ये लिखना चाहते हैं। और अगर पानी नहीं बचाएंगे तो संकट होना लाजमी है, तो हम सबको अपने अपने प्रयास करने हैं। यही हम आपसे हमेशा गुजारिश करते हैं कि अपने प्रयास में कभी कमी ना छोड़ें। और शीशपाल वर्धन, इन्होंने भी लिखा है कि इन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है, शुक्रिया। पंकज शर्मा हैं, इन्होंने संदेश भेजा कि दीदी जी हमारा ये क्या लिखते हैं भाई, पानी बचाने को लेकर बात भी तो लिखी है आपने अपने साथियों नूतन, संदीप और गुगलानी और जगमोहन प्रजापति और अन्य साथियों के साथ ये संदेश हम तक पहुंचाया है। हमारे बहुत सारे साथी जो बार बार अपना नाम भेज रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि विषय पर अगर आप बात कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें भी। और ये जो अगला गीत मोहित चौहान की आवाज़ में आप सुनेंगे, बर्फी फिल्म से, ये बहुत ही खूबसूरत गीत है। बबलेश पवार हैं हमारे एक साथी जिन्होंने हमें अपना संदेश भेजा और लिखते हैं कि पानी की हर बूंद है अमृत, इस मत इसे बहाओ, कल का जीवन सुरक्षित करना आज से नियम बनाओ, नदियों और तालाबों को प्रदूषण से बचाओ, इस अनमोल रत्न की कीमत दुनिया को समझाओ, जब भी करने जाओ ब्रश नल खुला मत छोड़ना, काम खत्म हो जाए तो रुख पानी का मोड़ना। जी बहुत सही, और आपका संदेश देखिए दो बार शामिल कर लिया हमने एक तरह से। मोहनदास जी हैं, उन्होंने भी बिहार से भेजा है रविंद्र मोहन और आशा देवी के साथ अपना संदेश। उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे साथी हैं जिनके संदेश शामिल नहीं हो पाए होंगे, वो नाराज़ नहीं होंगे। ऐसे ही एक साथी हैं जवाहरनगर दुर्ग से जिनका संदेश भी हमें मिला है, आर सी कांबड़े, करुणा मीना और अश्विनी और विपुल कांबड़े के साथ, यशमीत आशु, प्रकाश वर्मा, सुदर्शन जी का भी संदेश आया है, सुदर्शन मुखी जी का भी हमारे पास, और अनु बड़जाथिया जी का जो पहले संदेश था उसमें बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि मुंबई में ज़्यादातर ऊंची बिल्डिंग्स की छतों से आने वाले बारिश के पानी की पाइप के जरिए उसे ज़मीन में ड्रमों में इकट्ठा कर लिया जाता है, बहुत अच्छी बात। तो साथियों समय कम है, आपसे विदा चाहती हूँ इस कार्यक्रम से, आप यूं ही बने रहें और सुनते रहें हमारे इस स्टेशन को 24 घंटे 7 दिन, और फिलहाल इस कार्यक्रम से दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। और अब समय हो गया है समाचारों का। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये रॉकेट मिशन आगमन के तहत

0: आज दिन में 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट स्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाज सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज अचा वास्क्वेज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचू को आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने कहा कि श्री वांगचू को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अस्पताल ले जाया गया। श्री वांगचू पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर थे। फीफा विश्व कप में 3रे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चौथे नंबर की चार चेन यूफी के खिलाफ पहला गेम 21-19 से जीता। दूसरे गेम में वे 15-10 से आगे थी, लेकिन चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इसके बाद सिंधु को विजेता घोषित किया गया। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sanjay Mattu. India's first private orbital rocket Vikram 1, developed by Hyderabad-based Skyroot Aerospace, is all set for its maiden test flight today as part of

आप सुन रहे हैं सबरस, और अब सबरस में आप सुनेंगे सईद राही की लिखी गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में।

बहुत ही खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे, और अगला तराना रूमाल लैला के स्वर में, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं सबरस, और सबरस में अब आप सुनेंगे पंजाबी गीत गुरदास मान के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सबरस, और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ध्रुव बेदी से सितार वादन, राग अल्हैया बिलावल, तबले पर साथ दे रहे हैं सप्तक शर्मा।

0: सुरभंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अभी आपने ध्रुप वेदी का सितार पर राग अलहिया पिलावल सुना। तबले पर इनका साथ दे रहे थे सप्तक शर्मा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप आकाशवाणी के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के लिए अपने संदेश भेज सकते हैं ip.radiodelhi@gmail पर। 12 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अब से कुछ देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आर्म फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं, बल्कि घर में घुसकर मारेंगे।

0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

घर आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: हर आंगन।
1: नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड के साथ जुड़ चुके हैं आप आपके अपने घर आंगन कार्यक्रम में। आज आपके स्वागत सत्कार में हैं हम, तो स्वीकारें मेरा यानी प्रतिभा का और
2: मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, हमारे इस कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल के 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर और साथ ही AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी आप सुन रहे हैं। तो अब वक्त है हमारे सेगमेंट आज के प्रश्न का। तो आज आपको बताना है उन प्यारी यादों के बारे में जब आपकी किसी ने मदद की हो।
1: बिल्कुल, हम आज का जो हमारा प्रश्न है, देखो मनीषा तुमने बता ही दिया है, हमारे श्रोता सुन रहे हैं और वो मेल करने के लिए तैयार भी हो गए होंगे। तो एक बार प्रश्न फिर से दोहरा देती हूँ कि जब आपकी किसी ने मदद की हो, क्योंकि ये मूवमेंट हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी आया ही होगा, है ना, ये क्षण हमारी जिंदगियों में आता ही है। तो आपके दिल से किसी का शुक्रिया कब किया, कैसे किया, इससे जुड़ी यादें आपको हमारे साथ साझा करनी है, किससे बताने हैं और अपनी यादों को भी आपने ताजा ही करना है।
2: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, यादों के गलियारे में जाकर खंगालिए, टटोलिए अपने उन पलों को, बांटिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी कहानी बन सकती है हमारे शो की मुस्कान। अपने जवाब हमें भेजिए fmgoldga@gmail.com पर और दूसरों को भी ऐसे खूबसूरत लम्हों के लिए सहभागी बनाइए।

0: जी हाँ, ये गीत आप सुन रहे थे अभी तो जीलें फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। और देखिए, जीवन को जीने की जो उमंग है उसका इस गीत में कितना सुंदर जिक्र था। और साथियों, हमारा कार्यक्रम है आपका अपना घर आंगन, जिसमें हम हर बार आपको देते हैं एक प्रश्न जो जिंदगी के उन तमाम फलसफों से जुड़ा होता है जिसमें हम जिंदगी को और अच्छे से जीना सीखते हैं। तो उन्हीं फलसफों में आज एक फलसफा है उस बात का, जो हमारा प्रश्न है कि आपको ये बताना है कि आपकी मदद किसी ने कब की थी और उससे जुड़ी हुई आपकी खूबसूरत यादें बांटनी है। पहला
1: बिल्कुल।
0: संदेश भी आया है प्रतिभा, और ये नवीन भाटिया जी का आ चुका है, और ये अपनी यादों में 1999 के गलियारे में पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन दिनों डीटीसी की बस में वो आते जाते थे और उस समय कुछ पैसे उनके पॉकेट में थे और वो पॉकेट से बाहर निकल रहे थे जब वो बस में यात्रा कर रहे थे। इस दौरान किसी सज्जन ने उन्हें बताया कि पैसे अंदर कर लीजिए आपकी जेब से। और जानते हो, नवीन जी को उस सज्जन का चेहरा आज तक याद है। और
1: बिल्कुल। देखो मनीषा, जब कोई किसी का भला करता है या उसकी मदद करता है तो हम उसके चेहरे को, उस शख्स को कभी भूल ही नहीं पाते। और देखो कितनी पुरानी बात इन्होंने याद की है, आज 1999 की बात ये बता रहे हैं। और देखिए, अच्छा कर्म आपको यादों में, दूसरों की यादों में
0: जिंदा
1: संजोकर ही
0: रखता
1: रखता है,
0: है।
1: जिंदा
0: बिल्कुल
1: रखता है। बिल्कुल, है ना।
0: बिल्कुल। और उसी तरह प्रतिभा, आज का दिन भी ना एक अच्छी याद को संजोया हुआ है, और वो अच्छी याद है आज के दिन में एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसको पूरी दुनिया सेवा, संकल्प, क्षमा और साहस के साथ मानवतावाद के आयाम से जोड़कर देखती है, और पूरी दुनिया उन्हें नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है।
1: बिल्कुल।
0: समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रतिभा, आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेल्सन मंडेला के नाम

0: मनाते हैं।
1: और देखो जो आज का हमारा सुविचार भी है वो भी उन्हीं के ही मानवतावादी विचारों से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे दुनिया को बदला जा सकता
2: बिल्कुल।
1: है।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज के दिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम याद कर रहे हैं दोस्तों। तो इस खास दिन के साथ आपको फिर से याद दिला दूं हमारे आज की प्रश्नोत्तरी के बारे में, और वो प्रश्न है इंसानियत से जुड़ा हुआ कि जब आपकी किसी ने मदद की तो आपको अपने अनुभव बताना है FM Gold GA@gmail.com पर।

0: मन मंदिर। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज़ थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। और देखो मनीषा, मेल हमारे पास आ रही हैं, यानी कि
1: हाँ
0: हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि उनकी जो ये उत्सुकता है, जो उनके मेल भेजने का जो ये है,
1: जुड़ाव उनका
0: जुड़ाव
1: जो
0: है, वो
1: हमारे
0: दिखा
1: साथ
0: रहा
1: है।
0: है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखो मेल आया है हिसार से, जिसमें राजू अग्रवाल, चरण दास, रेखा चौधरी वास ये लिख रहे हैं। चरण दास जी कहते हैं कि वो एक समय था कि वो बीमार थे और उनके खुद के पास पैसे थोड़े कम थे,
1: अच्छा
0: लेकिन ऐसे में भी उन्होंने किसी ज़रूरतमंद बीमार को 50 रुपये देकर उसकी मदद की थी। और फिर 5 साल के बाद उन्होंने ये बताया कि उनका जो बेटा है वो सड़क हादसे में कहीं पर वो घायल हुआ, लेकिन सड़क हादसे का शिकार हुआ, लेकिन उसे ज़रा सी भी खरोच नहीं आई। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उस मदद का फल आपको कहीं ना कहीं मिलता है।
1: वो कहते हैं ना कि कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है, मुश्किलें खुद ब खुद आसान इंसान की होती हैं। तो ये खूबसूरत जो संदेश हैं इन बातों का ही हमें फलसफा बता रहे हैं। और देखिए एक और संदेश हमारे पास आया है महेश अग्रवाल जी का, प्रतिभा। उन्होंने नमस्कार कहा है। नमस्कार आपको महेश जी। वैसे तो बहुत से लोग कई बार मदद करते हैं और मैंने उनकी मदद की है, लेकिन दो बार की बातें उन्हें याद हैं जिन्हें वो भूल नहीं सकते। और उन्होंने कहा है, पहली बार बहादुरगढ़ आया था, 1993 की बात है। मैंने पढ़ाई करने के बाद, नहीं, मैं पैदल दुकान दुकान जाकर सप्लाई का काम करता था। और तब एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि मेरे पास एक साइकिल नहीं है, एक रखी है साइकिल, और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तुम दे देना ये साइकिल, ले जाओ। याद है वो दिन उनको आज भी, कि इस तरीके से किसी ने उनकी मदद की थी। और उसी तरह 2002 में अचानक से उनकी जॉब छूट गई थी और उनके पास कोई भी काम नहीं था और पैसे भी नहीं थे। ऐसे में उनके एक दोस्त ने उन्हें 1,000 रुपये दिए थे दुकान के काम के लिए, और बस वो मदद उन्हें याद है आज तक। और देखिए ये ऐसी बातें ही जो होती हैं जीवन में ना, वो याद रह जाती हैं प्रतिभा, और
0: और
1: अच्छा
0: देखो
1: लगता है इन्हें याद
0: बिल्कुल
1: करके।
0: बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि ऐसी जो मदद होती है और वो जो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं वो कभी भुलाए नहीं भूलते। और देखो ऐसे ही एक और मैसेज आया है कबीर कश्यप जी का, वो कह रहे हैं कि मेरा नाम ललित है ना, वो किसी उससे किया होगा उन्होंने, कि वो पठानकोट पंजाब से हैं। और उन्होंने लिखा है कि जब एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उनका पर्स चोरी हो गया बस में, और उनके पास किराए के भी पैसे नहीं थे। तो उस मुसीबत की घड़ी में कोई मिस्टर पवन शर्मा जी आए उनकी मदद करने के लिए, उन्होंने उनकी मदद की। और तब से ही वो कहते हैं कि मतलब कि दुनिया में नहीं, आज वो दुनिया में नहीं है जिन्होंने उनकी मदद की थी। कि मैं उनके अपने पैसे कह रहे हैं कि कैसे वापस करूं। देखिए कभी कभी हम चाहते हैं कि हम जिन्होंने आपके ऊपर उपकार किया है हम वापस उन तक पहुंचाएं, लेकिन अगर आपके मन में आज ये इच्छा है कि आप उस उपकार का बदला चुकाना चाहते हैं तो आप भी किसी की मदद कर सकते हैं, क्यों?
1: बिल्कुल सही उपाय बताया तुमने प्रतिभा। और देखिए जो प्रकृति है ना, आप प्रकृति के कण कण में अपने भाव बिखेर सकते हैं, अपनी सद्भावनाएं बिखेर सकते हैं दोस्तों। और आपको कभी मन में ये मलाल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मन में जो सुंदर भावनाएं हैं वो अपने आप प्रकृति में प्रेषित होती हैं और आपकी खुशियों को बरकरार रखती हैं।

जी हाँ, जीने के बहाने देने वाले ये छोटे छोटे पल और इन्हीं में बसा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे दहलीज फिल्म से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। और आपको याद दिला दें कि आज हमारा जो प्रश्न है वो आपके लिए है, जब आपकी किसी ने मदद की तो आपको अपनी भावनाएं अपनी कहानी साझा करनी है हमारे साथ fmgoldga@gmail.com पर। और दोस्तों, चूंकि बात है ख्यालों की और ऐसी यादों की जहाँ पे किसी ने आपकी मदद की, आपके मन में कैसे भाव उपजे, तो अभी हम भाव और भावनाओं की बात करते हैं कवि की उन कल्पनाओं के बारे में जहाँ सभी के ख्याल

0: पहुंच पाते। तभी तो कहा जाता है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।
1: बिल्कुल ठीक कहा मनीषा तुमने। देखो कवि अपनी कल्पनाओं और अपने भावों को कविता की शक्ल में संजोता है और जब वो कविता सुनी जाती है और पढ़ी जाती है तो वो अमर हो जाती है ना।
0: और इसी दिशा में ना प्रतिभा, शिक्षा मंत्रालय की एक वो है जो मैं बताना चाहती हूँ, एक कवायद है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कदम उठाकर राष्ट्रीय कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया है।
1: और देखो इसका जो उद्देश्य है, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में साहित्य, कविता और प्रभावी वाचन के प्रति उनमें रुचि विकसित करना है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय काव्योत्सव 2026 का आयोजन न 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए किया गया है। और जानते हैं 31 जुलाई तक आप इसमें अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
1: और आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ई पुस्तकालय पर उपलब्ध चयनित सूची में से किसी एक कविता का चयन करना होगा और इसके बाद 60 से 90 सेकंड का स्पष्ट ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर उसे अपने अथवा अभिभावकों के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करना होगा।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है प्रतिभा। और देखो छात्रों को जो उनकी कविताएं चुनी जाएंगी उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अपना मतलब ऐसा रिकॉर्ड करना जिसमें उनका चेहरा दिखाई दे और उनका जो बैकग्राउंड है उस पर किसी भी तरीके के किसी म्यूजिक का वो प्रयोग ना करें ताकि उनका वो वीडियो निरस्त ना हो जाए। और प्रतिभागियों को वीडियो साझा करते समय राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के आधिकारिक हैंडल को टैग करने के साथ हैशटैग राष्ट्रीय काव्य उत्सव हैशटैग का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
1: और अंत में प्रतियोगिता की वेबसाइट पर वीडियो का लिंक अपलोड कर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करना होगा। इस तरीके से पंजीकरण हो जाएगा पूरा और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रेष्ठ 10 प्रतिभागियों को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। प्रतियोगिता में चयनित जो सर्वश्रेष्ठ 10 विजेताओं को राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के मंच पर सम्मानित किया जाएगा और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी प्रतिभागियों को शिक्षा मंत्रालय की ओर से भागीदारी प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा।
0: और राष्ट्रीय काव्य उत्सव का जो उद्देश्य है दोस्तों वो बहुत ज़रूरी है आज के समय को देखते हुए कि विद्यार्थियों में कविताओं के प्रति, मौलिकता के प्रति रुचि हो, पढ़ने की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले, उनकी अभिव्यक्ति, उनका आत्मविश्वास और उनकी रचनात्मकता की जो क्षमता है उसका विकास होता रहे।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज में अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी चालाक।
1: जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं और प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि हमारी आज की प्रश्नोत्तरी के उत्तर में जो उन्होंने उत्तर दिया है उसे शामिल किया जाए। और इसी संबंध में हमारे पास जो एक मेल है बहुत प्यारा सा, ये है गौरी शंकर वर्मा जी का। इन्होंने हम दोनों को राम राम कहा है। जी आपको भी राम राम। और अपनी एक याद बताते हुए वो हमें लिखते हैं कि 2003 सितंबर के समय में जब वो घर वाली मतलब अपनी वाइफ के साथ स्कूटर पर कहीं जा रहे थे, ऐसे में गाड़ी चलाते वक्त किसी ने उन्हें टक्कर मार दी और दोनों के सिर में गहरी चोट लगी। उनकी वाइफ को होश तो आ गया था लेकिन वो कोमा में चले गए थे और 1.5 महीने के बाद उन्हें होश आया। वहाँ पर उन्हें जब इस तरीके की स्थिति से उबारते हुए पकड़कर जो लोग लाए थे उसमें एक पति पत्नी और उनका बच्चा साथ में था। उन्होंने अपनी गाड़ी में उन्हें डाला, अस्पताल ले गए और उन्हें पता भी नहीं था गौरी शंकर जी को, क्योंकि वो तो बेहोश थे। तो वो आज भी याद करते हैं उन अच्छे इंसानों को कि वो कौन थे। उन्हें पछतावा है इस बात का कि मुझे उनकी जानकारी नहीं मिली, मैं उन्हें ढूंढा, मुझे पता नहीं चला, जिन्होंने मेरी मदद की थी मैं उनको धन्यवाद कह सकूं। और वो कहते हैं कि परमात्मा उन लोगों की मदद करें, उन्हें शक्ति दें और उनकी सुरक्षा करें। कितनी खूबसूरत भावना है प्रतिभा।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मनीषा। देखो कुछ लोग फरिश्ते की तरह आते हैं और वो मदद करके चले जाते हैं, और गौरी शंकर जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और देखो एक और मेल हमारे पास है जो आई है शांति नगर सोनीपत से, और लिखने वाले हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी। वो कहते हैं कि जीवन में माता पिता से अधिक और निस्वार्थ मदद और कोई नहीं कर सकता। देखो कितनी सही बात कही है। वाकई जो हमारे माता पिता होते हैं वो दिन रात हर समय हमारी मदद के लिए, हमारे साथ के लिए, हमारे साथ में खड़े रहते हैं। और वो आगे ये कहते हैं कि लोग अक्सर सुंदर चेहरे भूल जाते हैं पर किसी के द्वारा दिया गया साथ कभी नहीं भूलते। वाकई हम किसी की मदद को कभी नहीं भुला सकते। और वो साथ ही साथ मनीषा देखो वो हमें आज के दिन की और जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, सुखद हो। तो आपका भी दिन, हमारे सभी श्रोताओं का दिन, जीवन खुशियों से भरा हो, सुखद हो, शुभ हो।
1: बिल्कुल। और इसी भावना के साथ

0: हम हमेशा याद करते हैं या याद रह जाते हैं वो लोग जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है। और इसी फलसफे को याद करते हुए हमने आज का प्रश्न आपके लिए रखा है कि जब आपकी किसी ने मदद की, आपको बताना है fmgoldga@gmail.com पर अपनी कहानी, अपनी यादें, अपनी स्मृतियाँ हमारे साथ साझा करते हुए। और अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव में बात करते हैं मदद करने वाले उन साथियों की जो चुपचाप मदद करते हैं। जानते हैं वो कौन है? सुनिए, वृक्ष वो कविताएं हैं जिन्हें धरती आकाश पर कलम बनाकर लिखती है। वृक्ष की छांव एक ऐसा एहसास दोस्तों जिसने हर जीवन को छुआ होगा। तो एक जानकारी इन हरियाली मित्रों से जुड़ी हुई आज है आपके लिए।
1: भाई देखो, ऑक्सीजन देना, जलवायु को हमारे अनुकूल रखना, जल और मिट्टी को संरक्षित रखना, उन्हें उपजाऊ और साफ शुद्ध बनाना और वन्य जीवन को आश्रय देना है ना। हमें औषधि और भोजन देना और सबसे अहम जो गर्म होती पृथ्वी को शीतल करना और वर्षा को निमंत्रण भी देना।
0: बिल्कुल, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले हमारे ये दोस्त परिवार के मुखिया की तरह दोस्तों हमारी खुशी और सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, है ना?
1: वो भी बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे, हमें कितना कुछ देते हैं ना ये वृक्ष।
0: बिल्कुल,
1: तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है इनके प्रति। इसलिए इन हरियाली मित्रों की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रीन हेल्पलाइन शुरू की है, जिसका नंबर है 1800118600। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पेड़ों की अवैध कटाई रोकने में आप अपना योगदान दे सकते हैं।
0: प्रतिभा, ये नंबर हम अपने दोस्तों को एक बार फिर बता दें, नंबर नोट कर लीजिए, 1800118600। और हाँ, दिल्ली ऐप के जरिए पर्यावरण संरक्षण से जुड़कर वृक्षों की अवैध कटाई की ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं आप।
1: बिल्कुल, और देखो, वृक्षों को लगाना ही नहीं बल्कि उन्हें संजोना भी समय की मांग है। इसलिए एक पेड़ माँ के नाम तो होना ही चाहिए ताकि हमारा भी नाम सदियां गुनगुनाए
0: और झूमती लहराती डालियां जब जब बल खाएं।

0: लव स्टोरी इस फिल्म से आपने सुना अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को।
1: और देखो मनीषा, वो कहते हैं ना कि सपनों की उड़ान ऊंची हो तो आसमान छूना बेहद आसान होता है। ज़रूरत होती है एक संकल्प, इच्छा शक्ति, अनुशासन और साथ ही साथ कड़ी मेहनत की।
0: और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है प्रतिभा ओडिशा की बालांगीर जिले की रहने वाली पायल नाग ने।
1: और देखो उनकी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास ने उन्हें दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली चारों अंगों से वंचित पैरा एथलीट बना दिया है।
0: क्योंकि बचपन में प्रतिभा बिजली का करंट उनको लगा था और इस दुर्घटना में उनके अपने दोनों हाथ और पैर खराब हो गए थे। इसके बावजूद वो हार नहीं मानी और उन्होंने, जानती हो, पैरा आर्चरी को अपना लक्ष्य बना लिया।
1: देखो उन्होंने अपने कोच कुलदीप वेदवान के मार्गदर्शन में विशेष तकनीक और अनुकूलित उपकरण की मदद से तीरंदाजी सीखी।

0: उन्होंने विश्व चैंपियन शीतल देवी को हराकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया।
1: और देखो अब पायल नाग भविष्य में पैरा ओलंपिक पदक जीतने का लक्ष्य रखती हैं। दोस्तों वाकई पायल नाग की कहानी दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

देखिए, जीने की तमन्ना और मरने के इरादे के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है और हमारी प्रश्नोत्तरी जब आपकी किसी ने मदद की, इसके लिए हमारे पास संदेश आया है भट्टीपुरा महोबा।

उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता का, और उन्होंने अपनी यादें साझा करते हुए बताया है कि 1992 में उनका एमए फाइनल का रिजल्ट आया था। तकनीकी खामी की वजह से डिग्री लेने के लिए 200 किलोमीटर दूर उन्हें झांसी जाना पड़ा था, और वहां पे जो क्लर्क है वो 2-3 दिनों से उनके काम को टाल रहा था। निराशा के बीच जब रजिस्ट्रार के चपरासी ने उनसे कहा कि आप एक बार जाकर साहब को अपनी समस्या जरूर बता दें, तब उन्होंने रजिस्ट्रार से बात की, और उनके बात करते ही वे स्वयं अपनी सीट से उठकर संबंधित बाबू के पास गए और उसे डांटा, और उसी दिन ही उनकी डिग्री उन्हें मिल गई। ऐसे परोपकारी अफसर को वो

0: रजिस्ट्रार के चपरासी ने उनसे कहा कि आप एक बार जाकर साहब को अपनी समस्या जरूर बता दें। तब उन्होंने रजिस्ट्रार से बात की और उनके बात करते ही वे स्वयं अपनी सीट से उठकर संबंधित बाबू के पास गए और उसे डांटा और उसी दिन ही उनकी डिग्री उन्हें मिल गई। ऐसे परोपकारी अफसर को वो जीवन पर्यंत याद रखे हुए हैं।
1: और देखो एक मेल और है डी राजेश्वर राव जी का, वो कहते हैं कि हमें पेड़ों को प्लांट करना चाहिए, लगाना चाहिए और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल उनका ध्यान करना चाहिए, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। पानी दो उन्हें, हग करो और किसी को उन पेड़ों को काटने मत दो।

0: गाइड, ये थी फिल्म जिसका आपने गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और देखो मनीषा, बात अगर बाजार की करें तो बाजार उपभोक्ता और उत्पादन की एक सफल साझेदारी से चलता है। आज बाजार में तरह तरह के उत्पाद मिलते हैं जिसे हम उपभोक्ता जरूरत के अनुसार खरीदते हैं।
1: पर एक सफल उपभोक्ता वही है जो लुभावने विज्ञापनों से दूर रहता है और समझदारी से खरीदारी करता है।
0: तो आइए आज बात करते हैं कि कैसे आप कुछ बातों का ध्यान रखकर एक अच्छे उपभोक्ता यानी एक अच्छे कंज्यूमर बन सकते हैं।
1: कोई भी वस्तु खरीदने से पहले गुणवत्ता, कीमत और उपयोगिता की जानकारी लें, हमेशा बिल और रसीद जरूर लें।
0: बिल्कुल। और देखो उत्पादन का जो उत्पाद है उस पर आप तिथि यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें और उस पर गुणवत्ता चिन्ह देखना बिल्कुल ना भूलें।
1: तो इन छोटी छोटी बातों के साथ खरीदारी करें और खुश रहें।

0: दोस्तों ये साधना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत आप सुन रहे हैं और घड़ी की सुइयां जाने का इशारा कर रही हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस हमारा सफर यहीं तक। आप अपना ख्याल रखें, मनीषा और प्रतिभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं

पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

0: अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India's first privately developed orbital rocket, Vikram 1, under Mission Agaman, has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. The milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Prime Minister Narendra Modi congratulated Skyroot Aerospace for the achievement. Mr. Modi spoke to Team Skyroot by phone and lauded the historic space feat. The Prime Minister also invited Team Vikram 1 to meet him.
2: Success. Bharat aur puri team bahut bahut badhai.

मनीषा कोइराला, काजोल, ओम पुरी, परेश रावल और राज बब्बर से सजी ये फिल्म उस दौर की सबसे चर्चित थ्रिलर फिल्मों में से एक मानी जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं फिल्म के पहले गीत के साथ।

ये गीत अपने सुपरहिट म्यूजिक और शानदार फिल्मांकन के कारण आज भी श्रोताओं की पसंद बना हुआ है। संगीतकार बीजू शाह ने इस फिल्म के हर गीत में आधुनिक संगीत और भारतीय धुनों का सुंदर मेल प्रस्तुत किया। गीतकार आनंद बख्शी के शब्दों ने इन धुनों को और भी यादगार बना दिया। दुनिया का है तो इस फिल्म के बारे में और भी बात करते रहेंगे, तब तक सुन लेते हैं इस फिल्म का अगला गीत।

भी प्रभावशाली बना दिया। अगर हम इस फिल्म के कलाकारों के अभिनय की बात करें तो बॉबी देओल ने साहिल के रूप में एक भावनात्मक और एक्शन से भरपूर अभिनय किया। मनीषा कुराला ने अपनी सहज और संवेदनशील प्रस्तुति से कहानी को अलग ही मजबूती दी। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हुई काजोल के अभिनय की। उनके किरदार ने दर्शकों को एकदम चौंका दिया और यह भूमिका आज भी उनके करियर की सबसे यादगार प्रस्तुतियों में गिनी जाती है। सहायक भूमिकाओं में ओमपुरी, परेश रावल और राज बब्बर ने फिल्म को नई ऊंचाई दी।

दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक राजीव राय ने इस फिल्म को एक सस्पेंस थ्रिलर के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहानी को इस तरह बुना कि दर्शक लास्ट तक वास्तविक अपराधी का अनुमान लगा ही नहीं सके। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और संपादन ने रहस्य के वातावरण को और

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं हमने जाना फिल्म गुप्त की रोमांचक कहानी, इसके कलाकारों, संगीत और इससे जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में। इसी के साथ मुझे यानी सुनिधि को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी एक ही फिल्म से के अगले अंक में और एक और यादगार फिल्म और उसके सदाबहार गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, ए आकाशवाणी ए। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। भारत दे पहले निजी तौर ते विकसित रॉकेट विक्रम 1 ने

प्राप्त करने वाला दुनिया का तीजा देश बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्राप्ति लई स्काईरूट एयरोस्पेस नूं वधाई दित्ती। श्री मोदी ने स्काईरूट टीम नाल फोन ते गलबात कीती। प्रधानमंत्री ने विक्रम वन टीम नूं उन्हां नूं मिलण लई भी सद्दा दित्ता। विज्ञान ते तकनालोजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी उन्हां नूं इस प्राप्ति ते वधाई दित्ती। विक्रम वन भारत दा पहला निजी तौर ते विकसित ऑर्बिटल लांच वाहन है। इस नूं हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस वल्लों डिजाइन ते तैयार किया गया सी। आगमन मिशन दे हिस्से वजो विकसित किया गया यह रॉकेट छोटे उपग्रह लई किफायती लांच सेवावां प्रदान करन लई है। विक्रम वन, जिसका नाम भारतीय पुलाड़ प्रोग्राम के पितामह डॉ विक्रम साराभाई के नाते रखा गया, विच तीन ठोस प्रोपेलेंट पड़ा एक तरल इंजन वाला रमन इंजन लाया गया। यह पुलाड़ के सब तो हेठले ग्रह पंच पेलोड

रिकॉर्ड पद्धर ते पहुंच गया है, जदों की 2014 विच करीब 40,000 करोड़ रुपए सी। उन्हें कहा कि सरकार ने इस साल रक्षा उत्पादन विच 2 लाख करोड़ रुपए दे अंकड़े नूं पार करन दा टीचा रखा है। ए खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा XHandle है @AIR@RNewsJalandhar। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मोलडोवा, उत्तरी मैसेडोनिया ते रोमानिया दे सरकारी दौरे ते रवाना होणगे। नवी दिल्ली विच मीडिया नूं जानकारी दिंदिआं विदेश मंत्रालय विच पच्छम बारे सकत्तर सीबी जॉर्ज ने कहा कि इस महीने दी 25 तरीक तक जारी रहण वाले सरकारी दौरे मोलडोवा गणराज, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज ते रोमानिया दे राष्ट्रपतियां दे सदे ते कीते जा रहे ने। उन्हां कहा कि यह दौरा काफी इतिहासक महत्व रखता है क्योंकि यह किसी भारतीय राष्ट्रपति

0: सामने होणगियां। ए मैच भारतीय समय अनुसार तड़के 2:30 बजे मायामी स्टेडियम विखे शुरू होगा। आखिर च खास खबरां। भारत के पहले निजी तौर ते विकसित रॉकेट विक्रम 1 ने आगमन मिशन के हिस्से वजो धरती की सतह तो 450 किलोमीटर उपर पेलोड नूं सफलता नाल ग्रह बंद विच कायम कीता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी विरुद्ध भारत की सख्त नीति सिर्फ एक बयान नहीं है, ते भारत इस स्टैंड ते दृढ़ता नाल खड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बल्कि मोलदोवा उत्तरी मसडो सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 बजे होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से रॉकेट विक्रम 1 ने कामयाबी के साथ उड़ान भरी और इसे पहली बार निजी शोबे ने तैयार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता टीम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि यह भारत के खलाई सफर में एक दूरस और तारीखी तब्दीली लाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी की महज कोई बयान नहीं, बल्कि ये सख्त

0: 2000 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़े मदार में पेलोड्स पहुंचाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक वाज़ह, दो टोक और मजबूत मौक़िफ़ है। आज नई दिल्ली में मुनाकिदा फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत दहशतगर्दों को सिर्फ अपनी सरहदों पर नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी निशाना बनाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका बखूबी मुशाहिदा किया, जो जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी जंग की एक नुमाया मिसाल थी।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा।
0: उन्होंने बताया कि हुकूमत ने न सिर्फ भारत की दिफाई तैयारियों को मजबूत बनाने बल्कि दिफाई ज़रूरियात के लिए दरामदात पर इन्हिसार कम करने का भी अज़्म किया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज की जदीदकारी के लिए मुख्तस बजट का 75% हिस्सा भारतीय सनद से दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए महफूज रखा गया है।
1: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने पार्लियामेंट का मानसून इजलास

0: दरमियान भी राबते की सहूलत फराहम होगी।
1: ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे।
0: अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ से मुतालिक इदारे ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू और कश्मीर में फैली हुई बेचैनी पर तशवीश का इजहार किया है। उसने मुजाहिरीन और हिफाजती दस्तों के अहलकारों के मारे जाने की तफ्तीश का भी मुतालबा किया है। इंसानी हकूक़ से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान के हुक्काम पर ज़ोर दिया है कि वो तहम्मुल से काम लें, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और इलाकाई इंतखाबात से पहले तशद्दुद के वाक़यात की जिम्मेदारी तय करें। वहाँ इस महीने के आखिर में इलाकाई इंतखाबात होने हैं। भारत के मौसमियात के महकमे ने मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी इलाके और सिक्किम में कल तक बहुत तेज़ बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उसने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश और बाद में नहायत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज बिहार, मध्य प्रदेश, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, माहे, उड़ीसा और शिमाल मशरक़ी रियासतों में तेज़ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक में 2 मरतबा तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुँच गई हैं। सेमीफाइनल में चौथे नंबर की चीनी खिलाड़ी चिन युफेई मैच के दूसरे सेट के दौरान जख्मी होने के बाद रिटायर हो गईं, जिसके बाद पीवी सिंधु को फातह करार दे दिया गया। कल फाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान के खिलाड़ी अकाने यामागुची से होगा। फीफा आलमी कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में फ्रांस स्पेन से हार गया था, जबकि दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी थी। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से सतीश धवन खलाई मरकज से रॉकेट विक्रम 1 ने कामयाबी के साथ उड़ान भरी और इसे पहली बार निजी शोबे ने तैयार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता टीम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि यह भारत के खलाई सफर में एक दूर रस और तारीखी तब्दीली लाएगा। वज़ीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी महज कोई बयान नहीं, बल्कि ये सख्त कार्रवाई का अज़्म मुसम्मम है। और पीवी सिंधु जापान के शहर टोक्यो में जारी बैडमिंटन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुँच गई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani, and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 launched successfully from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Prime Minister Narendra Modi congratulates the Skyroot Aerospace team, calls it a defining moment in India's space journey. Defence Minister Raj

0: जी में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh congratulated Team Skyroot on the

0: की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
1: Congratulations in space for facilitating
2: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।

0: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
0: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
0: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2,030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है।

हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दीं। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री

श्रोताओं, प्रियंका चोपड़ा उन गिने चुने भारतीय कलाकारों में हैं जिन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई। अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको में मुख्य भूमिका निभाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। इसके बाद उन्होंने बेवॉच, द वाइट टाइगर, द मैट्रिक्स रिसर्कशंस, लव अगेन, हेड ऑफ स्टेट्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में हमने जाना मिस वर्ल्ड से लेकर ग्लोबल स्टार बनने तक प्रियंका चोपड़ा की इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में, जिन्होंने सिद्ध किया कि यदि प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास साथ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ, यानी मुझे सुनिधि को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी एक ही कलाकार के अगले अंक में किसी और लोकप्रिय कलाकार की जीवन यात्रा और उनके यादगार गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माया गया एक और गीत।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोतान को श्रुति बुरी की
1: और वंदना की
0: राधे राधे। देखो वंदना, यह समय जो गर्मी पड़ रही है ना, ऐसा लगे कि ब्रज में सुबह उठते ही जमुना जी के घाट पे चले जाओ और वहीं पैर लटकाए के बैठे रहो, ठंडी ठंडी हवा का पान करो और देखो कैसे आनंद आवे हैं। जमुना जी में डुबकी लगाओ, घाटन की शोभा अति न्यारी है यह समय।
1: हाँ जी जी, बड़ी सीरी सीरी ब्यार चले और बाको आनंद इतना अच्छा लगे और श्री यमुने महारानी को यशगान करवे में बड़ो ही आनंद आवे जी जी।
0: और सुनो, जब संध्या के समय जो आरती हुयो करे यमुना जी की, वाकू देखवे में तो विश्राम घाट पे बहुत ही आनंद आवे।
1: अरे जी जी, ब्रज के जेई तो आनंद है और का है घर बार में का अच्छा लगे।
0: ऐसी नैसर्गिकता, ऐसी सुंदरता ब्रज में देखवे को मिले है कि का ही कहने। अगर हम ब्रज के घाटन की बात करें तो देखो, विशेषकर मथुरा वृंदावन में जो है ना, जमुना नदी के किनारे किनारे बहुत सारे कई पौराणिक और आध्यात्मिक घाट हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें जहाँ से 84 को उसकी परिक्रमा हु आरंभ करी जाए है, वो कौन सा घाट है?
1: विश्राम घाट जी।
0: हाँ, विश्राम घाट। ये मथुरा को सबसे प्रसिद्ध घाट है और यहाँ पे श्री कृष्ण ने कंस को वध करवे के बाद
1: विश्राम
0: किया हो और संध्या की आरती भी यहीं पे हुयो करे, जो बहुत लोकप्रिय है। और तुम जानो यहीं पे यम और यमुना का वो मंदिर है।
1: हाँ जी जी, और जाके संगे केशी घाट है वृंदावन में, यमुना के तट पर ये स्थित है और ये वृंदावन को सबसे सुंदर और भव्य घाट है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ श्री कृष्ण ने केशी नामक असुर को वध कियो और यहाँ की संध्या की आरती जी जी और संगमरमर की जो मेहराबे आते हैं ना, बहुत ही आकर्षक हैं।
0: देखो वंदना, जो ब्रज में घाट है ना यमुना के कूले कूले, उन घाटन पे कोई ना कोई कृष्ण और राधा की लीला भी भई है, यही लिए वो प्रसिद्ध हैं। अब जैसे चीर घाट की बात करें जो वृंदावन में है, तो ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण ने गोपीन के वस्त्र चुराए के चीरहरण लीला करी ही। और यहीं को प्राचीन कदम्ब को वृक्ष जो है वो आज भी वहाँ पे साक्षी है, इन लीलान को आज भी वहाँ पे मौजूद है और भक्त जन बाकी पूजा करें।
1: और जी जी, लीलान को एक मतलब जरूर है के वो कोई ना कोई संदेश देते।
0: हाँ बिल्कुल। हाँ,
1: चीर घाट पे चौबिन ने लीला करी, जाको कुछ पता है आपको?
0: ना तुम बताओ।
1: अरे जी जी देखो, गोपी स्नान करती ना तो वो वस्त्र नाए पहनती तो ना कृष्ण भगवान ने बिनते कही कि आप स्नान तो करो
0: लेकिन मर्यादा में
1: रह के करो, तो वो संदेश देवे के काज करते जी लीला।
0: और एक और घाट है जहाँ पे कालिया दे लीला भई है।
1: हाँ जी जी जी, वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण यमुना नदी में कालिया नाग को मर्दन कियो और बिनके फन पे नृत्य करो।
0: तो जाको नाम का है घाट को?
1: कालिया देह घाट है जी जी।
0: अच्छा, और ऐसो एक घाट ना मथुरा में हुए जाकू गौ घाट के में, और कहमे हैं कि जैसे भगवान कृष्ण को तो सब जाने ही है कि गैया ते और ग्वालेन ते बहुत प्रेम है, तो क्योंकि वहाँ पे सभी गैया और ग्वाला मिलो करते, तो या घाट को नाम या लिए गौ घाट पड़ो। यहाँ पे कहमे हैं कि गाय को दान करवे को और स्नान करवे को बहुत ही विशेष महत्व है।
1: हाँ जी जी, देखो एक इमली तला घाट है वृंदावन में, जे स्थान महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी और अन्य संतन की साधना स्थली रही है। और जो मानो जाए कि या इमली के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण राधा रानी की बाट देखते हैं।
0: और देखो ऐसे तो कई घाट हैं, अब जैसे अस्कुंड घाट है, कुंडा जाए बोले हैं, तो जाए धीर समीर घाट बोले हैं। और ब्रज के इतिहास में ये घाट

0: अपनी शांत और दिव्य ऊर्जा ताई जानो जाए है, जहाँ बैठ के भक्त श्री कृष्ण की लीलान को ध्यान कियो करते। और यहाँ के अतिरिक्त कई घाटन के मुंह नाम याद आए रहे, जैसे स्वामी घाट है, जैसे अस्कुंडा बताई तुम्हें मैंने, और ऐसे कई घाट हैं जो जमुना के किनारे किनारे बसे भए हैं, और बिनकी बसावट जो है ना वो जमुना के एक छोर से दूसरे छोर तक ब्रज क्षेत्र को जोड़े है।
1: हाँ जी जी सांची कह रही हो जी बात तो आप। बहुत ही लंबो चौड़ो बखान कर डारो आपने घाटन को, कहती जा रही हो कहती जा रही हो। अरे तो तुम बोलो ना छोड़ो, अपने श्रोताओं को तो नहीं ध्यान रखे करो।
0: हाँ तो हम लोग ही सुनवाई में जा रहे हैं, तुम काहे को नाराज रह रही हो। पर जे है कि श्रोताओं को कुछ जानकारी दे में तो पूरी दे में ना,
1: हाँ
0: तो ना देनी चाहिए ना। तो अब चलो श्रोता ने सुनवा में है जी प्यारो सो लोकगीत।

0: श्रोताओ अभी आपने यह प्यारे से लोकगीत को आनंद लियो।
1: देखो वंदना, अब चौमासा आरंभ है गयो है, तो यह समय में हमें थोड़ा सा खान पान को ध्यान रखना चाहिए।
0: हाँ जी जी हरी सब्जी में कीड़ा मकोड़ा है जाए
1: और वैसे तो हरी
0: इस
1: सब्जी
0: तरह को।
1: खानी ना चाहिए यह समय
0: हाँ
1: में। मौसमी सब्जी खाओ ना, जो
0: हाँ
1: मौसमी सब्जी है
0: पत्तेदार
1: हाँ
0: सब्जी कम खाओ।
1: कम खाओ। और वैसे वो संध्या के समय ना बहुत उजीते में ब्यारू बना लेनी चाहिए, ताकि मच्छर पच्छर आए जावे ना, तो बिन
0: हाँ
1: को
0: जी
1: डर
0: जी
1: रहे।
0: मच्छरों का बड़ा हो
1: और
0: रहा है।
1: खाने पीने की हर चीज को ढक के रखना चाहिए, जाते कि काऊ मक्खी मच्छर को डर ना
0: हाँ
1: रहे और कीटाणु ना फैले हैं। पर देखो हास्य ये एक ऐसा कीटाणु है जो हम चाहें कि सब में फैले।
0: हाँ जी जी आपके भीतर तो मुझे दिख रहा है
1: हाँ,
0: कहा है
1: और मोते तुम में रोपित है गयो है, और
0: अब
1: तुम ते सभी श्रोता में रोपित है जाएगा, तो
0: हाँ
1: हम तो यही छावे हैं। तो चो ना अपने श्रोता में वो हास्य को कीटाणु प्रवेश करावे और
0: करवा
1: बिनकु सुनवावे हैं एक झलकी लगन।

0: कहाँ मेरी मंजिल कोई तो बताओ।
1: आ गई मेरी मंजिल, आ गई। अरे अरे रुक जा रुक जा रुक जा, मेरी साइकिल अब तो रुक जा।
2: अबे ओए मीनू, अरे गा तो भयो कितकु जा रहो है।
1: अरे बस यार टीनू तेरे जोरी आ रहा हूँ जी, समझ ले तेरी याद आ गई मेरे शेर।
2: मेरी याद आ गई? अबे रोज तो मिल लो मुते।
1: हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, पर तू एक बात बता यार, तू रोजीना जो दुकान खोल है कछु बिकते बिकते हुए है या वैसे टाइम पास कर रो है?
2: अरे यार मनु कछु भी समझ ले, अब पिताजी मूली बिकवा में। एक बात बताए, जब मौसम में भला कोई मूली खावे, अब मेरा मन करे मैं ऊंचा दुकान छोड़ के चलो जाऊं। हाँ यार कोई ग्राहक तो आवे ना है। खैर छोड़, तू अपनी बताए।
1: आज तो मैं स्पेशल तेरे जोर ही आया हूँ।
2: मेरे जोर है?
1: हाँ।
2: अच्छा अच्छा बता कौन सी स्पेशल बात है।
1: देख यार
3: अपे गांव में 4 दिन बाद एक बहुत जोर को मेला लगवे वारो है।
2: मेला लगवे वारो है? अरे तो मैं क्या करूं यार।
3: अरे यार वह मेला में बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य की पार्टी आ रही है।
2: अच्छा
3: हाँ, पर जी अच्छो बच्चो ना चलेगो, जावार तो हमें उनको नाच देखना है बस।
2: अबे कछु महीनन के बाद परीक्षा आ रही है और तू नाच देखने की बात कर रहा है? कम से कम जा साल तो हम दोनों पास है जामे यार।
1: यार टीनू मेरी बात समझने की कोशिश कर, परीक्षा तो हर साल आंगी।
3: पर ऐसी लोक नृत्य पार्टी हर साल ना आवेगी।
1: पूरे 5 साल बाद आ रही है।
3: अब जी समझ ले कि नाच देखवे को सुनहरा मौको है।
2: नाच देखनो है सुनहरा मौको है जी तो ठीक है यार, पर जाकर आज दाम पानी कहाँ थे आंगे।
1: यार टीनू तेरो कहना है तो एकदम सही, पर मेरे दिमाग में एक फर्स्ट क्लास आइडियो आयो है।
2: फर्स्ट क्लास आइडियो? अरे तो उगल फटाफट।
1: देख टीनू अपने जो टनाटन गुरु है ना।
2: हाँ।
1: अरे वो एक बिलायती कुत्ता लाए।
2: अच्छा
1: यार कैसे करके अगर हम वह कुत्ता पकड़ लें और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर नत्थो पहलवान है बेच आए तो मैं अच्छा पैसा मिल जाए। वो
2: नत्थो पहलवान क्या? अबे मरवाया को कहा मैं ना जाऊंगा।
1: अबे नत्थो पहलवान है कुत्ता पालवे को बड़ा शौक है।
2: तो फिर?
1: अरे वो जब बुलायती कुत्ता के फटाफट अच्छे से दाम दे देगा। और टीनू
2: हाँ
1: हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।
2: अबे काय में?
1: अरे लोक नृत्य देखवे में।
2: अबे बात तो तेरे 100% सही कही है। वाह भाई भोरे मान गयो तू, का दिमाग दौड़ाया हुआ।
1: अच्छा अब सुन, कल सांझ को ठीक 4 बजे आ जाइयो अमरूद के बाग में।
2: हाँ।
1: और मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा क्योंकि वो कुत्ता भी वही टाइम पे बाग में आवे। और हाँ सुन सुन सुन सुन सुन।
2: हाँ बता।
1: कान खोलकर सुनियो।
2: अब बता तो।
1: एक फर्स्ट क्लास की साइकिल और एक मजबूत सा थैला ले आइयो, ठीक है?
2: ठीक है ठीक है, चलो राम राम।
1: अच्छा राम राम राम राम
2: राम राम।
4: भाई साहब आप यहीं रहवे का?
5: हम्बे बोलो कह बात है।
4: ये दुकानदार कितकु चलो गयो?
5: ये सब आप मोते क्यों पूछ रहे हो?
4: मैं जई मारे पूछ रहा हूँ कि ये मेरी दुकान और दुकानदार मेरो छोरा।
5: देखो साहब ये दुकान सवेरे 8 बजे खुल जावे और रात को 8 बजे बंद है जावे, जामे सिर्फ मूली बिके।
4: पर मेरो छोरा तो कहवे की मूली बिके ही ना है, ऊपर ते मूली बंदर ले जावे, बड़ो नुकसान है रोए भैया।
5: देखो साहब पहली बात तो जी है कि यहाँ बंदर हते ही ना है, और दूसरी बात जी है कि बंदर मूली ना खावे, मूली तो सबे गई पिक्चर में, बाकी जो भी हते वो आपके सामने।
4: आपने सांची कही, मैं सब समझ गयो, अब तो बाकी अच्छी खबर लूंगो घर जाए के।
1: अरे यार जो टीनू कहाँ रहेगा यार, जाना है बड़ी देर कर दी यार, अभी तक ना आयो।
0: अरे वो आगो आगो मेरो शेर, आजा आजा आजा टीनू जल्दी आ, अब ऐसी बुलाई दे रह गई है।
2: अरे यार कहा करूं, साइकिल ही पंचर रह गई।
1: हाँ बस कर जे, बार बार एक ही बानो सुन सुन के पक गऊ मैं।
0: देख देख देख देख देख देख बोरो बोरो अपना शिकार देख
2: कहाँ है कहाँ।
0: देख देख देख
2: अबे अबे अबे बोरो बनू कैसे तो।
1: अरे जब बुलाऊं जा आ आ आजा आजा ले ले ले ले
2: आजा आजा आजा। अरे आजा मेरे राजा, बिस्कुट खा ले बेटा, आजा आजा।
0: डाल डाल डाल जल्दी तो बोरी में डाल डाल बोरी में डाल डाल
2: डाल। पंजा मार दियो पंजा मार दियो।
0: अरे पंजा छोड़ पहले डाल बोरी में।

0: अपन पीछे मोमन कर पूरी को मोमन कर
1: पगले पगले पगले
0: डाल पगले
2: सुन जल्दी तो
0: जल्दी तो जल्दी तो यहां पे 9:11 है अरे अपन में अंदर का दरदारी है भाई
2: छोड़ो वो
0: चल चल जल्दी सिविल चला और सीधा नक तो पहलवान की झोरे रुकियो मत रुकियो पहले ही
1: भाग ले
3: पहलवान जी दरबज्जो खोलो
1: हमें हम मीनू और टीनू
4: अरे हमारा आ रहे हाँ बोलो
3: राम राम पहलवान जी
4: राम राम राम राम, राम।
1: पहचाने कि ना हमको
4: अबे पहचान लियो फटाफट बोलो चो आए रे जे टाइम कसस कर रहा हूँ बोलो
3: पहलवान जी हम तुम्हारे काज एक विदेशी नगीनो लाए
4: विदेशी नगीनो
3: हाँ
4: दिखाओ कौन सा नगीनो है
3: ये देखो
4: ये तुम ये जानवर कहाँ से मार रहा है
3: पहलवान जी तुम्हें आम खा बेते मतलब है या गुटली गिन बेते
4: मुकदर घुमाऊं अच्छा बताओ कहाँ करने जा नगीनो को
1: अब पहलवान जी बस तुम्हारे काज है 4 किलोमीटर दूर ते लाए हैं ऐसा नग तो मैं जब पूरे एरिया मनाए में लगो आप जब पकड़ो तो सही देखो,
4: ला, ला,
1: देखो देखो देखो कैसा मलमल जैसा है रे वो तबीयत खुश है जाएगी अरे अरे तुमने छोड़ चो दियो
3: अरे अरे अरे अरे
4: ये छोड़ो ना फिसल गया जे
1: अरे आ मेलू आ जा बेटा आ जा
3: अरे अरे कसके पकड़ कसके छोड़ियो मत
1: छोड़ियो अरे पहलवान जी तुम उन्हें कसके पकड़ लो
4: ये
1: पकड़ लो ना
4: हां पकड़ लो
3: पकड़ो
4: जान नगीनो का नाम टेडू है
3: हां पहलवान जी जाको नाम टेडू ही है
4: टेडू बड़ा विचित्र सो नाम है टेडू
1: अरे तो पहलवान जी तुम्हें जी नाम अच्छा ना लगे तो कोई दूसरा रख लीजो
3: मैं तो
4: रे पर जाको करनो कहा है जी बताओ
1: कछु ना करनो बस तुमको तो जाए खरीद लो बस
4: अच्छा अच्छा बताओ कहा दे जाको
3: पता पहलवान जी अब देखो तुम अपने आदमी तुम ते कहा ज्यादा मांगे
4: बोल
3: तुम बस 2000 दे दियो बस 2000
1: हाँ। वो भी बस तुम्हारे काज है
4: मुकदर घुमाऊं क्या
1: ना, ना, ना, ना, ना, ना। तो एक काम करो तुम 1500 रुपया दे दो
3: 1500
1: हाँ जी ठीक है
4: तेरे लिए भी मुकदर घुमाऊं क्या
3: फिर का दोगे
4: 1000 रुपया समझे जी पकड़ो और निकल लो
3: 1000
1: अब कोई बात ना ले ले ठीक है लाओ लाओ दे दो पहलवान जी
3: चलो भाई पहलवान जी तुम अपने आदमी हो तो 1000 ले ले रहे अब इजाजत दियो चल रहे हमें ना
4: दरवाजा सामने
3: हाँ दिख रहा है पहलवान जी
1: अच्छा जी राम राम राम
4: राम राम
1: राम राम
4: राम राम
1: बाद में चल चल चल
4: चल निकल ले
1: आजा भैया आजा निकल
3: हाँ भाई टीनू
1: अरे मजा आएगा आज तो भैया
3: देखेंगे डांस पार्टी डिंग
1: डंग अरे वारे भगवान तेने हमारी खूब सुनी
3: क्या हो
1: फटाफट 1000 रुपया दबाए दे कि जाओ आनंद लो
3: अब तो बस कल चल के नाच गाने को मजा लेनो है और सुन
1: हाँ बता
3: सही टाइम पे आ जाइयो साइकिल पंचर को बहाना मत लगाइयो
1: एकदम सही टाइम पे आ जाऊंगा कल मैं देखियो तू हाँ
3: हाँ चल ठीक है कल मिलते हैं
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं तैयारी कर रहा हूँ
3: राम राम राम राम
1: राम राम गाने देख के तो मजा ही आएगो का गाने गाए हैं जुग जुग जियो मेरी नाचन हारी जुग जुग जियो गोरी नाचन हारी मगर यार वो नाच के बाद जो नाटक भयो का हो लगन भाई देख के तो सारो मजो पतो ना कित कु चलोगो
3: हाँ यार टीनू यार बामे जब दिव्यांग छोरा ने एक अभिनय करो का हो यार भाई देख के तो मेरी आंखें नम है गई
1: हम बे यार बने दिव्यांग है बे के बावजूद भी बस एक ही लगन लगाए रखी मैं कछु बनू मगर बेचारे के घर के हालात इतने खराब होते कि बाप रिक्शा चलाए चलाए के घर के 4 लोगन को पालन पोषण करते रहो पर यार वह छोरा ने भी जैसे कसम खाई ली होती कि मैं कछु बन के दिखाऊंगो, अपने देश की सेवा करूंगो। जाके गाजियाबाद छोरा ने कितने संघर्ष किए, बाने मजदूरी तक करी। अब बताओ भाई, देख के भलो कौन ना रोवेगो। अंत में वो छोरा इतना बड़ो अधिकारी बनो कि पूरा देश भाई गर्व से याद करे। भाई ना जाने कितने नाम दिए जामे, सारो हॉल तारी अंत गूंजतो रहे।
3: हाँ यार, ये बात तो तू एकदम सही कह रहा है टीनू। अब मैंने कसम खा ली है कि मैं हूं अब मन लगा के पढ़ूंगो, पढ़ लिख के कछु बन के दिखाऊंगो।
1: हम बे यार सही कह रहा हो तू, अब मैंने कसम खा ली है कि मैं हूं अब सारी गंदगी छोड़ के देखी के रास्ता पे चलूंगो, पढ़ लिख के अपने देश की सेवा करूंगो।
3: कछु भी हो यार टीनू, भगवान ने नाटक दिखा के हम दोनों की आंखें खोल दी यार।
2: चोरे, मैं दुकान पे गयो पर तू वहां हतो ही ना है। पतो चलो कि तू सवेरे दुकान खोल के कछु मूली बेच के वहां ते 9-2-11 है जावे, तो शर्म ना आवे ना रे ऐसी हरकत करते हुए।
1: अब पिताजी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर आज मोए ऐसी हरकत करते भाई अपने आप पे बहुत शर्म आ रही है।
2: अरे बेशरम, तो ये शर्म आती तो तू मोहल्ले वालन के लड़ाई झगड़ो ना ही करतो। रोज रोज की तेरी शिकायत सुनते सुनते मैं दुखी है गयो। मैंने दुकान यही मारी खुलवाई कि तू दुकान पर रहेगो तो मोहल्ले वालन से लड़ाई झगड़े से बचेगो और दुकान पर बैठकर कछु पढ़ाई भी करेगो। मगर बेटा, तेरो पहले जैसा ही रवैया है, दुनिया बदल जाएगी पर तू ना बदलेगो। हे भगवान।
1: पिताजी पिताजी तुम तो बहुत ही दुखी है रहे हो, पर पिताजी आज के बाद तुम्हें मेरी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी।
2: शिकायत नहीं मिलेगी, जाकी का गारंटी?
1: पिताजी गारंटी हता है, अब आपको बेटा वो नहीं रहे हो जो 3 दिन पहले हतकाओ।
2: बेटा, मैं तेरो जे नाटक समझो ना है कि तू 3 दिन में ही बदल गयो।
1: हाँ पिताजी, एक नाटक ने मेरे और मेरे दोस्त की जिंदगी बदल दी। अब मैं कसम खाऊं कि अब तुम कबू मोए लेके दुखी ना होगे। बस तुम आशीर्वाद दे दो मोए।

0: आज अपन शेर हुए घर ते गए 4 दिना है गए। भगवान जाने वो कैसा होएगा, कहाँ को होएगा मेरा
1: अरे गायत्री
0: शेरू।
1: चुप है जा,
0: कोई
1: भगवान
0: बात
1: जाने
0: नहीं लाए
1: कहाँ चलो गए हो।
0: तो।
1: मुझे तो लगे भाई कोई नालायक चुरा के ले गए हो, मगर मेरो मन कह रहो है कि वो जरूर लौट के आवेगो।
0: जरूर आवेगो, भगवान भाई जरूर भेजेगो मेरे पास मेरे शेरू है।
1: अरे गायत्री तू इतनी चों दुखी है रही है, देख तेने 3 दिनंते खानो तक ना खायो, कम से कम खानो तो खा ले।
0: खानो पीनो तो मेरे गले के नीचे ही नाए उतर रहे हो, हर टाइम बाकी याद आवे, बाकी उधमबाजी याद आवे। हे भगवान भाई जल्दी ते भेज दियो मेरे पास शेरू, मेरा शेरू कहाँ चलो गए हो।
1: अरे अरे गायत्री, अरे का है गो तुए, भगवान पे भरोसा रख सब ठीक होगो। अरे गायत्री देख देख अपनो शेरू आएगा, है गो अपनो शेरू। हाँ देख देख मेरा प्यारा शेरू, शेरू आएगा देख, मेरा बेटा आएगा।
0: राज दुलारो, अरे तुम खड़े जाओ जल्दी जाओ दूध रोटी
1: हाँ,
0: लेके आओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पता
1: अगर
0: ना
1: नहीं
0: कितने दिन इनको भूखो प्यासा होएगा मेरा लाल।
1: बिल्कुल बिल्कुल अब ही लाऊंगा।
0: भगवान हे भगवान।

0: हाँ
1: अबे सुन सुन, अबे अपने टनाटन गुरु के पास वो कुत्ता वापस आ गया।
0: अबे अबे सही बता, क्या बात कर रहा है?
1: हाँ।
0: अरे पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये भाई कुत्ता है?
1: अरे यार मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो भी पास जाके।

0: बाबा कुत्ते प्यार दुलार कर रहे। और सुन पता बाबा असली नाम का है?
1: का है?
0: शेरू। अबे अगर टनाटन गुरुआ ये पता चल गो कि जे शरारत हम दोनों की हती तो हमारा तो जा इलाके में रह वो मुश्किल है जाएगो।
1: अरे यार तू फिर का करे, अपना माइंड घुमा यार, कछु सोच फटाफट।
2: सोचूं यार पर कहा सोचूं, कहा सोचूं? अब सोच लियो
0: का,
2: अब जल्दी से चल न तो पहलवान के घर।
1: नत्थो पहलवान के घर?
2: हम
1: ना यार बहुत मार है वो।
2: अरे तू चलता सही यार, जल्दी यार।
1: चल चल, चल, चल।

0: पहलवान जी हम है टीनू मीनू, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो।
1: हाल खोल रहा हूँ।
2: मारेगा तो ना,
0: ना।
1: कहो कैसे आना हो?
0: वो पहलवान जी हम ते बहुत बड़ी गलती है गई। जो कुत्ता हम तुम्हें देखे खाए वो टनाटन गुरु नाम के एक आदमी को आतो। हमने मेला में लोक नृत्य देखने के काजे तुम्हें बेच दियो। जब हमने अपनी आंखें ते देखो है कि वो कुत्ता उनके झोरे वापस आएगा है, तब बड़ी खुशी भाई हमें। पहलवान जी हमने 1,000 रुपया में तुम्हें कुत्ता बेचो हो तो वो रुपया हम तुम्हें वापस करवे आए हैं। जेलो अपने 1,000 रुपया।
1: तुम लोग सही टाइम पे आयो, मैं वही टनाटन गुरु के झोरे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पता चलो कि कुत्ता उनके झोरे है। ठीक है तुम लोग जाओ वरना मुगदल घुमाओ हमारा भी।
3: टीनू टीनू तू इतना हुआ इतना हुआ
0: हाँ काय कह रहे हो जल्दी बता।
3: देख वो देख टनाटन गुरु चार पाई पे बैठे हैं।
0: हम बे
3: चल यार उनके पैर चूके उन्हें सब कुछ बता दें यार।
0: चल आ जा चल चल।
3: टनाटन गुरु माफ कर दो टनाटन गुरु।
4: अरे भैया पैर छोड़ो, गिर जाऊंगा भैया पैर छोड़ो।
3: नहीं छोड़ेंगे हम नहीं छोड़ेंगे।
4: अरे हाँ ठीक है बात का है कहाँ भयो।
0: हम है टीनू मीनू। अरे हम जय मोहल्ला में रहे
3: माफ कर दो।
0: अरे हमें माफ कर दो।
4: अरे ठीक है माफ किया पर बात का है कहाँ भयो।
3: टनाटन गुरु हम बहुत शर्मिंदा है, हमने तुम्हारे कुत्ता चुरायो और नथो पहलवान नाम के आदमी है बेचो तो
0: छा?
3: और आज हम तुम्हें सब कछु सच बतावे आए हैं।
4: कहाँ?
3: हमें मेला में लोग नृत्य देखनो तो और पैसा हमारे पास अतना है, जई मारे हमने जी गलत कदम उठायो। पर सच तो जी है टनाटन गुरु, ये गलत कदम हमारे काजे नसीहत बन गयो। तुम्हारे कुत्ता ने हम दोनों की जिंदगी बदल दई।
4: जिंदगी बदल दई मैं कछु समझो ना हूं।
0: अरे हमने नाच गाने के संग एक नाटक भी देखो हतो। नाटक को नाम हतो लगन। अरे भाई नाटक ने हम दोनों की जिंदगी बदल दई। हम कसम खाए के कहमे कि जो हम 3 दिना पहले हतकाए वैसे अब ना है। और ये सब तुम्हारे कुत्ता की वजह से संभव भयो।
3: हाँ
4: चलो भैया अब जब तुम दोनों सब बालक बन गए हो वो भी मेरी कुत्ता की वजह से, तो भैया मेरे पैर तो छोड़ दो मुझे रोगे का।
0: छोड़ दे।
4: चलो भैया ये तो अच्छी बात है, अब बेटा आगे बढ़ो। हाँ। अपने माता पिता को नाम रोशन करो
0: जरूर,
4: जब देश को नाम रोशन करो
0: जरूर,
4: और मेरी शुभकामना हमेशा तुम्हारे संग है।
3: जय हो।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गोपाल प्रसाद मुद्गल की लिखी हुई जिझल की लगन। और अभी आई के संग ही हमारा आज का ब्रजमादरी कार्यक्रम यहीं संपन्न हो गए है। मोकू यानी के वंदना को
1: और मोई यानी श्रुति बुरी को देव अनुमति।
0: राधे
1: राधे
0: राधे।
1: राधे। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
0: विवेक कुमार तोमर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: आइए सुनते हैं नाटक ऐसा नहीं था, लेखिका मधु, निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी।
2: क्यों, आखिर क्यों, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी रह गई थी? मुझसे एक बार कहा तो होता, मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए। खैर, अब कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो गई। भूलने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें ऋतु, लेकिन भुला नहीं पा रहा हूं। आज भी मुझे याद है वो सर्द रात, 30 दिसंबर, शिमला का वो माल रोड, पूरी तरह सफेद चादर से ढका हुआ था। क्या चर्च, क्या छोटी बड़ी दुकानें, सब बर्फ से सराबोर थी। आने वाले साल की वजह से माल रोड का कोना कोना जगमगा रहा था। धीरे धीरे गिरती बर्फ उन रोशनियों को अपने अंदर समा लेने की कोशिश करती हुई, चारों तरफ सन्नाटा, कहीं कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हवाओं का शोर। और उसी शोर में तुम्हारी आवाज, जब तुम चीखती हुई उस बर्फ से फिसलती हुई आ रही थी, और मैंने तुमको बचाने के लिए अपनी बाहों में भर लिया था। शायद हम दोनों ही अपने अपने होश खो बैठे थे, और ज्यों ही पास वाले गिरजाघर के घंटे की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई हमारे कानों में पड़ी, तब हमें होश आया, और वो हमारी पहली मुलाकात एक यादगार मुलाकात बन गई। वो मासूम चेहरा, वो झील सी गहरी आंखें, और वो तुम्हारे सुनहरे बाल, आज भी भुला नहीं पा रहा हूं मैं। कहां खो गई तुम, तुम्हें कहां ढूंढूं ऋतु, मैं तुम्हें कहां ढूंढूं? कई बार लगता है कि तुम मेरे आसपास हो, लेकिन फिर भी इतनी दूर, इतनी दूर। ऋतु, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? तुम्हें लेकर मैंने न जाने कितने ख्वाब देखे थे, कितने ख्वाब, लेकिन वो सारे ख्वाब एक ही झटके में टूट गए, चूर चूर हो गए।
3: भाई
2: ऋतु, मैं
3: भाई।
2: हाँ,
3: सब ठीक है ना?
2: हाँ हाँ, सब ठीक है।
3: भाभी की याद आ रही है ना?
2: हाँ, वो आज,
3: जानता हूँ, आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है ना, इसलिए।
2: क्या करूं यश, बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भूल नहीं पा रहा हूं।
3: भाई, वाइफ थी वो आपकी, इतना आसान नहीं है।
2: इसी बात का तो अफसोस है कि वो मेरी वाइफ थी, लेकिन सिर्फ कहने भर के लिए।
3: खैर छोड़ो, आओ ना, कुछ पार्टी वार्टी की जाए।
2: नहीं यश, मन नहीं है, कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा हूं मैं।
3: आपकी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर को फोन करूं?
2: अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, तू एक काम करना, प्रीत को कॉल कर ले, जाओ तुम दोनों, जाओ एंजॉय करो, मैं यहीं ठीक।
3: नहीं, अगर आप साथ नहीं चलोगे तो फिर जाकर क्या करना है?
2: अच्छा बैठ थोड़ी देर मेरे पास, फिर चलते हैं। अच्छा एक बात बता यश, क्या इंसान कभी दो नाव में सवार होकर नदी पार कर सकता है? तुझे नहीं लगता कि इंसान को एक ही रास्ते पर चलकर उसकी मंजिल मिल सकती है? क्या भटकते रहने से कभी सुकून, मन की शांति मिल सकती है? अच्छा छोड़ इन बातों को, एक बात पूछूं?
3: हाँ पूछो।
2: क्या मैं बहुत ही मतलबी किस्म का इंसान हूं?
3: आप,
2: क्या मैंने कभी तुझे या ऋतु को कोई तकलीफ दी?
3: अरे नहीं भाई।
2: कभी परेशान किया?
3: कभी नहीं।
2: कभी पॉकेट मनी पर सवाल उठाया?
3: अरे नहीं।
2: तुम दोनों ने जब भी जितना भी पैसा खर्च किया, कभी उसका जवाब मांगा, हिसाब मांगा?
3: कभी नहीं भाई। आपने मुझे हमेशा अपने भाई की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह प्यार किया। मम्मी डैडी की डेथ के बाद आपने ही तो मुझे संभाला है, आपने ही पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन आज अचानक इस तरह के सवाल पूछना मुझे समझ नहीं आया। क्या मैंने कभी आपका मन दुखाया या जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं यश, ऐसी बात नहीं है यश। लेकिन पता नहीं क्यों आज अपने अतीत में झांकने का मन कर रहा है, अपने अंदर के इंसान को तलाशने का मन कर रहा है। तो मैं अपने अंदर छुपे इंसान और शैतान दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, खासकर शैतान को। क्या मेरे अंदर भी कोई शैतान छुपा है? क्या मैंने कोई हैवानियत या फिर शैतानों जैसा व्यवहार किया? कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया? बस वही तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, क्या तूने कभी मेरे अंदर छुपे शैतान को देखा?
3: भाई बात क्या है, आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। आज ऐसा क्या हो गया जो आप इतने अजीब अजीब सवाल कर रहे हैं?
2: होता है यश, कभी कभी होता है। आज बहुत ही अकेला महसूस कर रहा हूँ।
3: अकेला क्यों भाई, मुझे आप अपना नहीं समझते हो क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यश। सब कुछ है पर भी खाली हाथ, खाली मन, अजीब सी वीरानी है। जैसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत ऊंचाई पर ले जाकर अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया, और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मदद मांग रहा हूँ, लेकिन आसपास के लोग मेरी मदद करने की जगह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं मुझ पर। और उस भीड़ में एक चेहरा जो बहुत ही खुश है, खिलखिला रहा है। गौर से देखा तो वो कोई और नहीं है, रितु थी, मेरी अपनी रितु, मेरी जिंदगी रितु। लेकिन उसका मुझ पर हंसना, मेरा मजाक उड़ाना मुझे परेशान करने लगा।
3: देखिए, मुझे लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा होगा।
2: हाँ, ये अच्छा है दिल बहलाने के लिए। सपना होगा, ख्वाब होगा, भूल जाओ। यश, ऋतु ने जो मेरे साथ किया है ना, वो भूल जाना इतना आसान नहीं है।
3: भाई सॉरी, मैं आपका छोटा भाई हूँ, लेकिन इतनी समझ मैं भी रखता हूँ कि ये जो शक का जहर होता है ना, ये अंदर ही अंदर इंसान को इतना कमजोर, इतना खोखला कर देता है कि फिर उसको चाहे लाख समझा लो, नहीं समझ में आता उसको। आप हर साल आज ही के दिन भाभी को याद करते हैं और अपना दिल दुखाते हैं।
2: ऐसा नहीं है यश, ऐसा नहीं है यश कि मैं ऋतु को केवल आज ही के दिन याद करता हूँ। सच तो यह है कि मैं उसको और उसकी बेवफाई को कभी भूल ही नहीं पाया।
3: क्या किया भाभी ने और कब? भाई शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है। लोगों का तो काम ही कहना है दूसरों के घरों में आग लगाने का। भाभी के बारे में किसी ने कुछ कहा क्या?
2: चल ठीक है, मैं लोगों की बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। तू बता, ऋतु कैसी औरत थी?
3: क्या कैसी मतलब?
2: उसका कैरेक्टर।
3: क्या बात कर रहे हैं भाई। भाभी
2: देख यश, हर तस्वीर के दो रूप होते हैं और हर इंसान में दो इंसान।
3: ये बात तो हर इंसान पर लागू होती है और आप पर भी।
2: काफी समझदार हो गया तू।
3: भाई मैं आप पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसा अभी आपने कहा कि हर तस्वीर के दो रूप होते हैं और हर इंसान में दो इंसान होते हैं, तो फिर क्यों हम तस्वीर का एक ही रूप देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये तस्वीर अच्छी नहीं है, जबकि तस्वीर का दूसरा रूप तो हमने देखा ही नहीं। बिना सच्चाई जाने हम किसी के बारे में अपनी राय कैसे बना लेते हैं? आपको नहीं लगता ये गलत है? वैसे कभी कभी आपने भाभी का मन टटोलने की कोशिश की, कभी जानने की कोशिश की आपने?
2: इतना वक्त ही कहाँ था मेरे पास कि मैं उसके पास बैठ पाता, और ये सब उसकी खुशी के लिए ही तो मैं सब कुछ कर रहा था। मैं ये जो इतना पैसा कमाना चाहता था उसकी खुशी के लिए।
3: अच्छा एक बात बताओ, क्या भाभी ने कभी आपसे कहा कि मुझे आपका प्यार नहीं ढेर सारी दौलत चाहिए? भाई भाभी ने सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार ही चाहा था, जिसको आपने दौलत के तराजू में तोल दिया। दौलत का पलड़ा भारी हो गया और प्यार का पलड़ा हल्का। मुझे ऐसा लगता है कि भाई कि पहले आपको पैसा कमाना चाहिए था और बाद में शादी कर लेते तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता आपको।
2: हाँ शायद तेरी बात सही है। अच्छा एक बात बता, तू उसके कितने दोस्तों को जानता है? मतलब कौन कौन लोग थे जो यहाँ आते थे?
3: बहुत से दोस्त थे, उनके कॉलेज फ्रेंड, बचपन के दोस्त।
2: कोई खास दोस्त जो अक्सर यहाँ आता जाता रहता हो? शरद, शरद के बारे में तेरा क्या ख्याल है?
3: आता था कभी कभी।
2: कभी कभी या सबसे ज्यादा? कभी नाइस स्टे किया उसने?
3: नहीं, मेरे सामने तो कभी नहीं।
2: या कभी ऋतु या शरद को बेडरूम से निकलते या आते जाते देख

0: या कभी दोनों को ऐसी हालत में देखा हो?
1: भाई भाई भाई, मेरे विचार से रिश्तों में पारदर्शिता इतनी होनी चाहिए कि सच जानने की जरूरत ही ना पड़े, और भरोसा इतना होना चाहिए कि झूठ बोलने की नौबत ना आए। शायद रिश्तों को बनाए रखने के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है, वरना तो
0: मेरी तरह सारी जिंदगी रोना ही पड़ेगा। क्यों?
1: मेरे कहने का मतलब ये नहीं है भाई, मैं बस इतना जानता हूँ कि जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि किताबों से ज्ञान और इंसान से अनुभव मिलता है।
0: और मेरे पास ना ज्ञान है और ना ही अनुभव है, ना
1: भाई? आप मेरी बात को
0: नहीं, तेरे विचार से मैं गलत हूँ। क्या सुख ढूंढना गलत है? यश, आज पैसा ही है जो सुख दे सकता है।
1: लेकिन भाई, क्या आपने पैसा कमाकर सुख पाया? हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सुख को ताला लगाया किसने? भाई, अपना सुख और दुख हम खुद लिखते हैं।
0: यश, मैं भी तो ऋतु को वो सुख, वो हर खुशी देना चाहता था, लेकिन ये सोचकर मन दुखी होता है कि ऋतु ने मुझे समझा ही नहीं, मेरे प्यार को समझा ही नहीं। शर्म आती है मुझे अपने इस रिश्ते पर।
2: शर्म आ रही है जी, शर्म आ रही है आपकी सोच पर मिस्टर विक्रम। शेम ऑन यू।
1: प्रीत, जब तक पूरी बात मालूम ना हो ना, तो किसी की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए।
3: यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट यश। जब तक पूरी बात मालूम ना हो, किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। क्यों मिस्टर विक्रम, एम आई राइट?
0: यानी तुम मुझ पर, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हो?
3: हर्ट हुआ ना? सोचा है कभी आपने?
2: मेरी दीदी पर इतना कीचड़ उछाल रहे हैं आप, तो सोचिए मुझे कितना हर्ट होता होगा मिस्टर विक्रम।
1: ये क्या मिस्टर विक्रम लगा रखा है, सीधे सीधे जीजू भी बोल सकती हो।
3: वो हक इन्होंने खो दिया है।
0: यानी इतनी जल्दी रिश्ता खत्म कर दिया तुमने?
2: इसकी शुरुआत आपने की है। वो यहाँ पर दीदी का फोटो था ना, कहाँ गया यहाँ से? अच्छा, पुराना सामान फेंक कर नई चीजों से घर सजाने की तैयारी।
0: चीज नहीं थी वो मेरे लिए, दिल बहलाने का सामान नहीं थी, वो मेरी पत्नी थी, मेरी वाइफ थी।
2: लेकिन कभी पत्नी का हक दिया दीदी को? सामान नहीं थी, इसीलिए 6-6 महीने घर से बाहर रहकर सिर्फ हफ्ते 10 दिन के लिए घर आना और अपना दिल बहलाना, फिर चले जाना। अपने बिजनेस टूर के चक्कर में आपने कभी दीदी को टाइम दिया? Just use and throw.
1: ये बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो।
0: बोलने दे विक्रम, बोलने दे इसको, बोलने दे, आज इसको भी बोलने दे। आओ बैठकर बात करते हैं। बैठो। अच्छा ये बताओ, शरद को जानती हो?
3: हाँ जानती हूँ।
0: कब से?
3: क्या बचपन से? शरद भैया और दीदी स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ पढ़े हैं। भाई पड़ोसी हैं हमारे।
0: सिर्फ पड़ोसी या?
3: हंसी आ रही है मुझे, घूम फिर कर फिर से वही सवाल। हाँ, आखिर क्यों बेचैन कर रखा है इस रिश्ते ने आपको? क्या कभी कभी मेरी दीदी ने आपसे पूछा कि आपका और मिस चंद्रा का क्या रिश्ता है? क्यों वो हर टूर पर आपके साथ जाती है?
0: ऐसा नहीं है कि वो हर बार मेरे साथ जाती है। वो मेरे पीएस है, सारी मीटिंग सारी अपॉइंटमेंट्स की डिटेल्स उसी के पास होती है।
3: आपका और मिस चंद्रा का पीएस के अलावा?
0: प्रीत,
3: हम कैसे यकीन करें? बताइए, आप कैसे यकीन दिला सकते हैं? इसके लिए कोई पैरामीटर है क्या आपके पास?
1: प्रीत, डोंट क्रॉस योर लिमिट।
3: और इनको हक है, बोलो यश, इनको हक है अपनी पत्नी पर उंगली उठाने का? ये बातें जो मैं आज पूछ रही हूँ ना, वो सब मेरी दीदी को पूछनी चाहिए थी। अगर वो जिंदा होती तब घुट घुट कर मर गई मेरी दीदी, घुट घुट कर।
0: और उसकी मौत का जिम्मेदार तुम मुझे मान रही हो?
3: और कौन हो सकता है? आपके लिए पैसा ही सब कुछ था, और मेरी दीदी के लिए वो तो बस प्यार चाहती थी, पैसा नहीं।
0: लेकिन पैसा भी तो जिंदगी में जरूरी होता है ना?
3: हाँ, पैसे से सामान खरीदा जा सकता है, जिंदगी की खुशियां नहीं। क्या किसी अमीर को मौत नहीं आती? क्या पैसों से वो जिंदगी खरीद सकता है? बताइए। नहीं ना, बस एक बार मेरी दीदी के उस दर्द को समझा होता, उसके मन के अंदर उठते तूफान को देखा होता, उस तूफान को शांत करने की कोशिश की होती,

0: ख्वाब नहीं समझेंगे उनकी छटपटाहट को, उनकी बेचैनी को। अचानक अचानक जैसे हंसते हंसते कहीं खो जाना, कुमसुम सी सोनी आंखों को पढ़ने की कोशिश तो की होती एक बार आपने, एक बार की होती।
1: मैं मानता हूं प्रीत की मैं उसको वक्त नहीं दे पाया, लेकिन उसको भी तो समझना चाहिए था ना कि ये सब ऐशो आराम का सामान मैं उसी के लिए तो जोड़ रहा हूँ, अपने आने वाले कल को सुरक्षित कर रहा हूँ मैं।
2: वैसे बड़े कमाल की बात है ना भाई, इंसान बड़े बड़े ख्वाब देखता है, मंसूबे बनाता है कि मैं बड़ा होकर ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा मेरे घर होगा, गाड़ी होगी, लेकिन अगले ही पल हमारे साथ क्या होने वाला होता है इसका हमको ना तो ज्ञान होता है और ना ही भान। लेकिन बातें बड़ी बड़ी, वादे बड़े बड़े, मेरे ख्याल से हम अपना आज खुशी से बिता दें तो आने वाला कल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा।
1: हाँ मैं मानता हूँ ये कुछ हद तक मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी इंसान ये चाहता है कि उसकी जिंदगी चाहे दो पल की ही क्यों ना हो वो अच्छे से गुजरे, है ना।
0: पता है जीजू, जब आपकी पहली एनिवर्सरी थी ना तो दीदी ने मुझे रात भर सोने ही नहीं दिया।
3: प्रीत, प्रीत, ओ प्रीत, सो रही है तू?
0: नहीं, लंदन की फ्लाइट में बैठी हूँ, हम लंदन जा रहे हैं ना दी।
3: चल जा, मुझे कोई बात नहीं करनी तुझसे।
0: यार दी, रात का 1 बज रहा है दी, अब तो सो जाओ।
3: लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही ना, मैं क्या करूँ?
0: एक काम करते हैं, हाँ एक काम करते हैं दीदी, ऐसा करते हैं आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं।
3: हाँ लेकिन हाँ? कैसे, केक तो है ही नहीं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं है,
0: इन सब की तो कोई जरूरत भी नहीं है दी।
3: तो
0: क्या, हाँ हमारे घर में म्यूजिक सिस्टम है ना, हम उसे फुल वॉल्यूम पे चलाते हैं, राइट दी, हाँ, और फिर हम डांस करेंगे, हाँ मस्ती करेंगे, कॉलोनी में सबको पता चलना चाहिए कि हमारी दीदी की पहली एनिवर्सरी है, है ना, सबकी नींद खराब कर देंगे।
3: उड़ा ले मेरा मजाक, कोई बात नहीं।
0: ओ यार दी, समझा करो ना, टाइम तो देखो, रात कितनी हो गई है।
3: एक रात मेरे लिए परेशान नहीं हो सकती तुम प्रीत।
0: अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा बताओ, हाँ मुझे ठीक से बताओ, क्या बात करनी है आपने?
3: अच्छा ये बता, विक्रम को मैं क्या गिफ्ट दूँ? ऐसा कौन सा गिफ्ट होगा जिसे देखकर वो खुशी से पागल हो जाए?
0: ओ यार दी, अच्छे भले इंसान को ना तुम पागल करना चाहती हो, एक पागल के साथ जिंदगी कैसे बिताओगी, हाँ बोलो।
3: उफ, तेरे से तो बात ही करनी बेकार है।
0: अच्छा एक बार फिर से सॉरी, ओके सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा अब बताओ दी।
3: क्या बताऊं, समझ ही नहीं आ रहा, कोई मोबाइल फोन?
0: मोबाइल फोन ये लो।
3: पागल है क्या तू, ये पुराना फोन दो मैं विक्रम को।
0: फिर से मेरी बात तो सुनो, फोन लो और जीजू को कॉल करके पूछो कि उन्हें क्या चाहिए।
3: तू पागल है क्या प्रीत, गिफ्ट भी कभी किसी से पूछ कर दिया जाता है भला? मैं ना विक्रम को सरप्राइज देना चाहती हूँ।
0: सरप्राइज?
3: हाँ कुछ अलग सा गिफ्ट।
0: ठीक है, एक बात बोलूं?
3: हाँ बोल।
0: देखो आप ना ऐसा करोगी, नेक्स्ट ईयर तक ना एक नन्ना सा प्यारा सा बेबी दे दो उनको।
3: पागल, वो तो तेरे जीजू।
0: अच्छा दीदी अब सो जाते हैं ना, प्लीज ये बेकार की बातें छोड़ो, गुड नाइट।
3: ठीक है, गुड नाइट। प्रीत, प्रीत,
0: दी, हाँ दी, बोलो क्या है अब?
3: चल ना मार्केट चलते हैं।
0: दी, अभी टाइम क्या हुआ है?
3: 5 बजे हैं, 5।
0: 5? सुबह की या शाम की?
3: अरे पागल, सुबह के, सुबह।
0: तो यार दी, सुबह के 5 बजे कौन सी मार्केट खुली होती है मुझे ये बताओ।
3: अच्छा ठीक है ना, सो जा तू तो, सो जा प्रीत।

0: और इसी तरह सारी रात ख्वाब बुनती रही मेरी दीदी।
1: अगर सच में वो मुझे इतना चाहती थी तो शरद की तरफ इतना झुकाव क्यों? बार बार मुझसे सवाल किया जाता है कि मैंने उसकी भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन यही सवाल तो मेरा भी है, उसने मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझा? इतनी बेताबी, इतनी बेचैनी क्यों? क्या ऋतु को यह लगता था कि उसकी उसकी हर एक परेशानी का हल सिर्फ और सिर्फ शरद के पास है? क्यों?
0: विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है जीजू। पता है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक जब भी कोई परेशानी दीदी को होती, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ी हो या लाइफ से, वो हर बात शरद भैया से पूछती थी बस। और भैया हर बार दीदी को परेशानी से निकाल देते थे। जानते हैं, एक सहारा बहुत ही जरूरी होता है जिंदगी में, फिर चाहे वो दोस्त के रूप में हो या भगवान के।
1: और रितु को लगता था कि मैं ना तो अच्छा पति बन पाया ना ही अच्छा दोस्त। काश हमारा एक बच्चा होता तो तुम्हें लगता है कि बात कुछ हद तक समझ जाती? लेकिन जब भी मैंने कहा तो बोली कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो लाइफ एंजॉय करने दो। और तुम कह रही हो कि
2: अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देने से खुद की जिम्मेदारी तो खत्म नहीं होती ना भाई।
1: लेकिन उसकी रजामंदी भी तो जरूरी थी ना। क्या करता मैं, तुम बताओ क्या करता?
0: हेलो, हाँ मम्मी, मैं यहाँ हूँ जीजू के घर। हाँ बोलो। हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ मैं बाहर आके बात करती हूँ। हाँ हाँ हेलो।
1: मेरा यकीन कर यश, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पता नहीं क्यों हमारे रिश्ते में अब वो पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत सर्द पड़ गई है। अच्छा ये बता, जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी, क्या तब भी वो ऐसे ही गुमसुम सी, खामोश सी, खोई खोई सी रहती थी?
2: नहीं भाई, अपने दोस्तों के साथ तो भाभी खूब हंसती मुस्कुराती रहती थी।
1: तो फिर मेरे साथ ही क्यों?
2: भाई ये भी तो हो सकता है कि भाभी उनके सामने अपना दर्द बयां नहीं करना चाहती हो, वो दिखाना चाहती हो कि मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूं। सिर्फ दिखावा दोस्तों के सामने।
1: क्या जिंदगी सच में इतनी उलझनों से भरी होती है? कई बार लगता है जिंदगी बहुत ही आसान है, कई बार लगता है कि जिंदगी टेढ़े मेढ़े रास्तों की तरह है।
2: भाई यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया ही करती है। दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और कभी मुरझा भी गए तो उनका कोई इलाज नहीं है। पहला पौधा है निस्वार्थ प्रेम का, और दूसरा पौधा है अटूट विश्वास का।
1: इतनी छोटी सी उम्र में तूने सब सीख लिया, और मैंने तो
2: आपने सिर्फ पैसा कमाना सीखा, प्यार और रिश्तों को बेचकर।
1: बेचकर या भूलकर? हाँ शायद बेचकर भी कह सकते हो। हर रिश्ते को दौलत के तराजू में तोल रहा हूं मैं, है ना?
2: और भाई जीत तो दौलत की नहीं हुई। हाँ मैं जानता हूं कि आज आपके पास पैसा है, मगर दिल का सुकून नहीं है। आप चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकते हो, मगर इस बात का क्या भरोसा कि वो जो भी होगी आपके पैसों की भूखी नहीं होगी। भाभी ने आपका साथ तब दिया जब आपका बिजनेस मात्र स्टार्ट हुआ था, रात रात भर जागकर आपके बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया।
1: ये क्या आपका बिजनेस क्या ये सब उसका और तुम्हारा नहीं है?
2: है भाई है, सब कुछ तो हमारा ही है, मगर क्या कभी भाभी उस खुशी को एंजॉय कर पाई? कहती थी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। मैं कहता कि भाभी क्यों सोच रही हो आप ऐसा, तो कहते कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां पीछे रह गई शायद।
1: और मैं बड़ा ही बड़ा सोचता रहा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बिजनेस, बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना। हाँ शायद ये सब ना हमारे बीते हुए कल की वजह से है। तूने गरीबी नहीं देखी ना, मैंने देखी है। खैर उन पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा, वो कहते हैं ना, जब तक दिया खुद नहीं जलता वो दूसरों को रोशनी नहीं दे पाता है। भूली तो गई वो मुझे, मेरे प्यार को, मेरे एहसास को, सब कुछ भूल गई वो, सब कुछ।
0: और अब आप भी सब कुछ भूल जाओ जीजू, भूल जाओ।

0: सब कुछ, क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हो? एक बात बोलूं, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते?
1: ये बात अभी मम्मी ने बोली है क्या? क्या मजाक कर रही हो तुम? बस बस अब और सहन नहीं होगा।
0: तो जीजू, फिर ये इतनी दौलत, ये सब किस लिए?
1: तुम दोनों के लिए।
2: हमारे लिए? पर भाई, आपके बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे।
1: अरे पागल, कब तक मेरे साथ कौन था?

0: कुछ ज्यादा हो गया था ना?
1: इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें पहले।
0: क्योंकि जीजू बार बार दीदी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे थे और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ।
1: हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को भाभी पर इतना शक।
0: फायदा क्या हुआ, अपना ही घर बर्बाद किया ना, अपनी और दीदी की खुशियों को एक पल में सुहा कर दिया।
1: लेकिन प्रीत, इस शक के पीछे एक और कारण भी तो हो सकता है ना?
0: एक और कारण क्या?
1: भाई का भाभी के लिए अंधा प्यार, बेइंतहा मोहब्बत, खो जाने का डर।
0: यश प्लीज पहेलियां मत पूछो, साफ साफ समझाओ ना।
1: देखो, अपना बचपन याद करो, बचपन की उन बातों को याद करो।
0: मेरे बचपन से दीदी की मौत और जीजू के शक का क्या रिश्ता?
1: मैं शायद तुमको समझा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, कोई भी ऐसी चीज जो तुमको सबसे ज्यादा प्यारी हो, कोई डॉल, टेडी बियर या कुछ भी ऐसी चीज।
0: हाँ, मेरा टेडी बियर जो आज भी मेरे पास है, यू नो पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था।
1: और वो टेडी बियर तुम्हारी मम्मी या पापा किसी और को दे देते हैं तो सोचो तुमको कैसा लगता।
0: कैसा क्या हुआ था ना, एक बार मेरा कजिन उसको लेना चाहता था, पापा ने भी कहा कि दे दो, मैं तुमको दूसरा ला दूंगा। बट यू नो मैंने ऐसा नहीं किया, और अपने पापा से एक हफ्ते तक मैंने बात भी नहीं की थी। हाँ, और अपने कजन से तो मैंने 5-7 सालों तक बात ही नहीं की बिल्कुल।
1: क्यों, ऐसा क्या था उस टेडी बियर में? अंकल दिलवा तो रहे थे दूसरा।
0: देना तो दूर की बात, अगर कोई उसको छू भी लेता ना मिस्टर, तो मैं पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। हाँ, और भूख हड़ताल अलग से।
1: बुरा लगता था ना?
0: बहुत बुरा।
1: तो अब भी मेरी बात नहीं समझे?
0: अरे नहीं,
1: भाभी भी भाई के लिए उतनी ही प्यारी थी जितना प्यारा तुम्हारे लिए वो टेडी बियर था। कोई भाभी की तरफ देख भी लेता तो भाई उससे झगड़ा करने लगते थे।
0: पर यश, ये कैसा प्यार था जिसको 6-6 महीने के लिए छोड़कर जीजू।
1: अब फिर से वही बात शुरू ना करो।
0: शुरू तो तुमने की थी ना, मैं तो जस्ट जवाब दे रही हूँ।
1: चलो ठीक है, मैं सॉरी तो बोल रहा हूँ ना।
0: कहाँ बोला, दोबारा बोलो।
1: अरे ठीक है बाबा, सॉरी। अब ये बताओ कि आगे क्या करना है।
0: एक बात है, जीजू की जिंदगी का फैसला हम कैसे कर सकते हैं?
1: लेकिन कोई सलाह मशवरा तो दे ही सकते हैं ना?
0: हमारी बात मानेंगे वो?
1: भाई जीजू, ये अचानक कहीं जा रहे हो क्या?
2: हाँ, शायद आज तुम दोनों की बातें सुनकर ना मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ।
1: भाई सॉरी, अगर जाने अनजाने में हमने आपका दिल दिखाया हो तो।
0: हाँ जीजू, प्लीज सॉरी। हाँ सॉरी।
2: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूँ भाई, बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम दोनों ने मुझे सच्चाई से रूबरू कराया।
0: जीजू
2: डरो मत, जिंदगी से भाग नहीं रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ मैं, बस थोड़े दिन के लिए चेंज चाहता हूँ। ऋतु से जुड़ी वो सारी बातें, सारी यादें अपने अंदर समेट लेना चाहता हूँ। एक बार फिर वहीं शिमला की वादियों में आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा, मेरा यकीन करो।
0: ठीक,
2: आऊंगा मैं वापस, जरूर आऊंगा।
3: अभी आप सुन रहे थे नाटक ऐसा नहीं था, लेखिका मधु, निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सागर, सुनीता ठुकराल, निशा भारद्वाज और दक्ष वशिष्ठ।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट को हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने बनाया है। भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बन गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह तथा विदेश मंत्री एस

0: जयशंकर ने इस उपलब्धि के लिए स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को मिलने के लिए भी आमंत्रित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों को हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा। श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच हमले जारी हैं। दोनों देशों ने सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमले किए। हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर संघर्ष तेज होने के बाद दोनों देशों के बीच अंतरिम युद्ध विराम समाप्ति के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार लगातार 7वीं रात किए हमलों में ईरान के निगरानी केंद्रों, सैन्य रसद सुविधाओं, भूमिगत हथियार भंडारों और समुद्री परिसंपत्तियों को निशाना बनाया गया है। उधर ईरान ने कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। कुवैत ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने का दावा किया है। इस बीच वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $86 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि शिकायत निवारण का दायरा शिकायतों के निपटारे तक सीमित नहीं होना चाहिए तथा पेंशन भोगियों की आकांक्षाओं और चिंताओं का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमेबाजी पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये बात कही। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत प्रसारित की जाएगी। श्री आर माधवन को प्रतिष्ठित पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। यह बातचीत आकाशवाणी गोल्ड से आज शाम 5:10 पर प्रसारित की जाएगी। और खेलों में फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मैच भारतीय समयानुसार 2:30 शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। India's first privately developed orbital rocket, Vikram 1, under Mission Agaman, has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. Our correspondent reports that the milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agaman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Named after Dr. Vikram Sarabhai, the father of the Indian space program, Vikram

किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो या इन्हें कहीं देखा गया हो तो वे थाना एएसटी कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करें। इस कार्य के लिए उचित पुरस्कार जो कि 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अगली जानकारी थाना एएसटी कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है विपिन कुमार, जो कि मनोज कुमार जी के पुत्र हैं। अंतिम बार इन्हें घर पर ही देखा गया। इनकी आयु 15 वर्ष है, कद 5 फुट है। किसी को इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वे कमिश्नरेट गाजियाबाद थाना एएसटी में संपर्क करें। थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है आयुष, जो भरत शर्मा के पुत्र है। इनकी आयु 15 वर्ष है, कद 5 फुट 5 इंच है, शरीर की बनावट सामान्य है। अंतिम बार इन्हें बालाजी विहार शनि मंदिर के पास मोहन नगर साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद में देखा गया। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी मिले या इन्हें कहीं देखा जाए तो वह थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है मंतशा। अंतिम बार इन्हें 3 जून 2026 को ग्राम त्योड़ी 13 बिस्वा थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद में देखा गया। इनकी आयु 20 वर्ष है और ये एक स्त्री हैं। शरीर की बनावट मध्यम है, कद 5 फुट के आसपास है। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो या इन्हें कहीं देखा गया हो तो वे थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी प्राप्त है थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है पवन कुमार उर्फ टीटू। अंतिम बार इन्हें लाजपत नगर थाना साहिबाबाद में देखा गया। ये एक पुरुष है और इनकी आयु 29 वर्ष है, कद 5 फिट 5 इंच है। घर से बिना बताए ये कहीं चले गए हैं। किसी को इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो या इन्हें कहीं देखा गया हो तो वे थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करें। अगली जानकारी थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त हुई है। गुमशुदा व्यक्ति का नाम है कंचन। अंतिम बार इन्हें गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में देखा गया। इनकी आयु 25 वर्ष है और शरीर की बनावट सामान्य है, कद 5 फुट 4 इंच है। किसी को इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क कर सकते हैं।

अगली जानकारी प्राप्त है चूंकि गुमशुदा व्यक्ति है इनके बारे में नाम इनके नाम की जानकारी नहीं है। अंतिम बार इन्हें 4 जनवरी 2026 को जिला शामली में देखा गया। इनकी आयु 40 वर्ष है। अंतिम बार इन्हें 2 जनवरी 2026 को देखा गया और इनकी एफआईआर की तिथि 4 जनवरी 2026 की है। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना कानपुर में संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने भूरे रंग की सलवार पहन रखी थी। इनकी कद 5 फुट 6 इंच है। भूरे रंग का सूट पहन रखा था। चेहरा लंबा और रंग गोरा है। बाल काले हैं।

0: अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है आयशा। इनकी जो FIR की तिथि है वो है 10 मई 2026 और अंतिम बार इन्हें 14 अप्रैल 2026 को देखा गया था। इन्होंने सूट सलवार नीले रंग की पहन रखी थी। इनका कद 5 फुट 1 इंच है। रंग गोरा। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वे ग्राम थाना रिवाना शामली में संपर्क कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित जानकारी।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मैं हूँ आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो।
4: वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज, योर अल्टीमेट गेटवे टू करियर सक्सेस। आई एम लूसी गैब्रियल एंड आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू द लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with Engineering Projects India Limited, EPI, a Mini Ratna Central Public Sector Enterprise under the Ministry of Heavy Industries, Government of India, has invited applications from qualified and experienced professionals for various managerial positions on a fixed-term basis. EPI is engaged in executing large-scale turnkey projects in sectors such as power, steel, industrial development, civil construction, and infrastructure across India.

0: company is looking for professionals for the post of manager grade 2 finance at E2 level, manager grade 1 legal at E3 level, and senior manager legal at E4 level. Candidates with relevant qualification and professional experience in finance, legal services, corporate affairs, and project management may apply. The selected candidates will be posted at the Corporate Office of Engineering Projects India Limited, Court 3, Scope Complex, Lodi Road, New Delhi. Interested applicants can obtain detailed information regarding eligibility criteria, experience requirements, remunerations, and application procedure from the official website of EPI. The last date for submission of applications is 20th July 2026. For details, do refer to the website at www.epi.gov.in. I repeat, it is www.epi.gov.in. The Oil Industry Development Board, OIDB, under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, has invited applications from eligible officers of the central government, state governments, public sector undertakings, autonomous body and statutory bodies for recruitment on a deputation basis. The vacancies include the post of a financial advisor and chief accounts officer in pay level 13 and stenographer grade C in pay level 6 as per the 7th CPC. Applications must be forwarded through proper channel and should reach the board within 21 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility conditions, the vacancy circular and application procedures are available on the official OIDB website. Kindly look up www.oidb.gov.in. I repeat, it is www.oidb.gov.in. Hindustan Petroleum Corporation, HPCL, a Maharatna Central Public Sector Enterprise, has invited online applications under advertisement number HPCL/open HR1 2026-27 for recruitment to experienced professionals and fresher positions across various disciplines. Experience vacancies include assistant manager projects, senior officer sales, retails, lubes, direct sales LPG, deputy general manager, general manager and chief general manager sales and marketing. Pay scales range from 60,000, 1,80,000 to 1,20,000 to 2,80,000 depending on the post. HPCL has also announced fresher vacancies for junior executive chemical and junior executive fire and safety in the pay scale of 30,000 to 1,20,000 rupees. Online applications will close on 20th July 2026. Detailed eligibility criteria, vacancy distribution and application instructions are available on the HPCL careers page at www.hindustanpetroleum.com. Rights Limited, a Government of India enterprise, has invited online applications from qualified and experienced professionals for recruitment to the post of Assistant Manager HR, Deputy General Manager Civil, Tunnel Construction Expert, Deputy General Manager Transport Economist, and Deputy General Manager Civil, Marine Structural Expert. Reservations, age relaxations, and other concessions will be provided to eligible EWS, SC, ST, OBC, NCL, PWBD, ex-servicemen, and other eligible categories as per Government of India norms. Online applications will close on 22nd July 2026. The dates for the written exam and interview will be notified later. Candidates are advised to refer to the detailed advertisement for educational qualifications, experience, application fee, and selection procedure to the official Rights website. Kindly refer to www.rights.com. I repeat, it is www.rights.com. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में सहायक कुल सचिव का पद रिक्त है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। शैक्षिक योग्यता, पात्रता और अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद की वेबसाइट www.iitism.ac.in। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से 15 अगस्त 2026 को रात्रि 11:59 तक भेजे जा सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ अपने विभिन्न महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ये पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट प्रोटेक्शन प्लांट पैथोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्लोरिकल्चर एवं लैंडस्केपिंग फ्लावर ब्रीडिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एग्रो फॉरेस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रूट साइंस फ्रूट ब्रीडिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर बेसिक साइंस प्लांट फिजियोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर वेजिटेबल साइंस वेजिटेबल ब्रीडिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर वेजिटेबल साइंस वेजिटेबल प्रोडक्शन, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल साइंस एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ये सभी पद कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए हैं। इसके अतिरिक्त कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए ये पद रिक्त हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड बिजनेस मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड बिजनेस मैनेजमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड प्लांट ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड प्लांट ऑपरेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर डेयरी इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर डेयरी इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर डेयरी टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर डेयरी केमिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में जो पद उपलब्ध हैं वो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर फार्म मशीनरी एवं पावर इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर रेन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोसेसिंग एवं फूड इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अतिरिक्त कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तथा कॉलेज ऑफ शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी विभिन्न पद रिक्त हैं। वेतनमान रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अकादमिक लेवल 10 में 57,700 रुपये। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 18 से 24 जुलाई 2026 का रोजगार समाचार पत्र अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.svpuat.edu.in।
2: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
3: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
4: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
5: नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
6: Namaskar Mukesh, Adab, and a very warm welcome to all our listeners who have

0: Join us in this very, very fresh weekend episode of Parikrama, where we bring you an amalgamation of not just news, but very interesting stories that our correspondents have to share from different parts of the country. Aur shayad isiliye hum log kehte hain is show ko Parikrama. जी हाँ, तो इस आधे घंटे के न्यूज़ मैगजीन में मुकेश और हम आपके लिए लाएंगे ताज़ा तरीन खबरें और डा स्पेशल सेगमेंट डेट लाइन इंडिया इन विच विल टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकम्पलिशमेंट दैट आर कंट्री हैज़ अचीव टुडे. और उसके अलावा ऑफ कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स के पास जाएंगे एंड द लास्ट सेक्शन मुकेश इन विच वी रिमेंबर सम ऑफ द पर्सनैलिटीज हु ईदर हैव द बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज और बर्थ डेज टुडे. ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर. लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस मुकेश.
1: जी बिल्कुल.
0: India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 launched successfully from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota.
1: Pradhan Mantri Narendra Modi ne is prakshepan ke liye Skyroot Aerospace ki team ko badhai di. Ise Bharat ki antariksh yatra mein mahatvapurna kshan bataya.
0: Defense Minister Rajnath Singh says India's zero tolerance against terrorism is not merely a statement but a firm line of action.
1: Pashchim Bengal ke tarai wale kshetra aur Sikkim mein कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी.
0: एंड इन बैडमिंटन पीवी सिंधु स्टॉर्म्स इनटू वुमेन सिंगल्स फाइनल ऑफ जापान ओपन इन टोक्यो. And Mukesh, of course, in our segment Dateline India, as I had mentioned, we are going to discuss a very important accomplishment that we achieved today. Of course, we're going to talk about India's new space era and Nelson Mandela International Day. Aur jab space era ki baat ho rahi hai, to of course, we all know that today we have achieved a very remarkable feat because Vikram 1 was launched successfully from Sriharikota. And for decades, India's journey into space has been synonymous with one name. That is ISRO. Mission after mission, it has earned the nation's admiration and the world's respect. But today, that remarkable story has entered an exciting new chapter. For the first time, a privately developed Indian rocket has successfully reached orbit.
1: बिल्कुल, कैब बुक करने या खाना ऑर्डर करने के बारे में सोचिए. कुछ समय पहले तक ये सेवाएं शायद ही मौजूद थीं. फिर स्टार्टअप्स ने कदम रखा, काम करने के पुराने तरीकों को चुनौती दी और रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख दिया. और अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी ऐसी ही क्रांति हो रही है.
0: That's right, Mukesh. Space is no longer a playground reserved only for national space agencies. It has become a place where startups, innovators, students and entrepreneurs can dream and more importantly turn those dreams into reality. And Vikram 1 is a living proof of that transformation.
1: बिल्कुल सहरा, हर पीढ़ी एक ऐसा पल देखती है जो देश के खुद को देखने के नजरिए को बदल देता है. ये भी शायद उन्हीं पलों में से एक है. क्या ऐसा नहीं लगता कि हर नया दिन भारत की यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ रहा है? कल हरियाणा में देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना किया गया और आज विक्रम 1 ऑर्बिट में पहुंच गया. भारत लगातार बड़े और साहसी विचारों को शानदार उपलब्धियों में बदल रहा है, है ना?
0: बिल्कुल सही मुकेश. वेल, व्हेन विक्रम 1 लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा अंडर मिशन आगमन, इट वाजंट ओनली एमिंग फॉर द स्काई. इट्स रियल डेस्टिनेशन वाज अ 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट where it successfully deployed multiple satellites. Now our listeners might wonder, isn't every rocket launch about reaching space? Not quite. Getting into space is one thing. Entering a stable orbit around the Earth is an entirely different challenge.
1: बिल्कुल, किसी भी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने का मतलब है उसे वो सटीक गति और दिशा देना जिससे वो पृथ्वी पर वापस आने के बजाय उसके चारों ओर घूमती रहे. ये गति, समय और इंजीनियरिंग के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन है और विक्रम 1 ने इन सभी गणनाओं को बिल्कुल सही साबित किया है.
0: Well, Vikram 1 has been developed by Hyderabad-based Skyroot Aerospace, becoming India's first privately built orbital launch vehicle. The rocket carries satellites weighing up to 350 kilograms into low Earth orbit.
1: और ये अत्याधुनिक भारतीय इंजीनियरिंग का भी प्रदर्शन करता है जिसमें पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट से बना ढांचा, शक्तिशाली सॉलिड फ्यूल बूस्टर और एडवांस्ड 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन शामिल हैं.
0: And here's a detail, Mukesh, that's sure to make every young listener smile. The Skyroot team is made up largely of only young professionals. Not very long ago, they were attending lectures, working on college projects, and discussing ambitious ideas with friends. Today, those ideas

0: हैव ट्रेवल्ड ऑल द वे टू स्पेस।
1: बिल्कुल सारा, प्राइवेट कंपनियों ने अचानक रॉकेट लॉन्च करना कैसे शुरू कर दिया? क्या उन्होंने बस एक दिन में स्पेस बिजनेस में आने का फैसला किया? असल में ऐसा नहीं है। इस कामयाबी के पीछे आजाद भारत के अंतरिक्ष सफर में हुए सबसे बड़े नीतिगत बदलाव में से एक है। 2023 में सरकार ने इंडियन स्पेस पॉलिसी पेश की, जिससे स्पेस से जुड़ी पूरी वैल्यू चेन में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी का रास्ता खुल गया। तो आइए सुनते हैं कि इस ऐतिहासिक लॉन्च पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा।
2: Congratulations in space for facilitating this beautiful public-private partnership. Congratulations ISRO for optimizing this collaboration. Many, many thanks Prime Minister Narendra Modi ji for making this possible, because it is possible only because 5 years back Prime Minister Modi took a heroic decision, a bold decision, a courageous decision, an out-of-box decision to open the space sector to the private players, to unlock the space sector. That today's successful launch is a reiteration of India's grand entry as a global player in the highly competitive arena of space economy.
0: And to make the journey smoother, another important institution stepped forward, that is InSpace, the International Space Promotion and Authorization Center. Think of it as a single window guide for India's private space companies. Instead of navigating complicated procedures, startups now have one place that helps authorize missions, provides regulatory support, enables access to ISRO facilities, and connects innovators with opportunities.
1: और नतीजे खुद ही सब कुछ बता देते हैं। वर्ष 2014 में भारत में सिर्फ एक स्पेस स्टार्टअप था और आज 400 से ज्यादा हैं। ये साफ संकेत है कि भारत का प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम सच में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: And of course, brilliant ideas also need funding. After all, building rockets isn't exactly something you do with pocket money, isn't it?
1: बिल्कुल।
0: Well, recognizing this, the government introduced several initiatives. These include the InSpace Seed Fund Scheme, which supports early stage startups with grants of up to 1 crore rupees, along with mentorship and networking opportunities.
1: बिल्कुल सारा, इस दिशा में दूसरा है 1,000 करोड़ रुपए का खास वेंचर कैपिटल फंड, जो आने वाले सालों में होनहार स्पेस स्टार्टअप्स को अपने इनोवेशन और बड़े स्तर पर ले जाने में सहायता कर रहा है। और तीसरा है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड, के जरिए कंपनियों को लैब की टेक्नोलॉजी को कमर्शियल प्रोडक्ट में बदलने के लिए सहायता मिलती है, जिससे इंडस्ट्री और समाज को फायदा हो सके।
0: Another major player working behind the scenes is New Space India Limited, or NSIL, ISRO's commercial arm. Its role is to take India's space technologies beyond labs and into the marketplace.
1: और चाहे स्पेस सिस्टम बनाना हो, इसरो को टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ट्रांसफर करना हो, या PSLV बनाना हो और कमर्शियल लॉन्च सर्विस देना हो, NSIL ये पक्का कर रहा है कि भारत इनोवेशन दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचे।
0: In fact, its revenue has increased nearly tenfold between 2020 and 2024, reflecting India's rising commercial presence in the global space economy. Foreign investment rules have also become far more welcoming. The liberalized FDI policy now allows greater automatic foreign investment across different segments of the space sector.
1: बिल्कुल सारा, हमारे प्राइवेट स्पेस सेक्टर में क्रांति की शुरुआत विक्रम 1 से ही नहीं हुई थी। ये बदलाव कई सालों से धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। 2022 में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस ने अपना सफल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन मिशन पूरा किया था।
0: एंड देन मुकेश केम अग्निकुल कॉस्मोस, बिकमिंग द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च अ रॉकेट फ्रॉम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा, व्हाइल आल्सो डेमोंस्ट्रेटिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन. India has also enabled partnerships involving companies like Pixel, Dhruv Space, SatShaw, and PeerSight Space to develop Earth observation satellite constellations that support agriculture, disaster management, climate monitoring, and urban planning.
1: और अब SSLV जैसी टेक्नोलॉजी भी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री को सौंपी जा रही है। इस तरह धीरे धीरे भारत का स्पेस इकोसिस्टम मजबूत, व्यापक और अधिक सहयोगपूर्ण बना है। और फिर आया मिशन आगमन।
0: Yes, Mukesh, and our listeners may be surprised to know that Vikram 1 wasn't carrying just customer satellites. Among its payload was symbols celebrating India's scientific journey. One payload included a tiny 18-carat gold micro rocket featuring microscopic sculptures of three legends, Dr. C.V. Raman, Dr. Vikram Sarabhai, and

0: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ईच स्मॉलर दैन इवन अ ग्रेन ऑफ राइस।
1: और इस कामयाबी का जश्न पूरे देश में मनाया गया। सफल ऑर्बिटल मिशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। उन्होंने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे भारत के युवाओं को नवाचार अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। टीम के युवा प्रोफेशनल्स की तारीफ की और उन्हें खुद से मिलने के लिए आमंत्रित किया। सक्सेस।
2: पवन, भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: सो वेल मुकेश, इंडीड अ वेरी हिस्टोरिक डे टुडे। एंड टुडेज डे अगर देखा जाए तो व्हाट डज विक्रमान रियली टेल अस? वेल, इंडिया स्पेस स्टोरी इज डेफिनेटली चेंजिंग, नॉट बिकॉज इसरो इज स्टेपिंग बैक, बट बिकॉज मेनी मोर हैंड्स आर नाउ हेल्पिंग टेक द कंट्री फॉरवर्ड। स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियर्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स, टुगेदर दे आर बिल्डिंग एन इको सिस्टम वेयर इनोवेशन हैज़ रूम टू ग्रो, एंड विक्रम वन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। Long after the applause for this launch fades, its true legacy will remain in the technologies it enables, the industries it inspires, and the generations it encourages to look up and ask, what's next?
1: और अब हम बात करते हैं आज की दूसरी डेडलाइन, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस की। हर साल 18 जुलाई को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाती है। संयुक्त राष्ट्र ने ये दिन उस व्यक्ति के सम्मान में घोषित किया है जिन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए, फिर भी वे बिना किसी कड़वाहट के बाहर आए और बदले की जगह माफी तथा बंटवारे की जगह एकता को चुना।
0: वेल, ऐसे लोग जो है कुछ अलग ही मिट्टी से बनते हैं मेरे ख्याल
1: जी
0: से मुकेश। एंड वी ऑल नो दैट ऑफ कोर्स से ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट चैंपियंस ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1918 इन साउथ अफ्रीका, ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू एंडिंग द कंट्रीज अपार्टाइड सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन।
1: और 1994 में वे दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए अश्वेत राष्ट्रपति बने और देश को शांति, एकता और लोकतंत्र की ओर ले गए। और इस दिन के बारे में एक खास बात यह है कि ये दिन सिर्फ नेल्सन मंडेला को याद करने का नहीं है, बल्कि उनके जैसा बनने की कोशिश करने का भी है।
0: Absolutely, Mukesh. The UN encourages everyone to dedicate 67 minutes to helping others. And if you're thinking, why 67 minutes? Well, they symbolize the 67 years Mandela devoted to public service. Whether it's planting a tree, mentoring a child, helping a neighbor, or simply listening to someone who needs support, every small act counts.
1: और मंडेला का जीवन भी महात्मा गांधी से गहराई से जुड़ा था। जहां गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक प्रतिरोध का अपना सिद्धांत विकसित किया, वहीं मंडेला ने अक्सर माना कि उन आदर्शों ने न्याय और समानता की दिशा में दक्षिण अफ्रीका की लंबी यात्रा को प्रेरित किया।
0: बिल्कुल मुकेश, और रातों रात ऐसे बदलाव नहीं आते। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट द वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस व्हेन एवरी टाइम समवन चूजेस एम्पैथी ओवर एंगर, होप ओवर फियर एंड यूनिटी ओवर डिविजन। परहैप्स दैट्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेल्सन मंडेला डे एंड अ रिमाइंडर दैट ईच वन ऑफ अस हैज अ रोल टू प्ले। And well, those were the two topics, Mukesh, of Dateline India. And just to tell our listeners कि हम लोग की जो सीरीज शुरू हुई है पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी, इन आर अपकमिंग एपिसोड वी स्पोक टू आर माधवन, एन एक्लेम्ड एक्टर एंड डायरेक्टर हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री। टू लिसन टू द एंटायर कॉन्वर्सेशन प्लीज़ ट्यून इन टू 100.1 आकाशवाणी गोल्ड टुडे एट 5:10 PM। And you can listen to the conversation with R. Madhavan on our app also, News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. The program will be broadcast again tomorrow in the morning at 9:10 AM.
1: और परिक्रमा कार्यक्रम में वक्त हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। इस क्रम में सबसे पहले पणजी चलें, जहां पर सुशासन में एआई के इस्तेमाल के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है।
0: Yes, Goa has taken a significant step towards expanding the use of artificial intelligence in governance with the launch of the Bhashini Rajyam workshop in Panaji. The initiative aims to make government services more accessible to citizens through Konkani and other Indian languages. We have a report.
3: Goa government has begun efforts to strengthen the use of artificial intelligence across various sectors through the Bhashini language platform. Speaking at the Bhashini Rajyam workshop in Panaji, Information Technology Minister Rohan Khaunte said the initiative will help digitally empower citizens by enabling government departments to communicate and deliver services in Konkani. He said AI-powered language tools will make administrative processes easier to understand and improve access to government services for the common people.
4: Konkani is a very vital part of our heritage, and we prioritize our MyBus from the very start of the Goa AI mission. We signed the MOU with Bhashini Division so that every single Goat, regardless of linguistic barriers, can seamlessly interact with the public systems in their own language. Through the AI governance workshop, we successfully brought various departments together to build institutional capabilities. We launched a 24/7 assistive chatbot on the Goa Online, establishing the state-of-art AI labs across Goa ITIs to strengthen practical learning and workforce development. And we are working towards developing actionable AI-driven solutions that improve public life, especially to service deliveries like the AI Goa AI Hackathon.
3: Chief Executive Officer of the Digital India Bhashini Division, Amitabh Nag, said the platform currently supports 22 scheduled Indian languages out of 121 recognized languages in the country. He added that Bhashini also offers supports for 35 foreign languages, making multilingual communication easier. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Panaji.
1: और गोवा से सटे महाराष्ट्र की ओर चलते हैं और अपने श्रोताओं को बताएंगे, साइकिल एक ऐसा वाहन है जो आपकी सेहत बढ़िया रखता है, साथ ही पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरे वाहनों से निकलने वाले धुएं से हवा प्रदूषित होती है। ऐसे वाहन पेट्रोल और डीजल की बड़ी मात्रा में खपत भी करते हैं। इसी बात को समझते हुए केंद्र सरकार के फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र में एक अनूठा अभियान चलाया जा रहा है, तो सुनते हैं रिपोर्ट।
5: महाराष्ट्र में आने वाली देवशयनी 11 को पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पैदल चलकर जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं का इन दिनों तांता लगा हुआ है। इन श्रद्धालुओं के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से साइकिल से यह यात्रा करने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर से इस यात्रा में सम्मिलित हुए डॉक्टर विजय व्यवहारे।
6: ये जो साइकिल वारी शुरू हुई है, ये ऑल ओवर महाराष्ट्र टोटल 140 क्लब ने इस बार पंढरपुर वारी में शामिल कर लिया है और टोटल साइकिलिस्ट अगर आप पूछेंगे तो 7,500 से 8,000 साइकिलिस्ट ने इस वारी में हिस्सा लिया था। पहले दिन शनिवार की शाम को वहां पर साइकिल सम्मेलन हुआ था। साइकिल सम्मेलन में सारे साइकिलिस्ट के क्लब्स के प्रेसिडेंट्स अपने क्लब के बारे में जानकारी देते, हम लोग साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या राइड्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सारी हम लोग जानकारी वहां पर देते हैं। और दूसरे दिन सुबह 6 बजे हम लोग साइकिल प्रदक्षिणा करते हैं मंदिर को, हम लोग साइकिल पे एक राउंड एक चक्कर मारते हैं। उसके बाद फिर ये सारे क्लब्स पंढरपुर रिजर्वेशन का एक बड़ा सा ग्राउंड है, वहां पर इकट्ठा होता है। हम लोग वहां पर साइकिल रिंगन एक बनाते हैं। ये साइकिल राइड ऑर्गेनाइज किया था सबसे पहले IPS हरीश बैजल साहब ने 2011 में। ये शुरू हुआ था 8 साइकिलिस्ट से नासिक से पंढरपुर तक, और इस साल ये साइकिल वारी का साइकिल रिंगन का 5वां साल था और इस बार 7,500 से 8,000 साइकिलिस्ट ने इसमें हिस्सा लिया।
5: आशा है कि डॉक्टर व्यवहारे और उनके सब साथियों द्वारा दिया गया ये संदेश समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचकर हर कोई फिर से साइकिल चलाने को प्राथमिकता देगा। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजी नगर से हर्षवर्धन दीक्षित।
1: और अब महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पुदुचेरी।
0: Yes, healthcare today is not just about treating illnesses. It is equally about connecting people with government health initiatives that provide financial protection, digital health services, and easier access to quality medical care. With this objective, the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research in Puducherry has launched a month-long Freedom from Illness campaign to promote the central government's flagship health schemes. Let's hear more from our correspondent.
7: The Freedom from Illness campaign, being conducted from the 16th July to 15th August, aims to facilitate free registration and on-the-spot generation of Ayushman Bharat Health Account, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, and Ayushman Vayavandana cards for eligible beneficiaries. Dedicated registration counters have been set up across the Jipmer campus to provide these services free of cost. Inaugurating the campaign, Jipmer Director Dr. Veer Singh Negi said the initiative reflects Jipmer's commitment to strengthening universal healthcare by ensuring that every eligible citizen benefits from the Government of India's flagship health schemes. He said the Ayushman Bharat program has made healthcare more accessible, affordable, inclusive, and digitally enabled while providing financial protection to millions of people. Dr. Negi appealed to the public to make full use of the campaign and encouraged people to enroll their family members, neighbors, and in particular senior citizens. During the campaign, trained personnel will assist beneficiaries in verifying their eligibility, creating APA numbers, and generating PMJAY and Ayushman Vayavandana cards. The campaign has been held daily from 6:30 a.m. to 4 p.m. Eligible beneficiaries have been advised to carry their Aadhaar card, ration card, and an Aadhaar linked mobile number for registration. For Parikrama, this is Bibin Asnad, Akashwani News, Puducherry.
1: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो अपने श्रोताओं को बता दें कि फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मायामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: And in badminton, Indian shuttler and two-time Olympic medalist PV Sindhu stormed into the women's singles final of Japan Open in Tokyo today. She entered the final after her opponent and world number 4, Chen Yufei of China, retired during the second set of the match. Sindhu will now next face Japan's Akane Yamaguchi in tomorrow's final as she bids for the Japan Open title.
1: और अब हम याद करते हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि। तो इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के जाने माने देशभक्तों में से एक अब्दुल हमीद कैसर को। कैसर विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। गरीबों के लिए इनके दिल में बहुत प्यार था। इनके मन में बचपन से ही देशभक्ति की भावना जाग उठी थी, क्योंकि जिस विद्यालय में ये शिक्षा ग्रहण करते थे वहाँ विद्यार्थियों में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने की भावना भरी जाती थी। अब्दुल हमीद कैसर ने देश प्रेम और त्याग के बारे में कवि की ये पंक्तियां उचित प्रतीत होती हैं। तज स्वार्थ का मार्ग अहिंसा को अपनाए, शीश झुका चुपचाप पुलिस की लाठी खाए, गए जेल हथकड़ी हाथ में कष्ट उठाए, बहुत बहुत आशीष भारत माता से पाए।
0: Indeed, a very, very befitting tribute to Abdul Hamid. And moving on, today we have a lot of artists from the Indian film industry. Kuch singers hain, kuch actresses hain, and the first superstar of India. तो सबसे पहले लेकिन हम लोग बात करते हैं वो सिंगर की जिनकी आज बर्थडे है। वो सिंगर जब आए थे तो आप छैया छैया के गाने ने स्पेशली बड़ी धूम मचा दी थी एंड अ वेरी डिफरेंट वॉइस क्वालिटी। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट सुखविंदर सिंह। ही इज़ नॉट जस्ट अ सिंगर बट इवन अ म्यूजिक कंपोजर एंड लिरिसिस्ट एंड ही हैज़ रिकॉर्डेड सॉन्ग्स फॉर इन्यूमरेबल यू कैन से फिल्म एंड म्यूजिक एल्बम्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस of Telugu, Tamil, Kannada, Punjabi, Marathi, Urdu and Bengali as well. And somehow I think we there's a technical glitch, we cannot play Chaiya Chaiya, but we wish we could have played that. And well, talking about the first superstar of India, you can say wo kaun the, aap hi bataiye.
1: Bilkul, hum baat kar rahe hain Rajesh Khanna ki. Bharatiya Hindi filmon ke prasiddh abhineta Rajesh Khanna ka vastavik naam Jatin Khanna tha. अपने रूमानी अंदाज, स्वाभाविक अभिनय और कामयाब फिल्मों के लंबे सिलसिले के बल पर करीब 1.5 दशक तक सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले राजेश खन्ना के रूप में हिंदी सिनेमा को पहला ऐसा सुपरस्टार मिला जिसका जादू चाहने वालों के सिर पर चढ़कर बोलता था।
0: यस ऑफ कोर्स, एंड मेरे ख्याल से जो हम लोग ने अपने पेरेंट्स से सुना है कि खून की चिट्ठियाँ लिखती थी लड़कियाँ उनको अपने खून से, एंड वेल ऑफ कोर्स ही जस्ट वाज द फर्स्ट सुपरस्टार दैट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सॉ एंड रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा. ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट ही गार्नर्ड अ लॉट ऑफ एक्लेड्स इंक्लूडिंग 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स, एंड ऑफ कोर्स ही वाज आल्सो पोस्टमसली अवार्डेड द पद्म भूषण व्हिच इज द थर्ड हाईएस्ट civilian honor. And he made his acting debut in 1966 with the film Aakhri Khat, which was India's first official Academy Awards entry in the year 1967. और उसके अलावा बहुत से उनके जो गाने हैं, especially जो किशोर कुमार ने गाए और उन पे फिल्माए गए, I think they are just unforgettable. Without much ado, let's listen to this beautiful medley.

0: और वर्ष 1969 में आई फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना की करियर को उड़ान दी और देखते ही देखते ही वो युवा दिलों की धड़कन बन गई। वर्ष 1971 में राजेश खन्ना के अभिनय करियर का सबसे यादगार साल रहा। उस वर्ष उन्होंने कटी पतंग, आनंद, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, इतनी सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया और सारी फिल्म जो है वो सुपरहिट रही। उनमें चाहे हाथी मेरे साथी, अंदाज जैसी सुपरहिट फिल्में थी, दो रास्ते, दुश्मन, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, कितनी ही फिल्में हैं, एक लाइन लगी हुई है। 163 फिल्मों में उन्होंने काम किया था।
1: दैट्स राइट और मेरे ख्याल से सब लाजवाब, स्पेशली ये जो आपने दौर बताया आफ्टर आराधना, दैट वॉज हिज प्रॉब्ली गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन सिनेमा एज वेल, नॉट जस्ट हिज करियर।
0: बिल्कुल
1: मूविंग ऑन, आज नेक्स्ट कौन है हमारी फेहरिस्त में?
0: जी, भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका मुबारक बेगम की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने 1950 से 1970 के दशक के बीच बॉलीवुड के लिए सैकड़ों गीतों और गजलों को आवाज दी थी। वर्ष 1950 और 1960 के दशक के दौरान उन्होंने SD बर्मन, शंकर जयकिशन और खयाम जैसे सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों के साथ काम किया।
1: Today is also the birthday of actress Priyanka Chopra. We all know that she was the winner of the Miss World 2000 pageant and of course one of India's highest paid actresses and now she has completely moved it to the Hollywood. तो अब उनको हम लोग इंडियन फिल्म में तो कम ही देखते हैं एंड नन द लेस शी इज मेकिंग द नेम ऑफ इंडिया प्राउड ओवरसीज एंड उनकी बहुत सी फिल्में थी लेकिन ये खूबसूरत सी फिल्म है जिसमें उन्हें गाया भी था। लेट्स हियर दिस।

और भारतीय सिनेमा के ख्याति प्राप्त पार्श्व गायक और गजल गायक भूपिंदर सिंह की आज पुण्यतिथि है। उनके गाए हुए प्रसिद्ध गीतों में मेरा रंग दे बसंती चोला, नाम गुम जाएगा, हमें प्यार किस मोड़ पे और हुजूर इस कदर आदि शामिल हैं, तो क्यों ना ये गाना सुना जाए।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि ये निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।

0: पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये प्रमाण है कि जब भारत के युवाओं के नवाचार और उद्यमशीलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक सुधारों का समर्थन मिलता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में परिवर्तनकारी अध्याय की शुरुआत है। श्री बिरला ने कहा कि विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने अपनी बढ़ती तकनीकी उत्कृष्टता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगॉव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इसका उद्देश्य इंडिया पोस्ट के लिए ऐसा आधिकारिक शुभंकर तैयार करना है जो संगठन के विश्वास, विश्वसनीयता, सेवा और डिजिटल नवाचार जैसे मूल्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करे। ये प्रतियोगिता सभी नागरिकों के लिए है। प्रतिभागियों को माईगॉव पोर्टल के माध्यम से मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे अमरीका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यूफी को चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। तो नीलम बहन, आज के लोकरंजनी कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ब्रिजपाल चरोरा से ये श्री अन्न गीत।
1: अरे मोटे अन्न के अरे भोज बनाओ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लेख राज से ये लोकगीत, और आइए अगला लोकगीत आपको सुनवाते हैं बबीता उर्फ पूनम त्यागी से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बबीता उर्फ पूनम त्यागी से ये लोकगीत। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं आपको एक और लोकगीत। कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

पुष्पा गोसाई द्वारा गाए गए इसी लोकगीत के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को राम राम, राम।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। शाम के 5:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी बस कुछ ही देर में।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, मैं हूँ रेणु गुप्ता और मेरे साथ हैं
3: मैं दर्पण तिकिया और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा खेल खिलाड़ी, वो कार्यक्रम जहाँ रोजाना हम आपको खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं और सुनाते हैं खिलाड़ियों के संघर्ष और सफलता की किस्से कहानियां, इस उम्मीद में कि वो आपको प्रेरित करेंगी और जीवन में आगे बढ़ने की सीख और हौसला देंगी।
2: जी, और खेल हमें बार बार याद दिलाता है कि हर अंत किसी नई शुरुआत का दरवाजा भी होता है, इसलिए खिलाड़ी आखिरी पल तक लड़ना नहीं छोड़ते, क्योंकि जब तक मुकाबला बाकी है तब तक उम्मीद भी बाकी है।
3: शायद यही जज्बा हमारी विरासत भी है। आजादी की लड़ाई से लेकर खेल के मैदान तक मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, हौसला आखिरी पल तक नहीं टूटता। जिंदगी में भी कई बार ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन अक्सर सबसे अंधेरा पल ही नई सुबह की शुरुआत होता है। इसीलिए हालात जैसे भी हों, कोशिश मत छोड़िए, यही आज का संदेश है। और इसी संदेश के साथ आइए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं।

0: तो दर्पण, आज हमारे पिटारे में क्या क्या है अपने श्रोताओं के लिए जरा बता दें उन्हें।
1: जी, आज के चर्चा का केंद्र रहने वाले हैं बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, साथ के साथ कुश्ती की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे।
0: जी हाँ, और बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच थर्ड प्ले ऑफ मैच, थर्ड पोजिशन के लिए प्ले ऑफ मैच की,
1: और साथ के साथ भारत के इंग्लैंड दौरे पर क्रिकेट मैच में तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मुकाबला, उसमें क्या कुछ होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे।
0: और कॉमनवेल्थ स्पेशल सीरीज में आज हमारे पास क्या है दर्पण?
1: जी, लॉन बॉल्स, एक ऐसा खेल जिसमें भारत ने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया है उसके बारे में बताएंगे। साथ के साथ बैडमिंटन में जापान ओपन के बारे में बताएंगे और एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप से भी आपको रूबरू कराएंगे।
0: और साथ ही बात करेंगे रेसलिंग की रैंकिंग सीरीज के बारे में, बुडापेस्ट हंगरी में विमेन रेसलिंग ग्रेको रोमन के जो ताजा जानकारी है वो अपने श्रोताओं को हम देंगे। और इसके अलावा बात करेंगे चेन्नई चैंपियनशिप के बारे में। और शुरू करते हैं हम अपना कार्यक्रम।
1: जी हाँ, तो बने रहिए अगले आधे घंटे अपने रेडियो सेट के पास। आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी।

0: विश्व बैडमिंटन के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के आगाज में अब केवल एक महीने का समय शेष रह गया है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शटलरों का ये महाकुंभ 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। करीब 17 वर्षों के बाद भारत को इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिला है। इससे पहले 2009 में हैदराबाद में विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। ऐसे में दिल्ली में होने वाला यह आयोजन भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक अवसर माना जा रहा है। विश्व चैंपियनशिप में ओलंपिक और विश्व स्तर के दिग्गज खिलाड़ी पुरुष और महिला एकल युगल तथा मिश्रित युगल वर्गों में खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगे। चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, मलेशिया और थाईलैंड जैसी बैडमिंटन महाशक्तियों के खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और अगर बात करें भारतीय चुनौती की, तो देश की निगाहें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा सितारों पर भी टिकी होंगी। पूर्व चैंपियन पीवी सिंधु वुमेन सिंगल में भारत को लीड करेंगी, तो वहीं पुरुषों में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। घरेलू दर्शकों के सामने खेलने का लाभ भारतीय खिलाड़ियों को अतिरिक्त आत्मविश्वास प्रदान कर सकता है, और क्योंकि भारतीय बैडमिंटन ने पिछले दशक में विश्व मंच पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, और यही कारण है कि इस बार पदकों को लेकर उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। और दर्पण इसी कड़ी में आज नई दिल्ली में टूर्नामेंट के आधिकारिक मैस्कॉट और एंथम का भव्य अनावरण किया गया है। तो आइए अपने श्रोताओं को सुनाते हैं कि क्या क्या हुआ है वहां पर।
1: जी हाँ, तो एंथम लॉन्च किया गया है, वो एंथम जो सिर्फ खिलाड़ियों का ही नहीं बल्कि दर्शकों का भी उत्साह बढ़ाएगा। उस एंथम को आपको सुनाते हैं।

0: चलिए एंथम थोड़ी देर में आपको सुनाते हैं, और खबरें बताइए।
1: जी हाँ, और इसी अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहे, और उन्होंने क्या कहा वो भी हम जानेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ले चलती हूँ चेन्नई ग्रैंड मास्टर जो 2026 की प्रतियोगिता है उसके मुकाबलों की तरफ। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता में कल राउंड टू के मुकाबले हुए हैं, जिनका जो ताज़ा हाल है वो कुछ इस तरीके से है। फ्रांस के ग्रैंड मास्टर अली रेजा फिरोज़ा ने वर्ल्ड चैम्पियन डी गुकेश को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट के बाद सेकेंड राउंड के बाद लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए 2 अंकों के साथ सेकेंड राउंड में एकल बढ़त हासिल कर ली है। ये बेहद रोमांचक मुकाबला 69 चालों तक चला। वहीं अगर भारत के एम प्रणेश ने रशियन डिमित्री एंड्रिकिन को और भारत के अर्जुन एरिगेसी ने अपने से बड़ी रैंकिंग वाले नौदीर बेग अब्दू सत्तोरोव को, निहाल सरीन ने अमेरिकन हांस नीमेन को ड्रॉ दिया है। अगर राउंड 3 के पेयरिंग्स की बात करें तो अर्जुन एरिगेसी का हांस नीमेन के साथ, प्रणेश एम का नौदीर बेग अब्दू सत्तोरोव के साथ, डी गुकेश का डिमित्री आंद्रे केन के साथ, और निहाल सरीन का मुकाबला होगा अली रेजा फिरोजा के साथ। और अगर बात करें करंट स्टैंडिंग्स की तो इस समय नंबर 1 पर हैं 2 पॉइंट्स के साथ अली रेजा फिरोजा, वहीं नौदीर बेग अब्दू सत्तोरोव, अर्जुन एरिगेसी, हैंस नीमन, डिमित्री एंड्रेकिन और निहाल सरीन संयुक्त रूप से 1 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं। डी गुकेश जो कि फिडे चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, और एम प्रणेश संयुक्त रूप से 0.5 पॉइंट्स के साथ सातवीं पोजीशन पर हैं।
0: चलिए वापस ले चलते हैं आपको बैडमिंटन की दुनिया में। हमने आपको बताया था कि एंथम जो लॉन्च हुआ है वो सुनाएंगे, आइए सुनाते हैं आपको।

0: यहां तो 17 साल बाद ये चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है भारत में, नई दिल्ली में इसका आयोजन होने जा रहा है और नजरें रहने वाली हैं सभी दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों पर। सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर तो नजरें होंगी, पीवी सिंधु पर नजरें होंगी जिन्होंने हाल ही में जापान ओपन में जगह बना ली है अपनी फाइनल में। आपको बता दें कि सेमीफाइनल मुकाबला काफी कड़ा होने वाला था, उनके सामने चीन की चेन यू फी थी जिनके खिलाफ पहला सेट सिंधु ने जीता, एक रोमांचक सेट था, 21-19 से उन्होंने जीता, और दूसरे सेट में प्रतिद्वंदी रिटायर हो गई चोट के चलते, जिसके वजह से पीवी सिंधु को मौका मिला आगे जाने का। खैर, बीडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप पर वापस आते हैं,
1: और क्योंकि यहाँ पर अभी हमने एक जो जानदार शानदार जो एंथम है, एक जोश से भरा हुआ, वो तो सुना ही है, और साथ ही हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल मैस्कॉट है पीको, उसका भी अनावरण हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ये मैस्कॉट है, और इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आइए जानते हैं उन्होंने इस अवसर पर क्या कहा।
2: देश एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन बने, इंटरनेशनल टूर्नामेंट देश में मैक्सिमम आयोजित हो, प्ले इन इंडिया, आप आइए भारत में खेलिए, इनिशिएटिव पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए पिछले 2025 और 26 दो साल में 36 इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन करा गया, एक ही साल में 16 चालू वर्ष में इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन करा गया, अभी ये 2026 छः महीने बाकी हैं, 9 टूर्नामेंट ऑलरेडी लाइनअप है, और 2027 और 2028 दो साल के लिए और 19 इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, कई टूर्नामेंट आने वाले दो साल के लिए लाइनअप में है। जब कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हमारे देश में आयोजित होती है तब दोस्तों दुनिया के एथलीट यहाँ खेलने आते हैं। हमारे बैडमिंटन टूर्नामेंट, वर्ल्ड टूर्नामेंट में भी 400 से अधिक तो केवल विश्व के महत्वपूर्ण एथलीट खेलने के लिए आएंगे। इस श्रेणी में मुझे खुशी है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप भी अच्छी तरह से देश में आयोजित होगी। ये चैंपियनशिप में केवल

0: खिलाड़ी ही नहीं खेलेंगे, एथलीट तो खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन उसके साथ देश की स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट की क्षमता भी दुनिया देख पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है हम अच्छी तरह से ये टूर्नामेंट का आयोजन भी करेंगे।
1: जी हाँ, अच्छी तरह से टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे। और जैसा हमने कहा, नजरें होने वाली है सभी खिलाड़ियों पर। बात की मैंने पीवी सिंधु की, जिन्होंने अभी अभी फाइनल में जगह बनाई है जापान ओपन के। जैसा हमने बताया कि उनकी प्रतिद्वंदी घायल हो गई, इसके चलते उनको मौका मिला फाइनल में जाने का, लेकिन उस मुकाबले में सेमीफाइनल में जो पहला सेट उन्होंने शानदार तरीके से जीता, वो एक बड़ी उपलब्धि थी, बता रही हैं खुद पीवी सिंधु।
2: Well, I was very focused and I think my coach kept saying, because I was leading the first game and then she came quite close, so it was important that I, you know, be more focused, because, you know, sometimes when you're leading and you give away points, you suddenly, you know, get disheartened thinking that, you know, why are these points going, or, you know, I was leading. So a lot of emotions go in your head, but I think my coach was saying that, you know, it's okay, it doesn't matter, just focus on the next point, and I think that really helped. And even in the second set, I think there were long rallies, and I think especially in the first game, that long rally which happened and I won the rally, I think that one was very important for me to get that point. Well, I'm very happy that I've you know, gone to the finals, and I think for me every match mattered a lot from the first match, and you know, for me it was important, like especially today's match, it was important from the beginning to be focused, because you know, when you play with the top players, top ranked players, I think it's important that every point matters. I think for me winning that first game really mattered a lot, and I think in the second game as well it was important, where I was focused from the first point, because you know, it was going quite equal, and I think after even though I was 2 points, you know, leading, she was covering and coming back, and I think after 11 it was, I was maintaining that you know, 3-4 points, and but yeah, unfortunately she had to she retired.
1: जी हाँ, अब बात करते हैं क्रिकेट की। तीसरा एक दिवसीय मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाला है लॉर्ड्स में। सीरीज 1-1 से बराबर है और लॉर्ड्स में यानी रविवार को ये मुकाबला खेले जाने वाला है। कौन जीतेगा इस मुकाबले को, वो सीरीज तो जीतेगा, लेकिन उससे भी बड़ा एक नैरेटिव है जो इस वक्त क्रिकेट प्रशंसकों के जहन में चल रहा है। खबरें आई पिछले दिनों की ये आने वाला मुकाबला शायद रोहित शर्मा का आखिरी एक दिवसीय मुकाबला है, और शायद उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हो सकता है। हालांकि इसके बाद इस खबर को खारिज किया बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइका ने, लेकिन जब सुधांशु कोटक से पूछा गया, सुधांशु कोटक जो कि भारतीय टीम के साथ बतौर बल्लेबाजी कोच हैं, और उनसे पूछा गया क्या सच में रोहित शर्मा के ऊपर कुछ दबाव है, क्या वो कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो संन्यास लेने वाले हैं, तो सुधांशु कोटक ने भी इस बात को सिरे से खारिज कर दिया।
3: सी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रोहित जितना बड़ा प्लेयर को कुछ दबाव या प्रेशर हो सकता है। इज टू गुड अ प्लेयर टू फील दैट। हाँ, दो मैच रन्स नहीं हुए, आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी डिफरेंस, बट टुडे ऑल्सो इट लुक लाइक ही प्रोबेबली गेट अ गुड इनिंग आउट, बट दैट्स ओके। आई डोंट नो रूमर्स कहाँ से आ जाते हैं, बट आ जाते।
1: जी हाँ, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी माना कि रोहित शर्मा शायद पूरी तरह अपनी लय में नजर नहीं आए पहले दो मुकाबलों में। उन्होंने ऐसा कहा कि शायद हो सकता है कि जो पिच में दोहरा उछाल था, उसके चलते रोहित शर्मा को अपनी रिदम तलाशने में मुश्किल महसूस हुई।
3: Honestly, I have played lot of cricket and I have seen lot of cricket. On a day, there are lot of batters I have seen. They don't get that momentum what they're looking for, and that can happen. You might see completely different inning from Rohit Sharma in Lords. So I wouldn't use the word he was struggling, but maybe the shots he normally plays on the up and all, which is because of the double bounce, probably he felt it wasn't comfortable, and Subman got a quick start, then Virat got a quick start, but he didn't get probably balls in his slot, or he didn't get going. That's what I felt. So I wouldn't say, because you could definitely see the completely different inning from player like Rohit, and I've seen that happening to lot of batters, so it's not just Rohit who, I wouldn't use the word he was struggling.
1: जी हाँ, तो ये मुकाबला खेले जाने वाला है रविवार को 19 जुलाई को। और एक और चीज़ पर अटकलें होंगी, एक और चीज़ पर नज़र होगी, वो होगी क्या कुलदीप यादव को प्रथम एकादश में जगह मिलेगी, क्योंकि पहले दो मुकाबलों में उनको जगह नहीं मिली है। हालांकि दूसरे मैच में वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से

0: गेंदबाजी नहीं कर सके थे, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि शायद कुलदीप यादव को जगह मिल सकती है। खैर, क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट की बात यहां पर हम विराम देते हैं और बात कर लेते हैं
1: जी
0: भारतीय
1: हाँ,
0: टेबल टेनिस की।
1: पहले दर्पण मैं आपको बता देती हूँ एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप के बारे में। ये जो आयोजन है, प्रतियोगिता है, इसका आयोजन 16-17 जुलाई 2026 को अम्मान जॉर्डन में किया गया है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में लगभग 20 देशों के कुल 174 जूडोकाओं ने हिस्सा लिया है। वहीं अगर भारतीय कैडेट जूडो दल के शानदार प्रदर्शन करते हुए कई कांस्य पदक भी उन्होंने जीते हैं, जिनमें जेनी चानम्बम और दिव्या मकवाना का उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा। अगर हम बात करें मेडल्स की, तो 40 किलोग्राम भार वर्ग में पुंजा चरोलिया, 48 किलोग्राम में दिव्या मकवाना, 57 किलोग्राम में जेनी चनम्बम और 62 किलोग्राम में खुशबू दरजादा ने कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 4 कांस्य पदक भारत की झोली में आ गए हैं।
0: जी, चलिए बात करते हैं अब कुश्ती की, यानी कि रेसलिंग की। रेसलिंग में रेसलिंग रैंकिंग सीरीज, जो कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में खेली जा रही है, वहां पर भारतीय महिलाओं का कैसा प्रदर्शन रहा है, उस पर आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले 53 किलोग्राम भार वर्ग में अंतिम पहुंच गई हैं फाइनल में। उन्होंने चीन की प्रतिद्वंद्वी जिन जांग को 7-5 से हराकर सेमीफाइनल में मुकाबले में जीत हासिल की और फाइनल में जगह हासिल की है। वहीं 57 किलोग्राम भार वर्ग में नेहा शर्मा ने 4-0 से ब्राजील की गिलिया पेनाल्बर को हराया है और वो भी एक बार फिर फाइनल में पहुंच गई हैं। तो वहीं काजल ने तो कमाल का प्रदर्शन करते हुए 9-0 से 76 किलोग्राम भार वर्ग में एंजल एलेक्जेंड्रा को हराया है। एंजल एलेक्जेंड्रा, जो कि रोमानिया से आती हैं, और ये तीनों ही भारतीय खिलाड़ी अब पहुंच गए हैं फाइनल में।
1: और सेमीफाइनल में 55 किलोग्राम वर्ग में भारत ने रजत पदक जीता है, लेकिन फाइनल में यूक्रेन की नतालिया से पॉइंट्स के आधार पर हारने के बाद ये हमें यहाँ पर सिल्वर से ही मुकाबला करना पड़ा।
0: कोच विजेंद्र दहिया का क्या कहना है इस पर, आइए सुनते हैं।
2: 59 में नेहा सांगवान ने उम्मीद के मुताबिक ही बढ़िया कुश्तियाँ लड़ी और फाइनल में अमेरिकन पहलवान को हराया। मामला तो नजदीकी था, लेकिन टफ मामला था। 6 मिनट तक काफी जद्दोजहद के बाद आखिर में गोल्ड मेडल जीता। तो इसे नेहा सांगवान भी कम उम्र की है, इन फ्यूचर वो कभी 57 में या 62 में जाएगी तो उसके लिए अच्छी बात है। और 62 किलो में हमारी दो पहलवान पार्टिसिपेट करी थी, दोनों का सेमीफाइनल में कुश्ती हुई, मानसी और जो एशियन गेम के लिए सिलेक्ट है, और सविता जो एशियन गेम में सेकंड आई थी एशियन गेम की ट्रायल में। दोनों की कुश्ती हुई, मानसी जीत गई, लेकिन मानसी को थोड़ा इंजरी हो गई थी। हमने एशियन गेम्स की और सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी को देखते हुए ना मानसी को फाइनल कुश्ती खेलने से डॉक्टर्स की से और हमने कोचेस की मीटिंग ली, हमने मना कर दिया।
0: चलिए और अब नजर डालते हैं टेबल टेनिस पर। यूटीटी अल्टीमेट टेबल टेनिस के 7वें सीजन में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं।
1: भारत की प्रमुख प्रोफेशनल टेबल टेनिस लीग अल्टीमेट टेबल टेनिस यानी यूटीटी के 7वें सीजन में प्लेऑफ की दौड़ बेहद रोमांचक हो गई है। गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में खेले गए शुक्रवार के मुकाबलों में गोवा चैलेंजर्स और कोलकाता थंडर ब्लेड्स ने महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। दिन के दूसरे मुकाबले में दो बार की चैंपियन गोवा चैलेंजर्स ने दिल्ली को एक तरफा अंदाज में 12-3 से पराजित किया। यह इस सीजन में 5 मैचों के प्रारूप में सबसे बड़े जीत के अंतर की बराबरी है। इस जीत के साथ गोवा ने अंक तालिका में अपनी शीर्ष स्थिति और मजबूत कर ली है। गोवा की जीत के नायक रहे अल्वारो रॉबिल्स, अभिनंद पीबी, सिंड्रेला दास और बर्नाडेट स्नोजोक्स, जिन्होंने अपने अपने एकल मुकाबले जीते। मिश्रित युगल में भी रॉबलेस और सिंड्रेला की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की जोड़ी को मात दी। भारतीय खिलाड़ी अभिनंद पीबी ने लगातार अपना अपराजय अभियान जारी रखा और उन्हें प्लेयर ऑफ द टाई तथा इंडियन प्लेयर ऑफ द टाई चुना गया। इससे पहले खेले गए मुकाबले में कोलकाता थंडर ब्लेड्स ने अहमदाबाद पाइपर्स को 9-6 से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को मजबूत किया। मुकाबले की सबसे बड़ी उपलब्धि रही भारतीय खिलाड़ी अहिका मुखर्जी का प्रदर्शन, जिन्होंने ऑस्ट्रिया की स्टार खिलाड़ी सोफिया

0: था पोल्काकोवा को हराकर इस सीजन में उन्हें पहली बार शिकस्त दी। शुरुआत में अहमदाबाद ने बढ़त बनाई थी, लेकिन कोलकाता ने मिश्रित युगल में शानदार वापसी की। इसके बाद रोमानिया के एडवार्क इओनेस्कू ने दमदार जीत दर्ज कर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। निर्णायक मुकाबले में अहिका ने पहला गेम गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की और टीम को महत्वपूर्ण अंक दिलाए।
1: जी, अहिका मुखर्जी का ये प्रदर्शन सराहनीय इसलिए भी है क्योंकि आपको याद दिला दें, एशियन गेम्स के स्क्वाड में उनको इस बार शामिल नहीं किया गया, जबकि पिछली बार उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल सुतीर्ता मुखर्जी के साथ वुमेन्स डबल में हासिल किया था। तो कहीं ना कहीं शी हैड अ पॉइंट टू प्रूव एंड शी प्रूव्ड अ पॉइंट। खैर, यूटीटी पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन इस वक्त बात कर लेते हैं फीफा विश्व कप 2026 पर। जी हाँ, फीफा विश्व कप 2026 में फाइनल में कौन कौन सी टीम खेलेगी, इसका फैसला हो चुका है कई दिन पहले। आप जानते ही हैं कि स्पेन और अर्जेंटीना आमने सामने होने वाली हैं खिताबी भिड़ंत के लिए, लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल का मुकाबला में हारी टीमें थर्ड पोजीशन मैच के लिए खेलेंगी, थर्ड पोजीशन प्लेऑफ के लिए खेलेंगी। ये मुकाबला होने वाला है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, यानी दोनों लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट के बीच। अमूमन तौर पर ब्रॉन्ज मेडल के लिए या तीसरी पोजीशन के लिए ये मुकाबला खेला जाता है, साख के लिए मुकाबला खेला जाता है, लेकिन दोनों ही टीमें फ्रांस और इंग्लैंड के मापदंड इतने ऊंचे हैं कि दोनों ही टीमों ने कहा कि सेमीफाइनल की जो हार है उससे हमारा दिल इतना टूटा हुआ है कि हमारा तो मन ही नहीं है इस मुकाबले को खेलने का, लेकिन फिर भी बतौर प्रोफेशनल हम जरूर मैदान में उतरेंगे अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ऐसा ही कुछ कह रहे हैं इंग्लैंड के कोच और मैनेजर थॉमस टुशेल।
2: नोबडी ऑफ दीस प्लेयर्स, नोबडी ऑफ फ्रेंच प्लेयर्स वांट्स टू प्ले फॉर दिस मैच, दे वांट टू प्ले इन द फाइनल, वी गिव एवरीथिंग टू बी इन द फाइनल, एवरीवन प्लेस टू विन द वर्ल्ड कप, बट इट इज व्हाट इट इज, सो बट वी विल डू इट प्रोफेशनली ऑफ कोर्स, एंड आई डिडंट से अ लॉट, नथिंग व्हाट यू से इन द ड्रेसिंग रूम कैन टेक अवे द पेन और द डिसअपॉइंटमेंट, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दिस मोमेंट, सो आई सेड लेट्स टेक इट विद रिस्पेक्ट, लेट्स टेक इट विद लेट्स डाइजेस्ट इट फर्स्ट, एक्सेप्ट दैट वी gave everything, that is a big part in a defeat, did we do everything to arrive in this semi-final, did we give everything 100%, we did, and I think the fans and will realize that and do realize that. The second of all is to bounce back, to react.
1: Ji haan, bounce back karna hai, react karna hai. ये आखिरी मुकाबला होने वाला है। ये वही कोच है जिनकी अगुवाई में 2018 का विश्व कप जीता था फ्रांस ने, 2022 के फाइनल में अंतिम क्षण तक उम्मीदें बरकरार थी, लेकिन पेनल्टी किक्स में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा था, और अब इस बार इन्हीं की अगुवाई में सेमीफाइनल तक पहुंचा फ्रांस। तो कल अपने कोच जिनका यह आखिरी मुकाबला होने वाला है उनकी विदाई के विदाई फ्रांस के खिलाड़ी करना चाहेंगे एक अच्छे परिणाम के साथ, तो इसलिए मुकाबला देखने वाला होगा। देखने वाला यह भी होगा कि भारतीय एथलीट्स कॉमनवेल्थ गेम्स में इस साल किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में हम सबसे पहले बातचीत करने वाले हैं लॉन बॉल्स की, एक नया खेल, नायाब खेल, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को अच्छे से राज आया है, क्योंकि याद दिलाते हैं आपको पिछले संस्करण में भारतीय पुरुष टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया था और भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, और इस बार भी दोनों से ही उम्मीदें हैं कि अच्छा प्रदर्शन ये दोनों ही टीमें करेंगी। भारतीय पुरुष टीम में होने वाले हैं नवनीत।
3: Hi, I'm Navneet Singh. I'll be representing India at the upcoming 2026 Commonwealth Games playing the sport lawn bowls. I'm really excited because the last time we got the silver medal for the country, and hopefully this year we're going to aim for the gold medal, and we're working hard for it and very excited, a little nervous as well. So let's hope for the best and we'll give 100% for that.
1: जी हाँ, नवनीत तो पूरी तरह तैयार है, तो वहीं दिनेश भी पूरी तरह से इस बार अपने हौसले को जुटाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उतरने वाले हैं। वो बताते हैं कि कैसे 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि नई दिल्ली में हुए थे, वो पहली बार इस विश्व स्तरीय मंच पर उतरे थे और उस वक्त वो अच्छे खासे नर्वस थे, लेकिन इस बार वो अनुभव लेकर आ रहे हैं।
4: मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं लॉन बॉल का प्लेयर हूं, और मैं आने वाले 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो में भारत टीम का प्रतिनिधित्व करने वाला। शुरू में जब हमने 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स खेला

0: मतलब बिल्कुल कहें तो 1-1.5 साल की हमारी प्रैक्टिस थी, पूरी तरह से हम नहीं समझ पाए थे। तो लगातार अभी मैंने 4 बार खेला, पिछला बार हमने सिल्वर मेडल भी जीता, लड़कियों में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। तो 4 कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने के बाद
1: मैडाना
0: बहुत
1: नाइनमन
0: सारे
1: से, मैडाना
0: एक्सपीरियंस,
1: नाइनमन
0: बहुत
1: से
0: सारे
1: किया
0: जो
1: है। मैं आसाम से
0: रणनीतियां
1: हूँ, आप
0: होती
1: मुझे
0: हैं
1: बताते हुए
0: दूसरे
1: अच्छा लग रहा
0: कंट्रीज
1: है
0: की,
1: कि
0: वो
1: मैं
0: सारी हमें
1: इंडिया
0: समझ में आती
1: का फर्स्ट वुमेन हूँ, अर्जुन अवार्डी। मैडाना नाइनमन से किया है, मैं आसाम से हूँ, आप मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि मैं इंडिया का फर्स्ट वुमेन हूँ, अर्जुन अवार्डी, वो भी लॉन बॉल से।

0: का प्रतिनिधित्व करते हुए
1: हाँ, मेरा
0: दिखेंगे।
1: नाम
0: और
1: पिंकी
0: दूसरी
1: है और
0: तरफ
1: मैं लॉन।
0: पिंकी भी
1: हाँ,
0: नजर
1: मेरा नाम
0: आएंगी
1: पिंकी।
0: इस बार भारतीय महिला टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए।
1: हाँ, मेरा नाम पिंकी है और मैं लॉन बॉल खेलती हूँ, और हम लोग जा रहे हैं टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने लॉन बॉल में, कॉमनवेल्थ खेलने ग्लासगो में। 2023 बनाई थी, क्रिएट की थी, हम इसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे किसी न किसी तरह, किसी भी मेडल पे, पोडियम के लिए जरूर आएंगे कि हम अपना देश को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी लोगों ने हमारे से एक्सपेक्टेशन रखी है, उस एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल कर पाए।
0: इसके अलावा आपको बता दें कि महिलाओं की टीम में रूपा रानी तिर्की भी शामिल हैं और पुरुषों की टीम में पुतुल सोनोवाल भी शामिल हैं। तो लॉन बॉल्स की इस टीम को हमारी बधाई। चलते चलते अब बातचीत कर लेते हैं क्रिकेट की दुनिया से आई एक ऐसी खबर से जिसने शायद भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को और विश्व भर के क्रिकेट प्रशंसकों के दिल को थोड़ा सा निराश मायूस किया, क्योंकि महानतम खिलाड़ियों में गिनती जिनकी होती है सर गैरी सोबर्स, वो कल स्वर्ग से धार गए। 89 साल के गैरी सोबर्स अपनी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए जाने जाते थे, महानतम ऑलराउंडर्स में इनका नाम शुमार है। टेस्ट क्रिकेट में 8,000 से ऊपर रन है, साथ के साथ 235 इनकी विकेटें हैं। कहा जाता है कि फास्ट बॉलिंग भी किया करते थे, स्पिन बॉलिंग भी किया करते थे, और सबसे बड़ी बात, विश्व क्रिकेट में कभी भी एक ओवर में 6 छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है वो सबसे पहले सर गारफील्ड सोबर्स ने बनाया था 1968 में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए ग्लमॉर्गन के मैल्कम नाश की गेंदबाजी पर। आइए उसकी कुछ झलकियां सुनते हैं।
2: And he's done it! He's done it! And my goodness, it's gone way down to Swansea.
0: जी हाँ, तो ये थे गैरी सोबर्स और मशहूर क्रिकेट राइटर मार्क निकलस कहते हैं कि बल्ला मानो उनके शरीर का हिस्सा सा था, गेंद उनकी बंदूक की तरह निकलती थी, उंगलियां कि जब वो स्पिन करते थे तो औसत से बेहतर थे, लेकिन जब कलाई से स्पिन करते थे तो और भी बेहतर थे, कैच ऐसे पकड़ते थे जैसे उनके बाएं हाथ का खेल हो और मैदान पर किसी शिकारी सी फील्डिंग करते थे। तो गैरी सोबर्स को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि समय हो चुका है
1: और
0: आपसे विदा
1: बिल्कुल,
0: लेने
1: और
0: का।
1: ये हमें एक सीख देते हैं, खेल की इंसान जो प्रदर्शन करता है, जो खेलता है, वो कहीं भी चला जाए पर उसकी यादें और उसका जो प्रदर्शन है वो हमेशा हमारे दिलों में रहता है। तो अब घड़ी हमें इशारा कर रही है कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज के साथ, मुझे रेनू को।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
4: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग

0: आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछा स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को परात 41 डिग्री चया मगावर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The 72nd National Film Awards were announced today. The Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. The award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book. In the non-feature film category, Shivpal Singh Kang will get the Best Music Direction Award for Parat 41 Degree Chaya Magavar. Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best Short Film is Hamsafar in Marathi. The Best Non-Feature Film is Bhangar, directed by Sumira Roy. India's first privately developed orbital rocket Vikram-1 under Mission Agman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. Our correspondent reports that the milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephone call. Mr. Modi said the successful launch of Vikram-1 under Mission Agman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector.
2: Dhawan, Bharat aur puri team, bahut bahut badhai. Do kaam kiye hai. Ek to aasman mein manaye paudhe gaad diye hai aur dusra zameen mein bhi us roots ko aapne majbooti di hai. जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही साथ मेहनत की। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh also congratulated Team Skyroot on the successful launch of Vikram 1. The minister said the mission marks a major milestone for India's expanding private space sector. In Gujarat, 8 people were killed and 10 others injured today after a massive fire broke out at a firecracker manufacturing and processing unit on the Ramolgathad Road in Ahmedabad. Our correspondent reports that the Rapid Action Force personnel rushed to the site immediately, retrieved 8 bodies and rescued the trapped and injured workers from the blazing structures. The injured have been admitted to nearby hospitals for treatment. Several firefighting vehicles also rushed to the spot and brought the blaze under control. Cooling operations are currently underway. In West Bengal, Union Home Minister Amit Shah today visited the Border Security Force camp at Jumagach in Siliguri and interacted with BSF personnel. He also planted trees and attended Prahari Sammelan. Discussions were held on strengthening border areas, birth and death registration and the law and order situation. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, has said that grievance redressal should go beyond the disposal of complaints and focus on addressing the concerns and aspirations of pensioners. Dr. Singh added that pension-related disputes should be resolved administratively so that pensioners are not forced to approach courts. He made these remarks while addressing the second national workshop on pension litigation in New Delhi today. Dr. Singh informed that the Department of Pension and Pensioners' Welfare has introduced several citizen-centric reforms and has digitized pension services through online systems to improve transparency and efficiency. 7 people were killed and 51 others injured in overnight Ukrainian drone attacks on Russia. Russian officials today said 2 sprawling warehouses of Russia's major online retailer were hit by Ukrainian drones overnight, one in the town of Kotovsk in Tambov region and another in Elektrostal near Moscow. In FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in the third-place playoff match at the Miami Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.
3: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के इस अंक में महाप्रभु जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की प्रथम हाइड्रोजन रेलगाड़ी का शुभारंभ और पुस्तक लोकार्पण समारोह। 16 जुलाई गुरुवार को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर हौज खास नई दिल्ली स्थित जगन्नाथ मंदिर से एक भव्य रथ यात्रा निकाली गई। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा इस रथ यात्रा का सजीव प्रसारण किया गया। प्रस्तुत है उसकी एक झलक।
4: भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार उमड़ रही है, वो बस नजदीक पहुंचना चाहते हैं रथ के। और यहाँ जो इस समय घंट ध्वनि है, यहाँ पर जो शंख ध्वनि है जय जगन्नाथ की, उससे हमें ये आभास हो रहा है कि शायद मंदिर के अंदर इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि अब गर्भगृह से कुछ ही समय में प्रभु विग्रह, तीनों ठाकुर जी के विग्रह जो हैं वो बाहर लाए जाएंगे और कर्मकांड की जो पद्धति करते हैं वो भी पूरी तरह से पुजारी जी होते हैं, वो समर्पित हैं ठाकुर जी को और पूरी तरह से पालन करते हुए, विधि विधान का पालन करते हुए, रीति का पालन करते हुए वो विग्रह को लेकर आते हैं। साग्रह उनसे अनुरोध करते हैं प्रभु से कि आइए प्रभु, अब अपने रथ पर आरूढ़ होइए। और रथारूढ़ होते ही प्रभु का दर्शन यहाँ भक्तजनों को मिलेगा, जो मंदिर के बाहर इस समय पंक्तिबद्ध तरीके से कुछ समय पहले तक थे, लेकिन अब भीड़ में जिसे जो स्थान मिल रहा है वो बस रथ की एक झलक देखना चाहता है। मंत्रोच्चारण यहाँ पर शुरू हो चुका है और इस बीच की कुछ ही समय में मंदिर से बाहर आएंगे और इस तरह से भक्त वत्सल प्रभु भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देंगे और जगन्नाथ जी के जो उनके विशाल काले नयन अपलक भक्तों को निहारते हुए वो मंत्र मुग्ध कर देते हैं हर किसी को। जब कोई भी भक्त

0: 17 जुलाई शुक्रवार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में हाइड्रोजन से चलने वाली प्रथम ट्रेन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा,
1: जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर हम रेलवे के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से बने थे, 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी, और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे, और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है, और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है वहां बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा, एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: 15 जुलाई बुधवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सभागार में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के अवसर पर डॉक्टर ई बाला गुरु स्वामी द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में पुस्तकों के लेखक प्रोफेसर ई बाला गुरु स्वामी ने बताया,
2: बेसिकली द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, द डे डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू सेलिब्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ skill development among youth in the world. So that is the day celebrated 15th July. In that celebration is being organized by an organization called World Academic Higher Education Development, and they are doing it, releasing my 2 books. First book is Mantras for Success and Happiness, and the second book is Mantras for Progressive Teachers, for both school and as well as college teachers. Basically, I am an electrical engineer, written about 49 books on computer science. I completed all these books, now realized I have traveled all over India, all universities, I talk to the people. I find one important gap, there is no commitment of teachers in teaching learning process. No, the teachers' commitment is lacking there. Second, I found the people are always running for the success, not the happiness. They want to have more money, but they are not worried about the quality of life and success of their life, the happiness in their life, you know. So that's what I thought I should write a book, a different concept. I wrote a first book, I wrote a mandras for success and happiness. And the happiness is more important. The youth today, they feel only success important, but the happiness is equally important. Happy people are successful people, but all success people are not happy people. People are having huge money, huge wealth, all that, they are not happy. At the same time, poor people, no, have little income, are happy at the end of the day, no? So this book contains more than 200 statements, mandras, you know, what is important to make your life success along with the happiness, you know? So that is the most important concept of my book, is how to live happily and also be successful. The second book is teaching learning process. I am basically a teacher. I have taught in number of schools, universities, colleges, all that. I found today the teachers lack commitment. And today's world, you know, you have a lot of AI, you know, technology, computer science, all that. The teaching learning process totally changed. It's not the old type of teaching doesn't work. So now we have a teacher has to play a different role. You have to be a motivator. You have to be a counselor. You know, you have to be a mentor. You know? Basically, what is important today teaching, you know, we have to make our students creative thinkers, innovators, competent. So my book, Mandara was for Prague teachers, deals about all that. How to make students curious enough, how to make students creative thinkers, how to make students courageous enough, how to make them work with together. Today you can't achieve success alone. You have to work with the people, no? You have to collaborate with the people, collaborate with the companies, collaborate with the nations. So how to work with the people. So these are all the concepts which I have explained in various mandaras. It's also another, they teach, this book is good for both teachers in the schools as well as colleges, universities.
0: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज। अभी आप सुन रहे थे चहल पहल। शाम के 6:20 होने को हैं। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
4: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। भारतस्य प्रथमं निजक्षेत्रे विकसितं कक्षीय प्रक्षेपणयानं विक्रम 1 श्रीहरिकोटा स्थितात् सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्रात् प्रणोदन प्रक्रियां संपूर्य सफलताम् अगात्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्कायरूट वैज्ञानिक वृन्दः श्लाघितः। सहैव विक्रम 1 इत्यस्य साफल्यं भारतस्य अंतरिक्ष यात्रायाः ऐतिहासिकः क्षणः इति उद्घोषितम्। आतंकवादं प्रति भारतस्य शून्य सहिष्णुता न केवलं काचन उक्तिः अपितु कश्चन दृढः संकल्पः इति रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अवोचत्। गगनगर्जनं पुरस्सरं वृष्टेः कारणात् उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम राज्येषु श्वः यावत् अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना। अपि च टोक्यो नगर्यां जापान ओपन प्रतियोगितायाः महिला एकल वर्गस्य अंतिम द्वंद्वे ससंभ्रमं प्रविष्टा पीवी सिंधुः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य प्रथमं निज विकसितं कक्षीयान्तरिक्षयानं विक्रम प्रथमं अंतिम प्रणोदन प्रक्रियां संपूर्य कक्षायाम् उपग्रहान् सफलरूपेण प्रवेश्य स्वकक्षां प्राप्नोत्। अस्य यानस्य प्रक्षेपणम् अद्य मध्याह्ने 5:25 आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटायाः सतीश धवन अन्तरिक्षकेन्द्रात् समजायत।
5: 2-1-0
6: And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle.

0: कमल
1: विक्रम वन ने अपनी उड़ान भरी प्रथम चरण का प्रज्वलन।
2: अस्माकं वार्ताहरेण विज्ञापितं यत् अनेन ऐतिहासिक पदक्षेपेण भारतं निजकक्षा प्रक्षेपण क्षमतां प्राप्तवत्सु विश्वस्य देशेषु तृतीयान्यतमो संजातः। मिशन आगमन इत्याख्येन अभियानेन विकसितं एतदन्तरिक्षयानं लघु उपग्रहाणां कृते अल्पव्ययुक्तं प्रक्षेपणसेवायै वर्तते। भारतीय अंतरिक्ष उपक्रमस्य जनकः डॉक्टर विक्रम साराभाई इत्याख्यस्य नामना व्यपदिष्टस्य अस्य विक्रम वन यानस्य रचनायां त्रिस्तरीय दृढ़ प्रणोदक चरणानि सहैव अमोघ कक्षा प्रवेशाय रमण इत्याख्यः देवेन्द्रन गंत्रं प्रयुक्तमस्ति। इदं यानं उपग्रहान् पृथिव्याः निम्न कक्षायां स्थापयितुं पूर्णतया सामर्थ्यं भजते। अंतरिक्ष कक्षायाम् अस्य सफल प्रवेशात् परं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दूरभाष माध्यमेन स्काईरूट एरोस्पेस दलस्य वैज्ञानिकानां च अभिनन्दनं व्याहृतवान्। श्री मोदी न्यगादीत् यत् विक्रम वन यानस्य अयं सफलोत्कर्षः अंतरिक्ष क्षेत्रे देशस्य आत्मनिर्भरता यात्रायां कश्चन प्रमुखः कीर्तिस्तंभो वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् इयम् ऐतिहासिकी उपलब्धिः देशस्य यूनः नवीनोन्मेषाय अग्रे आगन्तुं प्रेरयिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अब्रवीत् यत् भारतस्य आतंकवादं विरुध्य असहिष्णुता न केवलं वक्तव्यं नास्ति अपितु कार्याचरणस्य कश्चन दृढसंकल्पो वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां फॉरेस्ट फर्स्ट कॉन्क्लेव इत्यत्र संबोधयन् श्री सिंहः स्पष्टीकृतवान् यत् भारतम् आतंकवादिनः न केवलं स्वसीम्नि प्रहरिष्यति अपितु आवश्यकतानुसारं तेषाम् आश्रयेषु प्रविश्य अपि दण्डयिष्यति। सः अभाषत यत् सिन्दूराभियानावधौ समग्रं विश्वम् अस्य साक्षी अभवत् यत् तदभियानं तांत्रिकयुद्धपद्धत्याः कञ्चन उत्कृष्टम् उदाहरणम् आसीत्।
3: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
2: मंत्री सविशेषम प्रख्यापितवान यत् विगतेषु द्वादशसु वर्षेषु नरेन्द्र मोदी सर्वकारेण रक्षाक्षेत्रस्य पुनरुद्धारः सुदृढीकरणं च स्वस्य शीर्ष प्राथमिकतासु स्वीकृतम्। श्री सिंहः अकथयत् यत् सर्वकारेण न केवलं भारतस्य रक्षाक्षेत्रं सुदृढीकर्तुं संकल्पः धृतः अपितु रक्षा आवश्यकतानां पूर्तये देशस्य आयात निर्भरतां न्यूनीकर्तुमपि दृढः प्रयासो विहितः।
3: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
2: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। बहुभ्यः दिवसेभ्यः नवदिल्ल्याः जंतर मंतर प्रांगणे अनशने निरतः सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुकः ह्यः रात्रौ आवश्यक चिकित्सकीय सेवायै सर्वकारीय चिकित्सालयं प्रति नीतः। नवदिल्ल्याः आरक्षी उपायुक्तः सचिन शर्मा अवोचत् यत् श्री वांगचुक इत्यस्य उत्तरोत्तरं क्षीयमाणं स्वास्थ्यं विचिन्त्य चिकित्सकानां विशेषज्ञ परामर्शेन तथा दिल्ली उच्च न्यायालयस्य आदेशानुपालनार्थं च सः चिकित्सालयं प्रति स्थानान्तरितः। तस्मिन्नेव समये सफदरजंग चिकित्सालयस्य मुख्याधीक्षिका डॉ चारु बम्बा संसूचयामास यत् श्री वांगचुकः संप्रति निरंतर चिकित्सकीय निरीक्षणे अस्ति तथा तस्मै समुचितः उपचारः प्रदीयते। डॉक्टर बम्बा इदमपि विशदीकृतवती यत् सः पूर्णरूपेण सचेतनो वर्तते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः यावत् उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम राज्येषु अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता। ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय छत्तीसगढ़ उत्तराखंड राज्येषु अपि अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागस्यास्य आधिकारिक विवरणानुसारं अद्य बिहार मध्य प्रदेश पूर्वीय उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश झारखंड कर्नाटक केरल माहे ओडिशा राज्येषु तथा समस्त पूर्वोत्तर प्रांतेषु अतिवृष्टिः संभाव्यते। अनेनैव सह श्वः यावत् तटीय आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा क्षेत्रेषु वज्रपात मेघ गर्जन पुरस्सरं तीव्र झंझावातस्य अपि महती आशंका वर्तते। तत्रैव उत्तर भारते दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब प्रांतेषु अद्य नागरिकाः तीव्र उष्ण आद्र वातावरणेन नितरां संतप्ताः भविष्यन्ति। टोक्यो नगर्यां जापान ओपन प्रतियोगितायाः महिला एकल वर्गस्य उपांत्य द्वंद्वं विजित्य द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री भारतस्य सुप्रसिद्धा क्रीडिका पीवी सिंधुः अद्य अंतिम चरणे स्वस्थानं सुरक्षितं अकरोत्। तस्याः प्रतिद्वंद्वी चीन देशीया चेन यू फेई प्रतियोगितायाः द्वितीय चक्रे अकस्मात् अस्वस्थता कारणात् क्रीडांगणं परित्यक्तवती येन सिंधु अयाचितं विजयम् अवाप्य अंतिम चरणं प्रति सोत्साहं प्रातिष्ठत। अस्मिन् द्वंद्वे सिंधुः प्रथमं चक्रम् 21:19 इत्यांकांतरालेन विजित्य द्वितीय चक्रे अपि 15:10 इति अंकैः अग्रे धावन्ती आसीत् यदा चीन देशीया क्रीडिका स्पर्धायै असमर्था संजाता। जापान ओपन उपाधिं समलंकर्तुं बद्ध परिकरा पीवी सिंधुः श्वः अंतिम चरणे जापान देशस्य अकाने यामाचुची इत्यनया सह क्रीडिष्यति इति वार्ताः।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और जैसा कि हमारे बहन भाई जानते हैं, आज शनिवार है तो उनको सुनने को मिलेगा उन्हीं की पसंद पर लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले अपने बहन भाइयों को बता दें कि आज 18 जुलाई है और आज के दिन मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिन दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्मदिन पर विश्व शांति, मानवाधिकार और सामुदायिक सेवा के उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है।
1: बिल्कुल शशि भाई, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2009 में 18 जुलाई को इस दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता दी। पहला आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र मंडेला दिवस 18 जुलाई 2010 को नेल्सन मंडेला के 92वें जन्मदिन पर मनाया गया था। इस पहल का उद्देश्य रंग भेद और सामाजिक अन्याय के खिलाफ नेल्सन मंडेला के 67 वर्षों के संघर्ष को याद करना है।
0: बिल्कुल, नेल्सन मंडेला ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने आम लोगों की भलाई के लिए ना सिर्फ काम किया बल्कि उसकी कीमत भी चुकाई। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा 27 साल कैद में बिताए। कैद के

0: दौरान वे अधिकांश समय केप टाउन के किनारे बसे कुख्यात रॉबिन द्वीप बंदी गृह में रहे थे।
1: बिल्कुल, और इस दिन का उद्देश्य समाज की भलाई के लिए लोग 67 मिनट दान करते हैं, जो नेल्सन मंडेला के 67 साल देश और मानवता की सेवा में बिताए गए वर्षों का प्रतीक है। ये दिन उन लोगों को गरीबों की मदद करने, शिक्षा को बढ़ावा देने और अपने स्थानीय समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल, तो बहन भाइयों, ये तो बात रही अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस की। और बहन भाइयों, आप चाहते हैं कि आपका जो बिजली का बिल है वो कम आए और आपको बिजली कटौती से राहत मिले, तो आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके तहत 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से रूफटॉप सोलर प्लांट परियोजना के माध्यम से लगभग 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा प्रदान की जाएगी और उन्हें हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
1: बिल्कुल शशि भाई, और इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए भारतीय नागरिकता, वैध मकान का स्वामित्व और छत पर सौर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त जगह होना जरूरी है। इसके अलावा वैध बिजली कनेक्शन, और ये शर्त भी है कि आवेदक ने पहले सरकार से किसी और प्रकार की सौर पैनल सब्सिडी का लाभ ना उठाया हो।
0: तो जो भी हमारे बहन भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए इस योजना के तहत पंजीकरण करना बहुत ही सुव्यवस्थित और सरल है। आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट registration.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। पात्रता सत्यापित होने और आवेदक के लिए योजना स्वीकृत होने के बाद सरकार द्वारा पंजीकृत विक्रेताओं द्वारा सौर पैनल स्थापित किए जाते हैं और सब्सिडी 30 दिनों के भीतर आवेदक के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। तो इस तरह से बहन भाइयों, आप भी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो नीलम बहन, ये तो जानकारी रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
2: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा।
0: अरोड़ा साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज मनसाराम चौहान जी को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा भी सुनेंगे मेरे साथ।
0: बिल्कुल, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो, हाँ जी शशि भाई, राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं चंद्रपाल सिंह जाखड़ बोल रहा, नवीपुर मुरादनगर गाजियाबाद से।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज मनसाराम को सुनवा दो जी, रागनी सुनाई थी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: दो चार नाम है जी बस।
0: हाँ बोल दीजिए।
3: मास्टर विनोद और धर्मपाल, ओमदत त्यागी और बबली त्यागी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
4: मैं सोनू गांव दौर जिला नंदा देवला से बोल रहा हूँ।
0: सोनू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: आज सुनना चाहिए मनसाराम चौहान को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: देख दावा।
0: हाँ बोल दीजिए।
4: मेरे पिताजी मन वर्मा से बिरमा में फूलवती छोटा मोटा। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
5: शशि भैया नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: गांव चौधरी वास से राजू अग्रवाल।
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज मनसाराम चौहान को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: नाम है जी केशव दास, विवेक प्रयाग प्रियंश।
0: हेलो ग्राम संसार।
6: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: मैं हरि सिंह सैनी, पशुआ नंगला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी।
0: हरि सिंह जी, किस कलाकार को सुनना चाहोगे आज?
6: मनसाराम चौहान को सुनवा दें।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: कुछ नाम है जी, साकेत मुकेश, बलेश डागीता, और कुछ पोती पोता है जी, नीतीश, हेमपाल, पुष्पंदर, जीतू, ललित, चंदन, भूमेश, छवि, निशा, कंचन, दीना, और रिश्तेदार है कुछ, संजीव, ज्योति, शिवचरण, मनोहर सिंह, रे रे।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
7: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: सर जी, मैं ब्रजपाल गाँव रामसावाड़ा जिला सहारनपुर से बोल रहा हूँ।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: मनसाराम चौहान को सुना दीजिए।
0: जरूर सुनवाएंगे।
7: एक नाम लूंगा सर जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
7: हमारे बड़े भैया ने डेढ़ से बसे सर बटार राम राम जी।

0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार,
1: हाँ नमस्कार सर जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ सर जी।
0: राम शरण जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज सर मनसाराम चौहान जी को सुनना चाहेंगे सर। कुछ
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: मित्र हैं सर,
0: हाँ नाम बोल दीजिए मित्रों के।
1: ब्रजेंद्र विश्वकर्मा हैं और नरसिंह राजपूत जी हैं, सुमन सिंह राजपूत जी, मणिराम पाल जी हैं सर, सभी के साथ सुनना चाहेंगे सर।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर मंशा राम चौहान से ये उपदेश।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: सर दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा बोल रहा हूँ सर जी।
0: मेहरा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: महेंद्र शर्मा जी को सुना देना सर जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: बच्चों के नाम है सर,
0: हाँ बोल दीजिए।
1: कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
2: जी नमस्कार सर जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: जी मैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ, बन्ने बुजुर्ग तहसील कलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। जी
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: महेंद्र शर्मा जी के।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो शशि भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, विकासपुरी गांव बराना जिला बुलंदशहर।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: महेंद्र शर्मा को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: और मेरे साथ आरती भारती स्वाति मिसेज कविता देवी।
0: हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्ते जी, मैं खजान सिंह जौहरीपुर से बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: महेंद्र शर्मा जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: और कुछ नाम है जी?
0: जी
4: खजान सिंह, रामपति, अजय कुमार, चंद्रकांता, आरव, मोहन, विद्यान।
0: हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: सुरेश चौहान जी बोल रहे हैं, नजफगढ़ से जी।
0: सुरेश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: काफी दिन हो गए महेंद्र शर्मा जी को नहीं सुना हमने।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: छावला से राजकुमारी जी हैं, बहुत बढ़िया मित्र हैं हमारे, वो भी सुनते हैं आपका प्रोग्राम। जेके टेलर जी दौलताबाद से, और जी विजय सिंह लखेरा जी खेड़ी तलवाना से, वो भी कान लगा के सुनते हैं आपका प्रोग्राम।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
6: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: जगदीश सिंगाड़िया बोल रहा जी, दाना निशान जिला भिवानी जी।
0: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: महेंद्र शर्मा को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: जो के भी नाम है जी।
0: जी
6: राजवीर सिंधाड़िया, सतीश सिंधाड़िया, ऋतिक सिंधाड़िया, केड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर महेंद्र शर्मा से ये रागनी, किस्सा रहेगा महाभारत का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार, सचिव भाई राम राम,
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: जितंदर सोलंकी, गांव करकोरा, महाराजपुर जिला बुलंदशहर से बोल रहे हैं जी।
0: आज ये किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज सुनना चाहेंगे जी बल्ले कल्याण को।
0: जरूर सुनवाएंगे
1: नाम बोलूंगा जी,
0: जी।
1: लकी संजना अंशिका टिंकल कन्नू प्राची वीर सोलंकी, पिताजी हैं श्री मेघराज सिंह सोलंकी, माता जी हैं श्रीमती निर्मला देवी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो हेलो,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
1: अमित तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: और सुना दी बल्ले कल्याण को,
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: मेरे पिताजी महिपाल सिंह जी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।

0: नमस्ते, दिल्ली
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
0: बोल रहा हूँ सर, फिरोजपुर
1: बिल्लू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
0: से। कल्याण जी भी सुना दिया,
1: जरूर सुनवाएंगे
0: नाम नोट करो सर। जैसे
1: जी।
0: भाई बाबू भाई, हमारे नाती शांता जी, तमन्ना जी, कसंदर ठेकेदार, नमस्कार सर।
1: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
0: हेलो ग्राम संसार, नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
0: विनोद कुमार प्रजापत बोल रहा हूँ जी, गांव झोजू कला से।
1: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
0: आज जी बल्ले कल्याण जी की आवाज में सुनवा दो।
1: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
0: नमस्कार जी,
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
0: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
1: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
0: बल्ले कल्याण जी को सुनवाइए जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
0: कुछ नाम है जी,
1: हाँ बोल दीजिए।
0: जयपाल सिंह अध्यक्ष, जगदीश मोटा बादलपुर, मास्टर ब्रह्म सिंह, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, गर्व गुर्जर और आरव भाटी।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर बल्ले कल्याण से ये रागनी।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112347331 और दूसरा नंबर है 0112347332। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। 7 बजने को हैं। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरो स्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयर स्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। ये हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण

0: विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछ स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा कर बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने एक पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर चर्चा हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार कन्नड़ भाषा की पुस्तक नानीरुविदे नेमागागी नादीरुविदे नानागागी के लिए प्रदीप कुमार शेट्टी को दिया जाएगा। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कंग को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफेई को पहले गेम में हरा दिया। दूसरे गेम में चेन यूफेई की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, खेती और हमारे जो पशु हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, और जो हमारे किसान बहन भाई खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, और खेती से हमें जो उत्पादन है वो अपने समय पर ही मिलता है, जब यानी कि 3 महीने बाद कोई फसल आ रही है, 6 महीने बाद आ रही है, लेकिन पशुओं से कुछ ना कुछ उत्पाद हमें मिलता रहता है, और पशुओं का जो गोबर है वो बड़ा ही अच्छी खाद के रूप में खेतों को ताकत देता है। दुधारू पशु हमारे किसान भाइयों की आय को दोगुना करने और रोजगार अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ पशु हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन कई बार पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, और ये जो मौसम है वो वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है, तो खासकर इस मौसम में तो पशुओं की देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत तरह की बीमारियां इस मौसम में फैलती हैं।
1: बिल्कुल शशि भाई, गर्मी और बारिश का प्रकोप बढ़ते ही पशुपालकों के सामने मवेशियों की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन जाती है। और बरसात के मौसम में मुंह पका, खुरपका, गलघोटू जैसी बीमारियां ज़्यादा होने की संभावना रहती है। गाय और भैंसों को खुरपका रोग काफ़ी प्रभावित करता है। ये काफ़ी तेजी से फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। इससे प्रभावित होने वाले पशुओं में तेज बुखार के साथ साथ मुंह और खुरों पर छाले और घाव बन जाते हैं, और रोग के असर के कारण कुछ पशु स्थायी रूप से लंगड़े भी हो सकते हैं, जिस कारण पशुपालक भाइयों को आर्थिक हानि भी हो सकती है।
0: बिल्कुल, तो इस वर्षा ऋतु के मौसम में हमारे जो पशुपालक भाई हैं किस तरह से अपने पशुओं की जो पशुशाला है उसका प्रबंधन करें, चारे का और खान पान का कैसे प्रबंध

0: प्रबंधन करें, साफ सफाई का कैसे ध्यान रखें, और जो बाह्य परजीवी हैं या अंतः परजीवी हैं उनके कारण जो बीमारियां होती हैं उनसे कैसे अपने पशुओं का बचाव करें, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको जानना हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार। आप पशु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में। तो डॉक्टर राजेश कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सर।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे वर्षा ऋतु चल रही है, ऐसे में गर्मी है, उमस है, हम तो अपनी बात कह सकते हैं लेकिन पशु अपनी बात नहीं कह सकते, तो गर्मी से उमस से अपने पशुओं का हमारे जो पशुपालक भाई है कैसे बचाव करें?
1: मानसून के दौर में मनुष्यों की तरह पशुओं में भी बहुत सारे संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसमें मुख्यतया गलघोटू रोग है, लंगड़ा बुखार है, एपच है, आफरा है, न्यूमोनिया है, और इसके साथ ही अंतः और बाह्य परजीवियों से होने वाले संक्रमण है। बेहतर आवास प्रबंधन, आहार प्रबंधन और पशुओं में समय से टीकाकरण और कृमिनाशक दवाइयों के उपयोग से पशुओं में होने वाले इन संक्रमण से पशुओं को बचाया जा सकता है।
0: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले बात करते हैं पशुशाला प्रबंधन की, क्योंकि इसका प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए पशुशाला है, किसी की टपक रही है, कीचड़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पशुओं को दिक्कत होती है और बीमारियों को ये सब आकर्षित करते हैं। तो किस तरह का पशुशाला का प्रबंधन होना चाहिए ताकि पशु जो है वो आराम से रहे?
1: बारिश के पहले पशुओं की जो पशुशाला की छत है इसकी हमें मरम्मत कर देनी चाहिए, जिससे कि बरसात का पानी है वो पशुओं की पशुशाला में ना जाए, क्योंकि जब बरसात का पानी पशुओं की पशुशाला में जाएगा तो वहां पे बहुत सारे पशुओं को, मुख्यतः हम बात करते हैं जो चीचड़ियां हैं, कलनी है, ये रोग पशुओं में ज्यादा होंगे क्योंकि वहां नमी रहेगी। इसके साथ ही पशुओं के अंदर वहां पशुशाला में नमी ज्यादा होने के कारण वहां निमोनिया जैसी बीमारी है उसकी भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए पशुशाला की जो खिड़कियां हैं उनको खुली रखें और गर्मी और उमस से बचने के लिए हो सके वहां तक पंखे या पशुओं के लिए कूलर की व्यवस्था पशुशाला में करनी चाहिए। इसके साथ ही पशुशाला की साफ सफाई का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण वहां मच्छर या अन्य कोई संक्रमण नहीं हो। हमारे यहाँ जो चूना आता है, कली जिसको बोलते हैं, सफेदी बोलते हैं, उसका भी पशुशाला में छिड़काव कर सकते हैं, या फिर जहां हम पशु को रख रहे हैं ब्रश की सहायता से वहां पे चूने की हर 3 से 4 दिन के अंदर पुताई कर सकते हैं। इसी के साथ पशुशाला में जो पशु के मलमूत्र की जो निकासी है उसका भी उचित प्रबंधन होना चाहिए, और हो सके तो पशुशाला के अंदर दिन में एक बार, जैसे हम हमारे घरों में फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से वहाँ पशुशाला में फिनाइल का प्रयोग करें, जिसके कारण वहाँ पे इन परजीवी जो कोई भी इन्फेक्शन है वो पशुओं के अंदर ना रहे। और इसके साथ इस मौसम में ज़्यादा शारीरिक थकावट भी नहीं देनी चाहिए, और बार बार पशुओं को कोशिश करनी चाहिए कि धूप से बचाया जा सके, क्योंकि आप क्या है कि हुमस का टाइम है और पशु को अगर बार बार आप धूप में ले जाओगे तो उसके कारण जो उनका शरीर का शारीरिक तापमान है वो गड़बड़ होगा, जिसके कारण उनके अंदर इन्फेक्शन या संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
0: गांव में देखते हैं कि जो पशु हैं वो कीचड़ में बैठे हुए हैं, बारिश भी हो रही है, कीचड़ में अपने लतपत हुए हैं, तो क्या कुछ बीमारी होने की संभावना रहती है?
1: अगर हमारे पशु जैसे कीचड़ में बैठे हुए हैं, उससे जो सबसे महत्वपूर्ण जो बीमारी है, जैसे दुधारू पशुओं की हम बात करते हैं, तो उनके अंदर जो थनेला रोग होता है जिसको मेस्टाइटिस भी बोलते हैं, उस रोग की सबसे ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि थन है, थन के वहां कीचड़ लगेगा तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो उनके कारण थनों में संक्रमण हो जाएगा और पशुओं के अंदर थनेला रोग होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा इसमें बढ़ेगी। इसके साथ पशु ज्यादा देर तक अगर नमी में रहेगा तो उनकी जो त्वचा है वो नम पड़ जाएगी, और नम पड़ने के कारण वहां पे जो आपके चीचड़ियों का प्रभाव है या किलनी है, पिस्सू जिनको कहें, उनका भी संक्रमण वहां पे बढ़ जाएगा, और इसके साथ पशुओं के अंदर जो फफूंदी जनित जो रोग होते हैं वो भी, उनकी संभावना भी पशुओं के अंदर ज्यादा बढ़ जाएगी।
0: डॉक्टर साहब, चीचड़ी की जो समस्या है वो तो बनी रहती है पशुओं में, तो इससे कैसे निजात पा सकते हैं हमारे जो पशुपालक भाई हैं?
1: चीचड़ियों की समस्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि जो पशुशाला है उसको सूखा रखें, क्योंकि जितनी ज्यादा नमी पशुशाला में देखने को मिलेगी या रहेगी चीचड़ियों का प्रभाव उतना ही ज्यादा रहेगा। और मैं पशुपालक भाइयों को बता दूं कि अगर चीचड़ियों का प्रभाव पशुओं में ज्यादा बढ़ता है तो इससे इस समय को देखते हुए पशुओं के अंदर जो 2 महत्वपूर्ण बीमारियां आती हैं, बब्बेसियोसिस और थिलेरियोसिस, जो प्रोटोजोअन जनित बीमारियां होती हैं, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो किसान भाइयों को कोशिश ये करनी चाहिए कि चीचड़ियों से बचाव के लिए एक तो पशुशाला को सूखी रखें, चूने का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और इसके साथ ही साथ जहां भी पशु आपका बैठ रहा है या जो पशु का शरीर सीधा जमीन से नजदीक टच में आ रहा है वहां पे राख और मेलाथियन जो पाउडर आता है उस पाउडर का भी इस्तेमाल करके पशु के अंदर इस समस्या को रोका जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक और बात हमने देखी है कि जैसे पशु किसी नाली के सहारे अक्सर गांव में बंधे ही रहते हैं, तो जो पानी होता है नाली का बड़ी मधुरता के साथ पशु पीते हैं, तो कितना नुकसानदायक हो सकता है वो
1: इस
0: पानी।
1: समय सर इस तरह का जो भी पानी है वो पशु को नहीं पिलाना चाहिए। कारण है कि जो पानी हम उसके अंदर पिलाते हैं मौसम के कारण जो पैरासाइटिक जो लोड कहें हम इन्फेक्शन कहें वो पानी के अंदर ज्यादा रहता है। तो कोशिश ये करना चाहिए इस मौसम के दौरान साफ जो पानी हो हमारे घर में या जहां आप पशु को जैसे आपके घर में 5-7 पशु हैं और आपने छोटी हौद या कुछ बना रखा है पानी पिलाने के लिए तो वहां भी हर दूसरे तीसरे दिन उस पानी को निकालना चाहिए और जो हौदिया है आपकी पशु की उसमें चूने की आपको पुताई करें और साथ ही साथ चूना उसके अंदर डाल के रखना चाहिए क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा संभावना है कि पशु के अंदर ये लोड बढ़ जाएगा पैरासाइटिक का जिसके कारण पशुओं के अंदर इंडाइजेशन जिसको हम अपच बोलते हैं या दस्त या डायरिया जैसी समस्या पशु के अंदर देखने को मिलेगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, खान पान की बात करें तो किस तरह से हमारे जो पशुपालक भाई हैं खान पान का चारे का प्रबंधन पशुओं के लिए करें।
1: खास तौर पे पशुपालकों को इस मौसम में क्या है कि नमी ज्यादा है तो नमी ज्यादा है और हमारे पास हरे चारे की उपलब्धता बहुत ज्यादा है तो किसान भाइयों की ये कोशिश रहती है कि जितना ज्यादा हो सके हम पशु को हरा चारा ही खिलाएं। अगर ज्यादा से ज्यादा आप पशु को हरा चारा खिलाओगे उसमें नमी की अधिकता होने के कारण क्या रहता है पशु के अंदर डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी और पशु के अंदर डायरिया हो जाएगा। तो कोशिश पशुपालक भाइयों को ये करनी चाहिए कि जो भी पशुपालक भाई हैं वो हरा चारे खिला रहे हैं उसके साथ कम से कम उनको एक तसली या एक पराती या हम ये कहें कि 2 से 3 किलो उनको सूखा चारा जो भी आपके पास उपलब्ध है गेहूं का भूसा है वो आप पशु को जरूर दें जिसके कारण क्या है कि पशु ऊपर से पानी पिएगा और जब पशु आपका ऊपर से पानी पिएगा तो आपका स्वस्थ रहेगा और उसके अंदर जो डाइजेशन से संबंधित जो होने वाली बीमारियां हैं उनका पशु में बचाव होगा।
0: डॉक्टर साहब, अगर हम हरे चारे की बात करें इन दिनों में तो कितनी साफ सफाई की जरूरत है। हमने देखा कि कभी मक्का है, बाजरा है या ज्वार है तो कभी हमारे किसान भाई जाते हैं तो कभी वो पूरा पेड़ ही उखड़ के आ जाए, साथ में मिट्टी भी आ जाती है, तो उस समय तो उसी सफाई की जरूरत होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: पशुपालकों को बताना चाहूंगा कि जब हम कभी भी हरा चारा पशु को खिलाते हैं खास करके इस मौसम की हम बात कर रहे हैं तो कभी भी हमें जो नीचे जमीन का हिस्सा है मिट्टी जिसमें लगी है उसको पशु को नहीं खिलाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए किसान भाइयों को कि जो आपने हरा चारा खिलाया है उसको कुट्टी करके खिलाएं और कुट्टी करने के बाद भी उसको थोड़ा कोशिश करें 1 से 2 घंटे उसको थोड़ा सा धूप में सुखा लें। कारण क्या रहता है कि इस टाइम जो भी हमारा हरा चारा है उस हरे चारे के ऊपर नमी अधिकता होने के कारण जो हमारे पैरासाइट्स हैं उनके अंडों की संभावना उनके ऊपर ज्यादा बढ़ जाती है। अंडों की संभावनाएं बढ़ने के कारण वह जब हम पशु को खिलाएंगे वही हरा चारा तो पशुओं के अंदर उनके संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है।
0: बाह्य परजीवी के बारे में तो हमने बात की, जैसे आपने बताया जो चिचिड़ी के बारे में बताया था, अब अंतः परजीवी की बात कर ले तो कौन कौन से रोग बारिश के मौसम में खासकर हो जाते हैं?
1: अंतः परजीवी का ही सर जैसे ये बताया सबसे जो इस टाइम में महत्वपूर्ण जो रोग है इसके अंदर वो होता है सर अपच का इंडाइजेशन का या डायरिया होने का। तो इससे पशु को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए जैसे ही मौसम मानसून का शुरू होता है हमें हमारे पशु को डीवर्मर जिसको बोलते हैं कृमिनाशक जो होती है वो पशु को नियमित अंतराल पे देनी चाहिए। इसका टाइम होता है हर 3-3 महीने के ऊपर पशु को पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। कुछ पशुपालक भाइयों को इस चीज का भ्रम रहता है कि हमारा पशु गाभिन है तो हम ये पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देंगे क्योंकि उससे पशु में गर्भपात हो जाएगा। ऐसा मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कुछ नहीं होता। इसमें 2 साल्ट होते हैं, एक होता है एल्बेंडाजोल और एक होता है फेनबेंडाजोल। अगर किसी किसान भाई को डर लगता है कि मेरा पशु गाभिन है तो वो किसान भाई अपने पशु को फेनबेंडाजोल बोलस दे सकता है, वो पूर्णतया सेफ है जिससे उसमें पशु में किसी प्रकार की कोई संभावनाएं देखने को नहीं मिलेगी।
0: डॉक्टर साहब, वर्षा ऋतु में खास करके मुंहपका, खुरपका ये रोग भी पशुओं में होते हैं, तो इन बीमारियों से हमारे जो पशुपालक भाई अपने पशुओं को कैसे बचा सकते हैं?
1: मुंह पक्का खुर पक्का तो है ही है, इसके साथ में इस मौसम में खास तौर पे हम बात करें तो लंगड़ा बुखार और गलघोंटू बीमारियां होती हैं, इनका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इनका सर समय पूर्व जो टीकाकरण भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर करवाया जाता है, तो इसमें जून जुलाई के महीने में जो भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा एक

0: तत्वाधान में टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, जिसमें प्रत्येक पशुपालक को अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। और जो रही बात खुरपका मुंहपका बीमारी है, इसका साल में 2 बार टीकाकरण सरकार द्वारा किया जाता है, एक मार्च से अप्रैल के महीने में और एक सितंबर से अक्टूबर के महीने में। अगर किसी किसान भाई ने नहीं करवाया है इन तीनों बीमारियों का टीकाकरण, तो वो अपने नजदीकी जो भी पशु चिकित्सालय हैं वहां जाकर अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि इन बीमारियों से बचाव सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण ही है। जो भी हमारे यहाँ पशु के अंदर जो समस्याएं आई हैं, जो बीमारी हो रही है, उसमें जैसे साधारणतः हम बात करते हैं कि जैसे निमोनिया इस टाइम बहुत कॉमन बीमारी है, या पाचन की बीमारी है, तो पाचन की बीमारी का तो सर सबसे आसान घरेलू ये है कि आप अपने पशु को कृमिनाशक की दवाई दें। और जो निमोनिया बीमारी जो मैंने अभी जिसका जिक्र करा, वो आपके खास तौर पे जब हमारे पशुशाला है पशु की, उसके आवास को हम अच्छा नहीं रखेंगे, उसके अंदर ह्यूमिडिटी रहेगी, तो उसके अंदर ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसमें पशु पालक अपने घर से ही अपने स्तर से एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं, जिस भी पशु के अंदर लार टपक रही हो या नाक से पानी आ रहा हो, उसका तापमान बढ़ा हुआ, उसने खाना पीना छोड़ दिया हो, तो उसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, एक कटोरी के अंदर मुट्ठी भर अजवाइन के साथ में थोड़ी सी चीनी मिला करके और उसकी पशु को धुनी देंगे, तो ये घरेलू नुस्खा है जिससे उसके पशु के अंदर ये बीमारी है निमोनिया की, उसके अंदर पशु को थोड़ा आराम मिलेगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि जो पशुपालक अपने पशुओं को खासकर वर्षा ऋतु में बाहर चराने के लिए लेके जाते हैं, तो उनको क्या कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है?
0: मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि इस मौसम के अंदर आप जब कभी भी पशु को बाहर चराने लेके जाओ, तो थोड़ा कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि सुबह के टाइम में हम नहीं लेके जाएं। जब थोड़ा धूप निकल जाए या टेम्परेचर बढ़ जाता है, तभी हमें हमारे पशुओं को बाहर चराने के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह क्या, जब नमी का मौसम रहता है, तो उसके अंदर जो भी लार्वा है या उनके प्यूपा है, उनकी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, तो उसमें पशु का इन्फेक्शन बढ़ेगा। और साथ ही साथ मैं पशुपालकों को ये संदेश देना चाहूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आप अगर अपने पशु को बाहर चराने की आदत रख रहे हैं, तो आप अपने पशु का आज ही, अगर करवाया है तो ठीक है, नहीं करवाया है तो आज ही आप अपने पशु को कृमिनाशक दवाई दें, पेट के कीड़ों की दवाई दें, उसके बाद आप अपने पशु को बाहर चराने लेके जाएं।
1: बिल्कुल डॉक्टर राजेश कुमार जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे पशुपालक भाइयों को, किसान भाइयों को, और जरूर वो आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से अपने पशुओं का प्रबंधन करेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं ब्रजेश,

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ब्रजेश से ये उपदेश।
1: नीलम बहन, भारत सरकार घरेलू स्तर पर सोयाबीन जैसे तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन चला रही है। ये योजना वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक लागू है, जिसका लक्ष्य खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को कम कर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।
0: बिल्कुल शशि भाई, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का उद्देश्य तिलहन फसलों का उत्पादन 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 70 मिलियन टन तक करना है, और साथ ही खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को मौजूदा 57% से घटाकर 28% तक करना है, और इसके अलावा जीनोम एडिटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले और अधिक तेल देने वाले सोयाबीन के बीज किसानों तक पहुंचाना है।
1: बिल्कुल। तो नीलम है।

0: लेकिन ये तो हमारे किसान बहन भाइयों ने जाना राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन सोयाबीन के बारे में। और देखिए, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों को बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे में।
1: ग्राम संसार कार्यक्रम में बहन भाई सुनेंगे पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। इसके साथ ही बहन भाई चर्चा सुनेंगे बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस पर, और इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना की जानकारी दी जाएगी।
0: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और उनकी पसंद के लोकगीत सुनवाए जाएंगे। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की, लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स। शाम के 7:30 हुए हैं और आप सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने गज़ल सुनी। इसी के साथ गज़लों का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। 7:45 होने को आपसे कुछ क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली सरकार का सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 2800 एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस शामिल करने का निर्णय। दिल्ली में निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त, स्वप्रमाणन प्रणाली लागू होगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वतखोरी मामले में पंजाबी बाग नांगलोई के उप पंजीयक को गिरफ्तार किया। दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ई श्रीधरन को वडोदरा के गतिशक्ति विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा, संजीव श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल के मद्देनजर दिल्ली के रेस्तरां और कैफे सहित अन्य प्रतिष्ठान सप्ताहांत सवेरे 4 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार ने राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और मजबूत बनाने के लिए 2800 नई एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ये शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली बस अगले वर्ष अप्रैल से संचालित होंगी।
2: इन नई बसों की श्रेणी में 1400 बसें 12 मीटर और इतनी ही बसें 9 मीटर लंबी होंगी। वहीं 12 मीटर वाली प्रत्येक बस पर अधिकतम 35 लाख रुपए और 9 मीटर वाली प्रत्येक बस पर अधिकतम 25 लाख रुपए की सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2028-29 तक दिल्ली के सार्वजनिक बस बेड़े को लगभग 14,000 बसों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। बसों के बेहतर संचालन के लिए IIT दिल्ली के सहयोग से रूटों का पुनर्गठन किया जाएगा। वहीं बस मैनेजमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों के माध्यम से संचालन और टिकट व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
1: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी सेक्टर 10 में आयोजित कार्यक्रम में बैटरी से चलने वाले 135 स्वच्छता वाहनों को रवाना किया। ये इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली नगर निगम की रोहिणी, नरेला, सिविल लाइन्स और केशवपुरम क्षेत्र के स्वच्छता बेड़े को सुदृढ़ करेंगे। श्री वाही ने कहा कि निगम के स्वच्छता बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना स्वच्छ और हरित दिल्ली की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि ये पहल हर घर से अपशिष्ट संग्रहण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम साबित होगी। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों की मान्यता

0: प्रक्रिया सरल बनाने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र व्यवस्था समाप्त कर दी है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये सुधार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली सरकार ने अनिवार्यता प्रमाण पत्र की जगह स्वप्रमाणन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। निजी विद्यालयों की स्थापना के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्र की अनिवार्यता में भी बड़ी छूट दी गई है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये सुधार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप है। अब विद्यालयों को मान्यता किसी क्षेत्र में विद्यालय की आवश्यकता के बजाय बुनियादी ढांचे, सुरक्षा मानकों, योग्य शिक्षकों और छात्र शिक्षक अनुपात जैसे मानकों के आधार पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना तथा अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समाप्त कर पारदर्शी और सरल व्यवस्था सुनिश्चित करना है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में आज पंजाबी बाग नागलोई के उप पंजीयक और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शिकायत के अनुसार संपत्ति की गिफ्ट डीड निष्पादित करने के बदले उप पंजीयक ने शिकायतकर्ता से 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने दोनों आरोपियों को 80,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आगे की जाँच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत वाहन चोरी मामले में 11 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 किशोर भी शामिल हैं। पुलिस ने 75 दोपहिया और 1 चारपहिया वाहन बरामद किया। पुलिस के अनुसार बरामद वाहनों में 23 वाहन आरोपियों के कब्जे से, 42 वाहन आवासीय क्षेत्रों और लावारिस हालत में तथा 11 वाहन पार्किंग स्थलों से बरामद किए गए। ऑपरेशन चक्र का उद्देश्य वाहन चोरी की श्रृंखला को तोड़ना और ऐसे गिरोहों पर प्रभावी कार्रवाई कर राजधानी में ऐसे अपराध पर अंकुश लगाना है। अपराध शाखा ने चौथे पुश्ता में एक खाली मकान से अवैध शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान 85 कार्टन शराब बरामद किए गए, जिनमें से 68 कार्टन पर केवल चंडीगढ़ में बेचने के लिए और 17 कार्टन पर केवल हरियाणा में बेचने का लेबल लगा था। पुलिस अवैध शराब के भंडारण और आपूर्ति में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज भारत मंडपम में मानव एआई साक्षरता मिशन नेतृत्व सम्मेलन में भाग लिया। श्री सूद ने कहा कि कार्यक्रम में एआई आधारित शिक्षा, डिजिटल कौशल और भविष्य की शिक्षण व्यवस्था पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि एआई तैयार भारत की शुरुआत एआई तैयार कक्षाओं से होगी।
2: आज हम एक और बड़े बदलाव के दरवाजे पर खड़े हैं। 21वीं सदी की अगली लिटरेसी एआई लिटरेसी है। आज सवाल यह नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, एआई तो हमारे जीवन का हिस्सा बन ही चुका है। सवाल यह है कि क्या हमारे बच्चे एआई का केवल इस्तेमाल करेंगे या उसे समझकर जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्या वे एआई के केवल कंज्यूमर्स बनेंगे या एआई क्रिएटर्स, इनोवेटर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनेंगे।
0: श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो हर विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार कर सके। लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश राहिब सिंह ने आज पूर्वी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने पटपड़गंज हाईवे और झिलमिल अंडरपास का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सुनियोजित कार्य योजना, विभागों के बेहतर समन्वय और लगातार निगरानी के कारण आज क्षेत्र की जल भराव की समस्या समाप्त हो गई है। उन्होंने लक्ष्मीनगर चौराहे पर शीघ्र ही एक आधुनिक स्काई वॉक के निर्माण की घोषणा की। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार जल निकासी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रीकास्ट ड्रेन तकनीक का विस्तार कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय वरुणालय में आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण, मातृत्व के सम्मान और भावी पीढ़ियों के स्वच्छ तथा हरित पर्यावरण सुनिश्चित करने का जन आंदोलन है। उन्होंने नागरिकों से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि अब तक 6,885 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। संसद का

0: मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा आज राजघाट पर धरने में शामिल हुए। ये धरना कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा की टीवी बहस के दौरान महर्षि भगवान वाल्मीकि के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में किया गया। वाल्मीकि धर्म सम्मान रक्षा समिति ने धरने का आयोजन किया था। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ टिप्पणी करोड़ों लोगों की आस्था और देश की सांस्कृतिक विरासत का अपमान है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि और दलित समाज को सम्मान तथा समान अवसर का अधिकार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि स्वस्थ समाज मजबूत राष्ट्र की नींव है। नई दिल्ली में आज भारतीय चिकित्सा संघ के पुरस्कार समारोह में श्री सिंह ने कहा कि चिकित्सा पेशेवर न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, बल्कि देश की विकास यात्रा को भी मजबूत कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि डॉक्टर समर्पण और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों का सम्मान राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र निर्माण की भावना का सम्मान करना है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शिकायत निवारण का दायरा शिकायतों के निपटारे तक ही सीमित नहीं होना चाहिए तथा पेंशन भोगियों की आकांक्षाओं और चिंताओं का समाधान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पेंशन संबंधी विवादों का समाधान प्रशासनिक तौर पर किया जाना चाहिए ताकि पेंशन भोगियों को अदालत जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। उन्होंने आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमेबाजी पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने कई नागरिक केंद्रित सुधार किए हैं। विभाग ने पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली के जरिए डिजिटलीकृत पेंशन सेवाएं शुरू की हैं। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने आज नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए विशेष टिकट जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना टिकट और अनियमित टिकट यात्रा के कुल 127 मामले पकड़े गए और 1,08,000 से अधिक रुपए का जुर्माना वसूला गया। दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश रमण त्रिपाठी ने यात्रियों से वैध टिकट लेकर यात्रा करने और टिकट जांच अभियान में रेलवे कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो के प्रथम प्रबंध निदेशक डॉक्टर ई श्रीधरन को वडोदरा के गतिशक्ति विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने प्रदान किया। ये डॉक्टर श्रीधरन की 23वीं मानद डॉक्टरेट उपाधि है। डॉक्टर श्रीधरन को देश में आधुनिक मेट्रो रेल प्रणाली के विकास और सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार कन्नड़ भाषा की पुस्तक नानिरुविदे नेमागागी नादिरुविदे नानागागी के लिए प्रदीप कुमार शेट्टी को दिया जाएगा। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।

0: ऐतिहासिक मुकाबले के एक साथ आनंद लेने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविय ने आज BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर पीको का अनावरण किया। ये प्रतियोगिता नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 17 से 23 अगस्त तक खेली जाएगी। इस अवसर पर भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद थे। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर उमस रही। मौसम विभाग ने कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, दिल्ली सरकार का सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 2800 एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस शामिल करने का निर्णय। दिल्ली में निजी विद्यालयों को मान्यता के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त, स्वप्रमाणन प्रणाली लागू होगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वतखोरी मामले में पंजाबी बाग नागलोई के उप पंजीयक को गिरफ्तार किया। दिल्ली मेट्रो के प्रथम प्रबंध निदेशक डॉक्टर ई श्रीधरन को वडोदरा के गतिशक्ति विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा, संजीव श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बज चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम मुशायरा का।
2: सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, कोई भी तख्लीक जब वजूद में आती है तो वो जब तक आवाम तक न पहुँचे गुमनामी के अंधेरों में रहती है और उसके वजूद में आने का मकसद भी पूरा नहीं होता। पुराने ज़माने में अदीब या शायर के आवाम में राबते और मंजर आम पर लाने का ज़रिया अदबी महफिलें और मुशायरे हुआ करते थे। मुशायरे किसी शायर की पहचान कराते थे जिसमें उसके कलाम की परख भी हो जाती थी, उस शायर की हैसियत का भी तायुन हो जाता था और अवाम भी उस शायर के कलाम को उसकी ज़बानी सुनकर महजूज़ होते थे। सामिन, मुशायरों का सिलसिला आज भी जारी है। रेडियो के ज़रिए गाहे गाहे मुख्तलिफ शुआरा का कलाम अवाम तक पहुंचाया जाता है। आइए सामिन मुशायरा सुनते हैं। इस मुशायरे में निज़ामत कर रहे हैं जनाब नदीम फर्रुख।
3: सामिन आदाब, आकाशवाणी की इस खूबसूरत सी पेशकश महफिल मुशायरा में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मेरे साथ हिंदुस्तान के मशाहिर शोरा में से जो नुमाइंदा शायर आज मेरे साथ हैं उनसे मैं आपका तारुफ़ करा दूँ। तंज़ो मिज़ाह के एक बहुत ही बाकमाल शायर जो इन दिनों मुशायरों में अपने मखसूस लहजे और अपने मखसूस तेवर से लोगों को मुतासर कर रहे हैं, जनाब जहाज देवबंदी इस सफ़र में हमारे साथ हैं और वो अपने कलाम से नवाजेंगे। उसके अलावा संजीदा शायरी में महाराष्ट्र के विदर्भ से यानी नागपुर से तशरीफ़ लाए हैं ख्वाजा ग़ुलामुस्सकलैन समीत साहब, वो भी अपने कलाम से नवाजेंगे और आप महजूज होंगे। और उसके साथ में नदीम फर्रुख, जो भी मेरे अशार हैं वो मैं आपके खिदमत में पेश करूँगा। मैं सबसे पहले कलाम पेश करने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ नागपुर से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मेहमान शायर ख्वाजा ग़ुलामुस्सकलैन समीत साहब से। जनाब ख्वाजा ग़ुलामुस्सकलैन समीत,
4: एक कता समाद कीजिए। अर्ज़ है कि अभी कुदरत ने कर रखी है कुछ ढीली गिरफ्त अपनी।
3: वाह वाह वाह।
4: अभी कुदरत ने कर रखी है कुछ ढीली गिरफ्त अपनी, अभी कुछ और दिन वो मेरे बच्चों को सता लेगा।
3: वाह।
4: कसम है पानियों में डोलते संदूक मूसा की कि हर फिरौन अपनी मौत खुद अपने घर में पालेगा।
3: वाह, क्या कहना। वाह वाह वाह वाह,
4: शुक्रिया बहुत बहुत। और गजल का मतलब देखिए
3: जी, इरशाद।
4: जैसे सुर बन के कोई ताल में आ जाता है,
3: जैसे सुर बन के कोई ताल में आ जाता है,
4: जैसे सुर बन के कोई ताल में आ जाता है, वो भी मिलने मुझे ननिहाल में।

0: सकता है।
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह वाह वाह
0: वाह वाह वाह
2: जैसे सुर बन के कोई ताल में आ जाता है, वो भी मिलने मुझे
1: ननिहाल में आ
2: ननिहाल में
1: जाता
2: आ
1: है। हाँ
2: जाता है। और ये देखिए कि जहन शातिर है कि परवाज है ऊंची उसकी,
1: क्या कहना, वाह
2: जहन शातिर है कि परवाज है ऊंची
0: ऊंची
2: उसकी,
0: उसकी।
2: दिल है मासूम सदा जाल में आ जाता
0: वाह
2: है।
0: वाह
2: क्या
0: वाह
2: कहना,
1: वाह वाह वाह,
2: दिल है मासूम
1: सदा जाल
2: सदा
1: में
2: जाल में आ
1: जाता
2: जाता है। और ये शेर के पढ़ ना पाएगा हथेली की लकीरों में कोई,
1: क्या कहना, वाह
2: पढ़ ना पाएगा हथेली की लकीरों में कोई, वही एक नाम जो हर फाल में आ जाता है।
1: वाह
2: वाह,
1: वाह वाह वाह वाह वाह
2: वही
1: वाह,
2: एक नाम
1: जो हर
2: जो
1: फाल
2: हर
1: में आता
2: फाल
1: है।
2: में आ जाता है। और ये बतौर ख़ास कि बारिशों में भी है छाते की पनाहें उसको।
1: अच्छा,
2: वाह,
1: बारिशों में भी है छाते की
2: पनाह,
1: पनाहें
2: बारिशों
1: उसका।
2: में
1: अच्छा
2: भी है
1: निसार,
2: छाते की पनाहें उसको,
1: वाह
2: सर्द रुत में जो मेरी शाल में आ जाता
1: वाह
2: है।
1: वाह वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह,
1: वाह वाह वाह,
2: सर्द रुत में जो मेरी शाल में आ जाता है।
1: क्या कहना ख्वाजा साहब,
2: और ये
1: वाह
2: शेर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर के, कितना दिलकश है परिंदों की तरह तेरा ख्याल,
1: कितना दिलकश है परिंदों
2: दो
1: की
2: की तरह
1: तरह तेरा
2: तेरा, कितना
1: ख्याल।
2: दिलकश है परिंदों की तरह तेरा ख्याल,
1: वाह
2: शाम घर लौट के हर हाल में आ जाता
1: वाह
2: है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
2: और ये आखिरी शेर देखिए
1: जी,
2: कि शाम घर लौट के हर हाल में आ जाता है। और यह है कि भूलने वाले से वो पहली मुलाकात का दिन,
1: क्या कहना,
2: भूलने वाले से
1: वो
2: वो
1: पहली
2: पहली
1: मुलाकात का,
2: मुलाकात का दिन, हर जन्मदिन की तरह साल में आ जाता
1: वाह
2: है।
1: वाह वाह वाह
0: क्या,
2: हर
0: वाह
2: जन्मदिन की तरह, बहुत बहुत शुक्रिया, साल में आ जाता है। और ये मक्ता देखिए कि डूबने की मुझे तरगीब जो देता है समीत,
1: डूबने की मुझे
2: डूबने
1: तरगीब जो
2: की,
1: देता है समीत।
2: जी डूबने की मुझे तरगीब जो देता है समीत, जब भी हंसता है भंवर गाल में आ जाता है।
1: वाह
2: हाँ,
1: वाह वाह वाह वाह
2: जब भी हंसता है
1: वाह
2: भंवर
1: वाह
2: गाल में आ
1: वाह,
2: जाता है, जैसे सुर बन के कोई ताल में आ जाता है,
1: क्या कहना, क्या
2: वो भी
1: खूबसूरत
2: मिलने
1: गजल,
2: मुझे
1: वाह वाह वाह वाह
2: ननिहाल में आ जाता है। दूसरी गजल का मतलब देखिए, ये भी ताज़ी गजल है।
1: जी।
2: हकीकत मुनहदिम कर दे भी तो अक्सर बनाता हूँ,
1: क्या अच्छा मिश्रा, वाह
2: हकीकत मुनहदिम कर दे भी तो अक्सर बनाता हूँ, मैं उंगली से हवा में खुशनुमा एक घर बनाता
1: अरे
2: हूँ।
1: वाह वाह वाह
2: वाह,
1: वाह वाह वाह
0: क्या
1: वाह,
0: कहना है,
2: बहुत बहुत शुक्रिया। हकीकत मुनहदिम कर दे भी तो अक्सर बनाता हूँ,
1: वाह वाह वाह
2: मैं
1: वाह
2: उंगली से हवा में खुशनुमा एक घर बनाता हूँ।
1: वाह वाह वाह,
2: और ये शेर देखिए कि मुझे रगबत नहीं गारतगरी से,
1: हाँ
2: पर हिफाजत को,
1: मुझे रगबत नहीं गारतगरी से, पर हिफाजत
2: मुझे
1: को।
2: रगबत नहीं गारतगरी से पर हिफाजत को, कबीले की हसीनों के लिए खंजर बनाता
1: हाय हाय,
2: हूँ।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: मुझे रगबत नहीं गारतगरी से पर हिफाजत को, कबीले की हसीनों के लिए खंजर बनाता हूँ। और ये शेर देखिए कि कड़ी धूपों का जब भी हो सफर दरकार तो पहले,
1: वाह
2: कड़ी धूपों का जब भी हो सफर दरकार तो पहले, तसव्वुर में सियाह एक अब्र की चादर बनाता
1: वाह
2: हूँ।
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह
1: वाह वाह वाह वाह
2: कड़ी धूपों का जब भी हो सफर दरकार तो पहले,
1: वाह वाह वाह
2: तसव्वुर में सियाह एक अब्र की चादर बनाता हूँ। और ये शेर बतौर खास देखिए बड़ी
1: इरशाद,
2: नज़ाकत लिए हुए है, कभी रंगीन तर लम्हों की याद उसको दिलानी हो,
1: आहा वाह, कभी रंगीन तर लम्हों की याद उसको
2: कभी
1: दिलानी हो।
2: रंगीन तर लम्हों की याद उसको दिलानी हो, तो खत के हाशिए में मोर का एक पर
1: पर
2: बनाता
1: बनाता हूँ,
2: हूँ।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
2: बहुत बहुत
0: वाह,
2: शुक्रिया। कभी रंगीन तर
0: क्या तशबीह कर
2: लम्हों की याद
0: पाता,
2: उसको दिलानी हो,
1: वाह
2: इनायत
1: वाह
2: है
1: वाह,
2: आपकी, तो खत के हाशिए में मोर का एक पर बनाता हूँ। और ये शेर के, रुलाती हैं मुझे पग डंडियां खूब ओस आलूदा,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: रुलाती हैं मुझे पग डंडियां
1: पगडंडिया,
2: खूब ओस आलूदा, वरक पर जब कलम से गांव का मंजर बनाता
1: वाह वाह
2: हूँ,
1: वाह वाह,
2: वरक पर जब कलम से
0: गांव का
2: गांव का
0: मंजर,
2: मंजर बनाता हूँ। और ये शेर के, मेरा ईमां है खाकी जिस्म में जां भरने वाले पर,
1: मेरा ईमा है,
2: मेरा ईमां है खाकी जिस्म में जां भरने वाले पर,
1: वाह,
2: सो पैकर मोम के घड़ घड़ के एक लश्कर बनाता
1: हूं। वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: मेरा ईमा है खाली जिसमें जां भरने वाले पर,
1: वाह वाह वाह,
2: सो पैकर मोम के घड़ घड़ के एक लश्कर बनाता हूं।
1: वाह।
2: और मक्ता देखिए कि समीत उसको कोई समझे तो समझे आजरी, लेकिन
1: क्या कहना, समीत उसको कोई समझे तो समझे आजरी, लेकिन
2: समीत उसको कोई समझे तो समझे आजरी, लेकिन मैं हरफो लफ्ज से एक खूब रू पैकर बनाता हूँ।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: समीत इसको कोई समझे तो समझे आजरी, लेकिन
1: वाह वाह
2: मैं हरफो लफ्ज से
1: वाह
2: एक खूब रू पैकर बनाता हूँ, और हकीकत मुनहदम कर दे भी तो अक्सर बनाता हूँ। मैं उंगली से हवा में खुशनुमा एक घर बनाता हूँ।
1: वाह वाह वाह। हज़रते गिरामी, ख्वाजा गुलाम उस्सकलैन समीत साहब को आप सुन रहे थे। नागपुर से आपका ताल्लुक है, बहुत संजीदा हो गए हैं आप। मैं चाहता हूँ कि इस संजीदगी को थोड़ी देर आपकी मुस्कुराहट में तब्दील करूँ, और वैसे भी आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैं इस तरह का एक शायर आपसे मिलाने जा रहा हूँ जिसका लहजा कुछ इस तरह का है कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। ये एक तंजिया और मजाहिया शायर का हौसला हो सकता है। आइए थोड़ी देर तंजो जराफत की शायरी सुनते हैं। मगरबी उत्तर प्रदेश के एक अदबी और तहजीबी शहर देवबंद से आने वाले एक मेहमान शायर जनाबे जहाज देवबंदी से। जनाबे जहाज देवबंदी,
3: चार मिसरे मैं अपने तारुफ में पढ़ूंगा।
1: जी,
3: फासले सब के सब मिटा डालूं।
4: फासले सब के सब मिटा डालूं।
3: फासले सब के सब मिटा डालूं, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं।
1: ओहो,
3: फासले सब के सब मिटा डालूं,
1: इस कदर
3: दिल नवाज हो जाऊं, और ले के उड़ जाऊं सब हसीनों को, काश ऐसा जहाज हो जाऊं।
1: वाह वाह वाह भाई, जहाज
3: ले के उड़ जाऊं सब हसीनों को,
1: क्या कहना,
3: काश ऐसा जहाज हो जाऊं।
1: वाह वाह वाह।
3: और चार मिसरे समाप्त करें कि लगता है कि आ जाऊंगा मैं दस्ते अजल में।
1: अच्छा, वाह वाह।
3: लगता है कि आ जाऊंगा मैं दस्ते अजल में, नज्मों में मजा है ना कोई लुत्फ गजल में। नज्मों में मजा है ना कोई लुत्फ गजल में, और किस तरह करूं तुझसे मैं इजहार मोहब्बत, अब्बा तेरे डंडा लिए फिरते हैं बगल में।
1: अरे वाह,
3: किस तरह करूं तुझसे मैं इजहार मोहब्बत, अब्बा तेरे डंडा लिए फिरते हैं बगल में। और चार में से और समाप्त करें कि कटी उम्र जिनकी सितम ढाते ढाते,
1: कटी उम्र जिनकी सितम ढाते ढाते,
3: कटी उम्र जिनकी सितम ढाते ढाते, वो जब मर गए रिश्वतें खाते खाते। वो जब मर गए रिश्वतें खाते खाते, जनाजे पे सब यक जबा हो के बोले, बड़ी देर की मेहरबा जाते जाते।
1: मैं जहाज क्या कहना,
3: बहुत शुक्रिया कि बड़ी देर की मेहरबा जाते जाते। और ये चार में से समाप्त करें कि अब खुद ही अपने आप को समझा रहा हूँ मैं।
1: वाह, अब खुद ही अपने आप को समझा रहा हूँ।
3: अब खुद ही अपने आप को समझा रहा हूँ मैं, कोई गुनाह करने से कतरा रहा हूँ।
1: वाह वाह वाह वाह।
3: और मस्जिद के पास जब से सुरैया ने घर लिया, मस्जिद के आसपास नजर आ रहा हूँ।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह,
3: मस्जिद के पास जब से सुरैया ने घर लिया,
1: मस्जिद के आसपास
3: नजर आ रहा हूँ मैं।
1: वाह,
3: ये चार मिसरे ये भी जो समाप्त कर ले, एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन।
1: ओहो,
3: एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, मेरे गंजे पन में मेरा हाल ऐसा हो लिया।
1: अच्छा,
3: हर सुबह ये है मुसीबत, क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया।
1: वाह वाह वाह वाह, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया। अरे वाह वाह वाह,
3: बहुत शुक्रिया। एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन,
1: वाह,
3: मेरे गंजे पन में मेरा हाल ऐसा हो लिया, हर सुबह ये है मुसीबत, क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया। और ये चार मिसरे और समाप्त करें कि मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया।
1: अच्छा, मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया,
3: चाहत वफा के खेल से आगे निकल।
1: अरे वाह वाह वाह,
5: क्या बात,
3: मैं बच बचा के जेल से
1: आगे निकल गया,
3: चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया, और पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं दो मिनट में रेल से आगे निकल गया।
1: वाह वाह वाह वाह,
3: बहुत शुक्रिया कि पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया
5: भाई। वाह वाह वाह।
3: और ये एक जो तस्वीर है
5: जी
3: के मेरे अरमानों पे वो फेर गई है पानी।
5: अच्छा, मेरे अरमानों पर वो फेर गई है पानी।
3: आस मैंने भी लगा रखी थी शहनाई की।
5: अच्छा, वाह वाह वाह।
3: मेरे अरमानों पे वो फेर गई है पानी।
5: अरे वाह।
3: आस मैंने भी लगा रखी थी शहनाई की और मेरी महबूबा पड़ोसी को मेरे ले भागी। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। और एक तजमीन और के शेरवानी कभी और कोट कभी पहना है।
5: शेरवानी कभी और कोट कभी पहना है।
3: शेरवानी कभी और कोट कभी पहना है। एक दफा सलमा ने फिर भी ना इधर देखा है।
5: अच्छा,
3: एक दफा सलमा ने फिर भी ना
4: इधर देखा
3: और सै

0: मर्तबा भेंगे की रिहर्सल की है।
1: अच्छा?
0: जब कहीं जाके तुम्हें एक नजर देखा है।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: देखिए आप आओ कर लें कोर्ट मेरी जय मेरी जाने गजल।
1: वाह,
0: आओ कर लें कोर्ट मेरी जय मेरी जाने गजल, इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो।
1: अरे वाह,
0: और सुन के ये चप्पल उठाई जब सुरैया ने जनाब, एकदम जुम्मन ने बोला और बाजी ठीक हो।
1: अरे वाह वाह,
0: शुक्रिया शुक्रिया,
1: क्या नफसियात आपने पेश की। वाह वाह,
0: आओ कर लें कोर्ट मेरी जय मेरी जाने गजल, इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो।
1: वाह,
0: और सुन के ये चप्पल उठाई जब सुरैया ने जनाब,
1: क्या कहना,
0: एकदम जुम्मन ये बोला और बाजी ठीक हो।
1: वाह वाह वाह,
0: एक गजल के दो चार शेर
1: अता करें।
0: शेर ये हुआ कि लहजे में कुछ मिठास न चेहरे पे नूर है।
1: अच्छा, लहजे में कुछ मिठास न चेहरे पे नूर है।
0: लहजे में कुछ मिठास न चेहरे पर नूर है, उस पर कमाल ये के तकब्बुर में चूर है।
1: अरे वाह वाह वाह,
0: उस पर कमाल ये के तकब्बुर में चूर है, और अल्लाह मेरी सातवीं शादी भी रुक गई।
1: अच्छा, अल्लाह मेरी सातवीं शादी भी रुक गई।
0: अल्लाह मेरी सातवीं शादी भी रुक गई, अब क्या मेरे नसीब में जन्नत की हूर है।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: क्या कह रहे हैं, क्या
0: अब क्या मेरे नसीब में जन्नत की हूर है।
1: बहुत अच्छा।
0: और एक बार तू कहा था दरोगा को दोस्तों,
1: अच्छा
0: एक बार
1: तू
0: कहा था दरोगा को दोस्तों, अब तक मेरी जबान पे बस जी हुजूर है।
1: अरे वाह वाह वाह,
2: क्या कह रहे,
0: अब तक मेरी जबान पे बस जी
1: हुजूर है।
0: और मौसम खराब था जो गिरा आसमान से,
1: क्या कहना क्या कहना, वाह,
0: मौसम खराब था जो गिरा आसमान से, इसमें कहां जहाज का कोई कसूर।
1: वाह
0: जी, शुक्रिया
1: भाई जहाज साहब। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस मुस्कुराहट को और बढ़ाया जाए, और वैसे भी हमें मुस्कुराने के मौके बहुत कम मिलते हैं, और कुछ और आपकी मजाहिया शायरी सुनी जाए।
0: सुने आप चार मिसरे सुने, बुलंदियों की हदें पार करके दम लूंगा।
1: अरे वाह वाह वाह,
0: बुलंदियों की हदें
1: पार करके
0: दम लूंगा, इसीलिए तो तकल्लुफ जहाज रखा है।
1: वाह वाह वाह,
0: इसीलिए तो तकल्लुफ जहाज रखा है, और किसी ने एड़ियां चपलो समीत घिस दी हैं। किसी ने एड़ियां चपलो समीत घिस दी हैं, किसी को उसने फ्री में नवाज रखा। बहुत शुक्रिया, किसी ने एड़ियां चपलों समेत घिस दी हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: किसी को उसने फ्री में नवाज रखा है। और अब चार मिसरे सुने कि तमन्ना का प्याला भरा 50-50।
1: अरे वाह, तमन्ना का प्याला भरा 50-50।
0: तमन्ना का प्याला भरा 50-50, हुआ इश्क मेरा खरा 50-50। और सुरैया का अब्बा है कोमा में कल से, मरा तो है लेकिन मरा 50-50।
1: अरे वाह वाह वाह,
0: सुरैया का अब्बा है कोमा में कल से, मरा तो है लेकिन मरा 50-50। और मैंने तो उससे सच्ची मोहब्बत जताई पर,
1: अरे वाह,
0: मैंने तो उससे सच्ची मोहब्बत जताई पर, उसने किया था प्यार मगर झूठ मूठ का।
1: अरे क्या कहना, वाह वाह वाह,
0: उसने किया था प्यार मगर झूठ मूठ का, और पहले मेरी दुकान थी वो भी सुनार की, ठेला लगा रहा हूँ मगर फ्रूट का।
1: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
0: पहले मेरी दुकान थी वो भी फ्रूट की,
1: वाह वाह वाह,
0: ठेला लगा रहा हूँ मगर अब फ्रूट का।
1: के
0: एक ये जो तज़मीन है गजल,
1: जी जी जी,
0: समाप्त करें कि उसने हाथों को बहुत अपने मला बैठ गया।
1: अरे वाह वाह वाह,
0: उसने हाथों को बहुत अपने मला
1: बैठ गया।
0: बद इलेक्शन में खड़ा था तो भला बैठ गया।
1: वाह वाह वाह,
0: बद इलेक्शन में खड़ा था
1: तो भला बैठ गया,
0: तो भला बैठ गया। और आज भी हाथ ना आया मैं तेरे अब्बा के, आज भी हाथ ना आया मैं तेरे अब्बा के, ये अलग बात के जूते का तला बैठ गया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: ये अलग बात के जूते का तला
1: बैठ गया।
0: और मुझको महबूब मुकद्दर से मिला था बहरा,
1: वाह वाह,
0: मुझको महबूब मुकद्दर से मिला था बहरा,
1: क्या कहना,
0: इतनी आवाजें उसे दी कि गला बैठ गया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: और इसमें एक शेर हुआ वाकई के, इतना भारी था सुरैया का जनाजा यारो,
1: क्या कहना, कहा क्या कहना,
0: इतना भारी था सुरैया का जनाजा यारो, जो भी दो चार कदम लेके चला
1: बैठ गया। वाह वाह वाह,
0: जो भी दो चार कदम लेके चला
1: बैठ गया,
0: बैठ गया।
1: हजरत गिरामी, आप समाप्त कर रहे थे जनाब जहाज देवबंदी को। जहाज देवबंदी साहब अपनी तंजिया और मजाहिया शायरी से आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें ला रहे थे, और आपको हंसने पर मजबूर कर रहे थे कि आप हंसें, आप खुश हों। तंजिया और मजाहिया शायरी का यही कमाल है कि इसमें शायर अपने आप को निशाना बनाता है, लेकिन हमें और आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका देता है। लेकिन अगर सामईन इकराम आप गौर करें तो बहुत देर तक

0: हंसने का जो नतीजा निकलता है वो ये होता है, जो भी बहुत देर तक हंसता है उसकी आंखें जो है वो कुछ ना कुछ नम हो जाती हैं। वैसे भी डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा था कि अपनी खुशी के साथ मेरा गम निभा दो, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। तो
1: क्या कहना।
0: आप बहुत देर तक हंस लिए हैं, आप खुश हो लिए हैं, आइए थोड़ी सी संजीदा शायरी। मैं नदीम फर्रुख मेरा नाम है, अगर कुछ शेर आप मेरे भी सुन लेंगे और मुझे भी आपकी दुआएं मिल जाएंगी, इस
1: जरूर
0: उम्मीद
1: जरूर
0: के साथ मैं चंद शेर हाजिर
1: जी
0: करता हूँ।
1: जी जी इशारा।
0: अर्ज करता हूं कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है,
1: वाह, वो
0: वो
1: पथराई सी
0: पथराई
1: आंखों को
0: सी
1: भी काजल भेज
0: आंखों को
1: देता
0: भी
1: है,
0: काजल भेज देता
1: सुलगती
0: है।
1: दोपहर
0: में जैसे बादल भेज देता है।
1: वाह,
0: वाह,
1: क्या कहना है।
0: मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता
1: वाह,
0: है।
1: क्या कहना है।
0: मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं,
1: वाह, क्या कहना
0: मेरे
1: है।
0: उलझे मसाइल का वही
1: वही हल
0: हल
1: भेज
0: भेज
1: देता
0: देता
1: है।
0: है। और ये शेर भी सुने कि
1: इरशाद फरमाइए।
0: जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं,
1: वाह,
0: जहां
1: जहां
0: अहले
1: अहले
0: खिरद
1: तेवर बदल कर
0: तेवर बदल कर बात करते हैं,
1: बात करते
0: वो
1: हैं।
0: इबरत के लिए दो चार पागल भेज
1: वाह,
0: देता
1: क्या
0: है।
1: बात है। बहुत खूब,
0: वो इबरत के लिए
1: बहुत
0: दो
1: खूब,
0: चार पागल भेज
1: पागल
0: देता
1: भेज
0: है।
1: देता है, क्या कहना।
0: और ये शेर भी समाप्त करें कि हमारी आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं,
1: हमारी आज की
0: हमारी
1: जब
0: आज की
1: कोशिश
0: जब कोशिशें
1: नाकाम
0: नाकाम
1: होती
0: होती
1: हैं।
0: हैं, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता
1: वाह
0: है।
1: बात है, बहुत खूब,
0: हमें वो और एक और उम्मीद
1: उम्मीद
0: का
1: का
0: कल
1: कल
0: भेज
1: कल
0: देता
1: भेज
0: है।
1: देता है। हमारी
0: हमारी
1: जब
0: आज की
1: कोशिश
0: जब कोशिशें
1: नाकाम
0: नाकाम
1: होती
0: होती
1: हैं।
0: हैं, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता
1: वाह
0: है।
1: बात है, वाह, बहुत खूब
0: और
1: कहना है।
0: एक शेर मैं इस गजल का भूल रहा था, मुझे याद आया कि
1: इरशाद फरमाइए जी।
0: जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं,
1: ओ,
0: जहां वाले उसे जब
1: जब
0: याद
1: याद
0: करना
1: करना
0: भूल
1: भूल
0: जाते
1: जाते
0: हैं,
1: हैं।
0: जमीनों की तहों में कोई हलचल
1: अरे
0: भेज
1: हलचल
0: देता
1: भेज
0: है।
1: देता है, क्या
0: वाह वाह
1: कहने।
0: वाह,
1: वाह
0: जमीनों की
1: वाह
0: तहों में कोई
1: वाह, हलचल
0: हलचल भेज
1: हलचल,
0: देता
1: बहुत बहुत
0: है।
1: खूबसूरत, बहुत
0: जहां वाले उसे जब याद
1: याद
0: करना
1: करना
0: भूल
1: भूल
0: जाते
1: जाते
0: हैं,
1: हैं।
0: जमीनों की तहों में कोई हलचल
1: अरे
0: भेज
1: हलचल
0: देता
1: भेज
0: है।
1: देता है, क्या
0: वाह
1: कहने।
0: वाह वाह, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता
1: बहुत
0: है।
1: खूब,
0: वो
1: क्या
0: पथराई
1: बात
0: सी आंखों को भी काजल भेज
1: भेज
0: देता
1: देता
0: है,
1: है।
0: सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है।
1: बादल भेज, बहुत खूब,
0: चार मिसरे और अर्ज करता हूं
1: जी
0: कि
1: जी
0: कभी
1: इरशाद इरशाद।
0: झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती,
1: कभी झूठे
0: अच्छा जी,
1: उसूलों की
0: कभी
1: तरफदारी,
0: झूठे उसूलों की
1: तरफदारी
0: तरफदारी
1: नहीं,
0: नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं
1: अदाकारी
0: होती,
1: नहीं।
0: अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है,
1: हाँ,
0: मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी
1: अरे
0: नहीं
1: क्या
0: होती।
1: कहने हैं भाई,
0: क्या
1: बहुत
0: कहना,
1: खूब,
0: अमीरे शहर
1: वाह,
0: बिकने पर बहुत
1: बहुत
0: मजबूर
1: मजबूर
0: करता
1: मजबूर
0: है,
1: करता है,
0: मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं
1: दरबारी नहीं
0: होती।
1: है।
0: एक गजल के चंद शेर और अर्ज करता हूं, समाप्त करें। अर्ज करता हूं कि जब किसी से कोई लगाव न था,
1: जब
0: जब
1: किसी से
0: किसी
1: कोई
0: से
1: लगाव
0: कोई
1: न था,
0: लगाव न था, जहन पर इस कदर दबाव
1: आए
0: न
1: हाय
0: था,
1: हाय, वाह वाह
0: जब
1: वाह, क्या कहना।
0: किसी से कोई लगाव न था,
1: जहन पर, हाय हाय,
0: जहन पर इस कदर दबाव न
1: दबाव न
0: था।
1: था।
0: और ये शेर सुने कि
1: इरशाद फरमाइए।
0: आज चौपाल पर उदासी थी,
1: आज चौपाल पर उदासी थी,
0: आज चौपाल
1: चौपाल
0: पर उदासी
1: उदासी
0: थी,
1: थी,
0: बूढ़ा बरगद तो था अलाव न था।
1: हाय
0: क्या
1: हाय हाय
0: बात,
1: हाय, वाह वाह वाह वाह,
0: आज चौपाल पर उदासी थी,
1: क्या
0: क्या
1: काव्य
0: गजल के
1: इस्तेमाल कर रहा है यार, वाह
0: बूढ़ा
1: वाह वाह,
0: बरगद तो
1: गजल भाई
0: था,
1: बहुत अच्छे, वाह
0: बूढ़ा
1: वाह वाह,
0: बरगद तो
1: क्या
0: था
1: कहना,
0: अलाव न
1: क्या
0: था,
1: गजल, क्या कहना।
0: सालहा साल का ताल्लुक था, फिर भी जज्बात का जुड़ाव न
1: हाय
0: था।
1: हाय हाय हाय,
0: क्या
1: वाह
0: कहना,
1: वाह वाह,
0: सालहा साल का ताल्लुक था,
1: फिर भी जज्बात का
0: फिर
1: जुड़ाव,
0: भी जज्बात का जुड़ाव न
1: वाह,
0: था, जख्मी जख्मी थी रूह अंदर से,
1: वाह, जख्मी
0: जख्मी
1: जख्मी थी
0: जख्मी
1: रूह
0: थी
1: अंदर
0: रूह
1: से,
0: अंदर से, यूं बजाहिर तो कोई घाव न
1: घाव न
0: था,
1: था, क्या
0: वाह,
1: कहने,
0: यूं
1: वाह वाह,
0: बजाहिर तो कोई
1: कोई
0: घाव न
1: घाव
0: था, और ढेर होना ही था ये कसरे दिल,
1: न था।
0: मुद्दतों से जो रख रखाव न
1: हाय हाय
0: था,
1: हाय हाय,
0: ढेर
1: क्या कहने भाई, क्या कहना है,
0: होना ही था
1: वाह
0: ये
1: क्या,
0: कसरे
1: वाह वाह
0: दिल,
1: वाह भाई, क्या कहना, रख रखाव, वाह
0: मुद्दतों
1: वाह,
0: से जो रख
1: रख
0: रखाव
1: रखाव,
0: न
1: बहुत
0: था,
1: खूब, क्या कहना,
0: मुद्दतों से जो रख
1: रख
0: रखाव
1: रखाव
0: न
1: न था,
0: था। और मैं आपकी
1: वाह,
0: खिदमत में एक गजल के चंद शेर और अर्ज करता
1: इरशाद
0: हूं,
1: इरशाद कीजिए।
0: मतलब अर्ज करता हूं, समाप्त करें कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं,
1: कुछ इस तरह
0: कुछ
1: से
0: इस
1: तेरे
0: तरह
1: इश्क में
0: से
1: फना हो
0: तेरे
1: जाऊं,
0: इश्क
1: मैं
0: में हवा बनाऊं तुझे और मैं
1: क्या
0: दिया
1: हो
0: हो
1: जाऊं,
0: जाऊं,
1: मैं दिया हो
0: वाह
1: जाऊं, क्या
0: वाह वाह
1: कहने,
0: वाह वाह वाह,
1: क्या कहने,
0: कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं,
1: क्या तमन्ना, बनाऊं
0: हवा
1: तुझे
0: बनाऊं तुझे और
1: और मैं
0: मैं
1: दिया
0: दिया हो
1: हो जाऊं,
0: जाऊं, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से,
1: हाँ,
0: फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा।

0: हो जाऊं, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा
1: बेसदा
0: हो जाऊं। ये शेर भी सुने कि मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे,
1: वाह, मेरे
0: मेरे
1: खुदा
0: खुदा
1: मुझे एक
0: मुझे
1: ऐसी
0: एक
1: शब
0: ऐसी
1: अता
0: शब
1: कर
0: अता
1: दे।
0: कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं।
1: क्या कहने हो
0: मेरे
1: आप,
0: खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे
1: क्या दुआ है
0: कि
1: माता
0: अपने आप
1: अपना
0: से कुछ देर को जुदा हो जाऊं,
1: पति दुआ।
0: कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है,
1: अच्छा,
0: मुझे यकीन है ये बात गैर
1: गैर
0: मुमकिन
1: मुमकिन।
0: है,
1: हाँ
0: मैं सच के साथ रहूं और
1: ओ
0: गुमशुदा हो
1: क्या
0: जाऊं।
1: बात है भाई, वाह वाह वाह वाह,
0: मुझे
1: बहुत
0: यकीन
1: खूब।
0: है ये बात गैर मुमकिन
1: मैं
0: है,
1: सच के
0: मैं सच
1: साथ
0: के
1: रहूं
0: साथ
1: और
0: रहूं और
1: गुमशुदा।
0: गुमशुदा हो जाऊं।
1: क्या
0: गजल की राह पे यूं साथ हम चलें फर्रुख,
1: बात,
0: तुझे रदीफ बनाऊं मैं
1: मैं
0: काफिया
1: काफिया
0: हो
1: हो
0: जाऊं।
1: जाऊं, क्या
0: गजल
1: कहना है,
0: की
1: क्या
0: राह
1: वाह
0: पे
1: वाह वाह
0: यूं
1: वाह,
0: साथ
1: क्या
0: हम चलें
1: हाय
0: फर्रुख,
1: हाय, तुझे रदीफ बनाऊं
0: तुझे रदीफ बनाऊं
1: और
0: मैं
1: जवाब
0: काफिया
1: नहीं,
0: हो
1: सलाम का
0: जाऊं।
1: जवाब नहीं
0: क्या
1: है,
0: कहना है।
1: क्या
0: गजल की राह
1: वाह
0: पे
1: वाह
0: यूं
1: वाह वाह,
0: साथ
1: क्या
0: हम
1: कहना,
0: चलें
1: हाय
0: फर्रुख,
1: हाय, तुझे रदीफ बनाऊं
0: तुझे रदीफ बनाऊं
1: और
0: मैं
1: जवाब
0: काफिया
1: नहीं,
0: हो
1: सलाम का
0: जाऊं।
1: जवाब नहीं
0: क्या
1: है,
0: कहना,
1: क्या कहना,
0: तुझे रदीफ बनाऊं
1: मैं
0: मैं
1: काफिया
0: काफिया
1: हूं,
0: हो जाऊं,
1: बहुत खूब, क्या कहना,
0: तुझे रदीफ बनाऊं मैं
1: मैं
0: काफिया
1: काफिया
0: हो
1: हूं,
0: जाऊं।
1: क्या जाऊं।
0: एक गजल के एक मतला एक शेर
1: जी नाम
0: तरन्नुम में पढ़ देता हूं ताकि सामईन की खिदमत भी हो जाएगी और ये सफर जो है हमारा मुकम्मल हो जाएगा।
1: जरूर जरूर
0: एक मतला एक शेर बस
1: जी,
0: तरन्नुम पढ़
1: इनायत
0: देता,
1: कीजिए,
0: अर्ज करता हूं समाप्त करें।
1: इरशाद।
0: आज फिर चाय की मेज पर,
1: आज फिर
0: आज
1: चाय की
0: फिर
1: मेज
0: चाय
1: पर,
0: की मेज पर एक हसरत बिछी रह
1: आह आज फिर
0: गई,
1: चाय की मेज पे
0: एक
1: एक
0: हसरत
1: हसरत बिछी
0: बिछी रह
1: रह गई,
0: गई।
1: क्या कहना,
0: आज फिर चाय
1: वाह
0: की मेज पर
1: वाह वाह,
0: एक हसरत बिछी रह
1: क्या
0: गई,
1: कहने,
0: आज फिर चाय की मेज पर एक
1: क्या
0: हसरत
1: कहना,
0: बिछी रह
1: क्या कहने,
0: गई, प्यालियों ने तो लब छू लिए,
1: ओह क्या कहने,
0: केतली देखती
1: आहा,
0: रह
1: क्या कहना भाई, वाह
0: गई,
1: वाह वाह वाह, केतली देखती रह गई,
0: प्यालियों ने
1: प्यालियों
0: तो
1: ने तो लब छू
0: लब
1: लिए,
0: छू
1: बहुत बहुत, केतली देखती रह
0: लिए,
1: गई, वाह
0: केतली
1: वाह वाह,
0: देखती रह
1: क्या क्या अंदाज शेर का भाई,
0: गई।
1: वाह वाह वाह, बहुत
0: ये
1: खूब
0: शेर और सुन लें जरा इसका,
1: जी,
0: इस गजल का, ये मुझे
1: इरशाद,
0: बड़ा मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं ये शेर और आपको सुनाता
1: इनायत,
0: हूँ।
1: इरशाद, इरशाद।
0: आज फिर इश्क हावी हुआ
1: आज
0: आज
1: फिर
0: फिर
1: इश्क
0: इश्क
1: हावी
0: हावी
1: हुआ,
0: और मंजिल जुनू को
1: आहा
0: मिली,
1: क्या कहने, आज फिर इश्क हावी हुआ।
0: आज

0: आज फिर दिल ही पहले चला, अक्ल फिर सोचती रह गई। आज फिर दिल ही पहले चला, अक्ल फिर सोचती रह गई। हाथ मेरा हवा में हिला, उससे जिस दम मैं रुखसत हुआ।
1: क्या मंजर कैसी।
0: हाथ

0: गई। बहुत शुक्रिया।
1: बड़ी लग
0: इस महफिल मुशायरा में हमारे तमाम मेहमान शोरा, बिलखसूस ख्वाजा गुलाम उस्सकलैन समीत साहब और जहाज़ देवबंदी साहब और नदीम फर्रुख, मैं खुद, हम सब ने आपकी खिदमत में जो अपना कलाम पेश किया, अब आपसे हम रुख्सत होते हैं, इजाज़त दीजिए।
2: सामईन, अभी आप मुशायरा सुन रहे थे, निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब नदीम फर्रुख। सामईन, आपने मुशायरा सुना, आपको यकीनन शुआरा का कलाम पसंद आया होगा। अब अपने मेज़बान मोहम्मद अली कमाल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुशायरा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर।

सात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। अब से कुछ ही देर यानी रात्रि के 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार, 9:30 पर अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती, 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे, 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 11:10 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात्रि के 8:30 होने को हैं, अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। 8:30 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं जुबिन गर्ग की आवाज़ में ये गीत

जुबिन गर्ग की आवाज़ में अभी आपने खूबसूरत गीत सुना, और अब सुनते हैं अगला गीत जुबिन नौटियाल की आवाज़ में फिल्म काबिल से।

और अब सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, और साथ ही गायक कलाकार हैं उदित नारायण, फिल्म का नाम

0: अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ में अभी आपने एक गीत सुना फिल्म लगान से। इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आपसे कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
3: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीबी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। बल्कि 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
4: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद के निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
5: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
6: टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री,
7: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
6: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
1: हुरमुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसैलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसैलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसैलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा एचडी कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही PV सिंधु विश्व की 9वें नंबर के खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की

0: Now, before we end the bulletin, the headlines once again. 72nd National Film Awards announced. Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370. Mammootty for Brahmayugam and Kartik Aaryan for Chandu Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Meerabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton bearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। बहत्तरवीं कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए ममूती और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरक तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के जो 20 सरकार ने पार्लियामेंट नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे, उन्हें लोकसभा में अलहदा ग्रुप के तौर पर बैठने के लिए स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है। अब नए हुरमुज के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अहम बुनियादी ढांचे और फौजी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ओलंपिक खेलों में तमगे जीतने वाली मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहीन ग्लासगो में होने वाले दौलत मुश्तरक खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भारत की परचम बरदार खिलाड़ी होंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला है। आज शाम नई दिल्ली में कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान करते हुए फीचर फिल्म जुमरे की ज्यूरी के चेयरमैन जयराज ने कहा कि ममूती और कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्मों ब्रह्मयुगम और चंदू चैंपियन के लिए बेहतरीन अदाकार के जुमरे में कौमी फिल्म अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि फिल्म 370 में उनकी अदाकारी के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म के ज्यूरी के चेयरमैन असीम कुमार सिन्हा ने कहा कि सुमेरा रॉय की हिदायतकारी में भंगार को बेहतरीन गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेहतरीन मुख्तसर फिल्म मराठी में हमसफर रही। उन्होंने कहा कि बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए आनंद एल राय को दिया जाएगा। बेहतरीन फिल्म क्रिटिक अवार्ड संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा में बेहतरीन तहरीर के लिए के प्रदीप कुमार शेट्टी को उनकी कन्नड़ किताब के लिए अवार्ड दिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सपोर्टिंग रोल के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को बेहतरीन मौसीकार का अवार्ड मिलेगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना कथा कादु को बेहतरीन बच्चों की फिल्म का अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। मजमुई तौर पर तफरी फराहम करने के लिए काल्की 2898 एडी को बेहतरीन फीचर फिल्म करार दिया गया है। दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के उन 20 बागी अरकान पार्लियामेंट के लिए ऐवान में अलहदा से बैठने को मंजूरी दे दी है जो नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI में शामिल हुए थे। जनाब बिरला ने शिवसेना UBT के 6 अरकान पार्लियामेंट के महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में जम किए जाने को भी मंजूरी दे दी है। 6 अरकान पार्लियामेंट के शामिल होने के बाद पार्लियामेंट के ऐवान जेरी में शिवसेना के अरकान की तादाद 7 से बढ़कर 13 हो गई है। सरकार ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल कल सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। ये इजलास पीर से शुरू हो रहा है। कल की मीटिंग के दौरान सरकार दोनों ऐवानों का कामकाज खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से तआवुन की अपील करेगी। पार्लियामेंट का मानसून इजलास अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। मिशन

0: आगमन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर तैयार करदा मदार में जाने वाला रॉकेट विक्रम 1 इंजन का आखिरी मरहला मुकम्मल करने के बाद और 450 किलोमीटर बुलंद मदार में पेलोड कामयाबी से पहुंचाने के बाद कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया है। इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में वाक़ सतीश धवन खलाई मरकज से आज 12:05 पर खला में भेजा गया। इस कामयाबी के साथ भारत निजी शोबे के जरिए मदार में रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर स्काई रूट एरोस्पेस को मुबारकबाद दी। उन्होंने फ़ोन पर स्काई रूट की टीम से बात की और इस तारीखी खलाई कामयाबी को सराहा।
1: और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में रामोल गटराड रोड पर आतिशबाजी का सामान तैयार करने और इसे प्रोसेस करने के यूनिट में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की अमवात पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मकामी इंतजामिया मुतासरा कारकुनों को हर मुमकिन इमदाद फराहम कर रही है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री के अलमनाक वाक़े पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
2: आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने के अलमनाक वाक़े के तनाजुर में तेजी के साथ कार्रवाई करने वाली फोर्स के अहलकार फौरी तौर पर वहां पहुंच गए और आग के शोलों में घिरे हुए मकाम पर फंसे हुए और जख्मी होने वाले कारकुनों को बचाकर बाहर निकाला। हलाक होने वाले कारकुनों की लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। जख्मियों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। अहमदाबाद के फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर समेत आला ओहदेदारों ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उस मकाम का दौरा किया। रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने ताजियत का इजहार करते हुए मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 4-4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। पुलिस की इब्तदाई छानबीन से मालूम हुआ है कि आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली ये फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर चल रही थी। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: आंध्र प्रदेश में पोलावरम जिले के गोला गुडयम गांव के नजदीक 5 माहीगीरों के गोदावरी दरिया में डूबने से मौत हो गई। मालूम हुआ है कि ये माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में गए थे कि पानी के तेज बहाव में बह गए। 5ों माहीगीरों की लाशें दरिया से बाहर निकाल ली गई हैं। हुक्काम ने बताया कि ये सभी एक ही गांव के रहने वाले थे और इनमें से 3 खवातीन थीं। इस वाकये की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू की गई है। रियासत के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है और सोगवार कुनबों से ताजियत जाहिर की है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल वसीले से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया जो रामनगर को देहरादून से मरबूत करने वाली पहली बराह रास्त एक्सप्रेस ट्रेन है। इस नई ट्रेन की शुरुआत से उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल खित्तों के दरमियान रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की खातिर आवाम की देरीना मांग पूरी हो गई है। लोगों से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि रामनगर देहरादून एक्सप्रेस दोनों खित्तों के दरमियान रेल कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करेगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका

0: ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे, और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: शिमाली रेलवे ने जम्मू डिवीजन में कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन बाजाब्ता तौर पर रखने का ऐलान किया है। इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया कि इस सिलसिले में जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि मस्कुरा स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जो पहले के कोड KTHU की जगह लेगा। दीगर कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल में सिलीगुड़ी में जुमा गाज के मकाम पर सरहदी हिफाजती फोर्स BSF कैंप का दौरा किया और BSF के अहलकारों के साथ गुफ्तगू की। जनाब अमित शाह ने पौधे भी लगाए और प्रहारी सम्मेलन में शिरकत की। सरहदी इलाकों को मुस्तहकम करने, पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन, नीज अमन कानून की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा की अहलिया चेन्नम्मा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि चेन्नम्मा को उनकी इंकिसारी और माशरे की खिदमत के उनके जज्बे के लिए याद किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि दुख की इस घड़ी में वो जनाब देवेगौड़ा और उनके पूरे कुनबे के साथ हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि चेन्नम्मा अपने कुनबे के लिए मजबूती, वक़ार और पुख्ता अज़्म की अलामत थीं। अमले अवामी शिकायत और पेंशन के महकमे के वजीर ममलिकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शिकायत के इजाले के तहत शिकायतों को निपटाने से आगे कार्रवाई की जानी चाहिए और पेंशन याफ्ता अफराद की तशवीश और उनकी उमंगों पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। डॉ सिंह ने कहा कि पेंशन से मुतालिक तनाज़ियात इंतजामी तरीके से हल किए जाने चाहिए ताकि पेंशन याफ्ता अफराद को अदालतों से रुजू करने पर मजबूर न होना पड़े। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में पेंशन मुकदमात के बारे में दूसरी कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए कही। ईरान के कानूनी उमूर और बैन अलावामी उमूर के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने अमरीका पर समझौते की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए ऐलान किया है कि ईरान ने अमरीका के साथ हाल ही में दस्तखत किए गए इस्लामाबाद मुफाहमतनामे के तहत अपने वादों और अहद को मुअत्तल कर दिया है। ईरान के मीडिया के मुताबिक जनाब गरीबाबादी ने कहा कि तरफेन मुजाकरात कर रहे थे, लेकिन अमरीका ने बकौल उनके जारहाना कार्रवाई करके मुफाहमतनामे के तहत अपनी जिम्मेदारियों की मुबैना खिलाफ वर्जी की है। अमरीका और ईरान ने आज भी एक दूसरे पर हमले किए। आबनाए हुरमुज के मामले पर लड़ाई में शिद्दत आ गई है। गुज़श्ता 2 दिन में खारे पानी को साफ करने के प्लांट पर ये दूसरा हमला है, जिससे कुवैत में तशवीश बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वो तकरीबन 90% पीने के पानी के लिए इसी तरह के प्लांट्स पर इन्हिसार करता है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल ज़ैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 रोज के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, उड़ीसा और मुल्क के शिमाल मशरक़ी हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। दिल्ली के लिए कल आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की गई है। भारतीय ओलंपिक्स एसोसिएशन IOA ने आज ऐलान किया है कि ग्लासगो में दौलत मुश्तरक खेलों की इफ्तिताही तकरीब में ओलंपिक में तमगा जीत चुकी मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहिन भारतीय परचमबरदान होंगी। इन खेलों की इफ्तिताही तकरीब इस माह की 23 तारीख को OVO हाइड्रो एरिना में होगी। एक प्रेस रिलीज में IOA की सदर PT उषा ने कहा कि यह एजाज भारतीय खेलों में उनके ग्रां कदर तावन को तस्लीम करता है और उन्होंने खेलों में पूरे भारतीय दस्ते को कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। फीफा आलमी कप में आज रात मियामी स्टेडियम में तीसरे मकाम के लिए फ्रांस और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। स्पेन के खिलाफ सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद आलमी कप में फ्रांस की खिताबी मुहिम खत्म हो गई है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म Article 370 के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। ब्रह्मा योगम के लिए ममूती और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरक तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के जो 20 सरकार ने पार्लियामेंट नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे उन्हें लोकसभा में अलहदा ग्रुप के तौर पर बैठने के लिए स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है। अबनाए हुरमुस के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अहम बुनियादी ढांचे और फौजी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ओलंपिक खेलों में तमगे जीतने वाली मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहीन ग्लासगो में होने वाले दौलत मुश्तरक खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भारत की परचमबरदार खिलाड़ी होंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
3: Lights, sound, camera, action!

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में
1: के के डोले की
0: स्मृति शेष में नमन फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार के भाग्यराज, और जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता भारती राजा।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्णस्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में

सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमिकाओं में थे।

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है, जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
2: तो सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, लीमू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइड सगन बिचार दे।
4: क्या खड़ा होगा यार?
5: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुईं। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थीं। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष।

0: स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक। दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी, लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थीं विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदा बाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में। गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पिस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
1: तूने जरू की सूरत देखी है? उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष ने अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने? बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, नहीं तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है, पन खुदा सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर,
2: इसे दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। कड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा।

0: पहलाज निहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: पहलाज निहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
2: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज निहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण, सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबो गरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल, सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी।

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्ना वीडू और इधु नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भागीराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूबहू रीमेक थी।

गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

के भाग्यराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा। आउटडोर में न अच्छी लाइटिंग होती है, न आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बीताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रुज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा, सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र ICCR के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, BHU कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ड जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड USA से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय देवव्रत मिश्रा। Born into distinguished music gharana of Varanasi, Devbrat Mishra received initial music training from his mother Pramila Mishra and underwent formal training in the sitar under the guidance of his father Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashvani, Devbrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras gharana from his grandfather, the great Thumri exponent, Pandit Mahadev Prasad Mishra, an influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devbrat Mishra is also an empaneled artist of ICCR. He has delivered successful sitar performances on numerous prestigious platforms, both in India and abroad. Notable among these are the Tansen Sangeet Samaro, Sankat Mochan Sangeet Samaro, Saptak Sangeet Samaro, and the International Dhrupad Mela. He has captivated audiences with his sitar recitals in many countries, such as USA, Canada, Spain, France, Italy, and Germany. Devbrat Mishra has been honored with the National Youth Festival Award, Swarmani Alankaran, Kashi Ratna, Sangeet Shikhar, BHU Kaustubh Samman, German Best Jazz Critic Award, and the World Music Visionary Award, USA. In tonight's program, accompanying him on tabla is Prashant Mishra, an A-grade artist of Akashvani. Devbrat Mishra is beginning his sitar recital tonight with Raag Jog, Vilambit and Dhrutgat set to 3 taal.

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार बाई देवव्रत मिश्रा इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। अकंपनीइंग हिम ऑन तबला वॉज प्रशांत मिश्रा।

0: यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जी वी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातात्र रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अडप्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द 72nd नेशनल फिल्म

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। श्रोताओं, रात्रि के 11:10 हो गए हैं और समय हो गया है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। आपकी फरमाइश में अपने सभी श्रोताओं का मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं और अब से लेकर 50 मिनट तक मैं रहूंगा और साथ ही हमारी साथी कुसुमलता जो भी हैं इस कार्यक्रम में वो भी रहेंगी आपके साथ। और कार्यक्रम की शुरुआत जो करते हैं वो कुछ खूबसूरत बातों और कुछ खूबसूरत अंदाज़ों से करते हैं, तो उसी के तहत मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि श्रोताओं, जैसे कहते हैं कि शब्द जहाँ अपनी सीमा पर पहुँच जाते हैं वहाँ से संगीत बोलना शुरू करता है। कोई धुन हमें बचपन की गलियों में ले जाती है, कोई गीत पहली मोहब्बत की याद दिला देती है, तो कोई नगमा जीवन के संघर्षों में नई ऊर्जा भर देता है। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल होता होगा। तो अगले 50 मिनट तक हम यादों, एहसासों और सुरों के ऐसे ही खूबसूरत सफ़र पर रहेंगे साथ। आपके भेजे संदेश, आपकी फरमाइशें और सदाबहार फिल्मी गीत इस शाम को और भी खास, माफ़ कीजिएगा, इस रात को और भी खास बनाएंगे। तो आइए इस संगीतमय सफ़र की शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है आशा भोसले ने। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने ये सुना। और श्रोताओं, संदेशों का सिलसिला भी लगातार जारी है, और कुसुमलता जी पहला संदेश हमें पढ़ के बताएंगे।
1: संदेश तो हम पढ़ेंगे ही अमित, लेकिन गाने के बोल थे जाइए आप कहाँ जाएंगे। आशा भोसले के स्वर में हमने ये बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, और वाकई हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि ये 11 से 10 लेकर 12 बजे तक का समय होता है आपके साथ का, आपके साथ यानी हमारे प्यारे से श्रोताओं के साथ। जी हाँ, और कैसे जा सकते हैं, इतने प्यारे प्यारे संदेश जो आप भेज रहे हैं जिन्हें हम पढ़े बगैर कहीं जा ही नहीं सकते। देखिए ना, अनिल जैन जी ने हमें संदेश भेजा है, कहते हैं कैसे हो आप भाई, हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं। माल्यान सरधना मेरठ से अनिल जैन जी के साथ हैं। संयम जैन, जैन साहेब, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम जैन, आदि जैन। इसके अलावा हमारे पास जो अगला संदेश है, कहते हैं आदरणीय आरजे जी, सादर नमस्कार जी। भाई आपके अपने दोनों आरजे कुसुमलता और अमित, हम दोनों की तरफ से भी इन्हें सादर नमस्कार, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: और कहते हैं कि हम आपका कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर लाइव सुन रहे हैं, क्या बात है। गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर कहते हैं किसी भी गीत में शामिल करें, भाई सभी गीत आपके हैं। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में संदेश भेजने के लिए। और देखिए अगला संदेश हमें भेजा है, कहते हैं प्रसारक जी की सेवा में नमस्कार। भाई आपको भी नमस्कार, आपके प्रसारक हैं कुसुमलता और अमित। जी हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, आप हमें हमारे नाम से बुलाइए ना। कहते हैं डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी, सदानंद कुमार, गौरव मंदुरकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और इसके बाद संदेश है भाई मूसा मोहसिन का, इनके साथ है अशोक वर्मा, राजकुमार बोढ़ाना, सनावत से। और इसके बाद जो संदेश मिला वो है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का, इनके साथ और भी हैं। और इस भाई इस संदेश हमें बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने होंगे, इनके साथ है राम लखन, ये दोनों ही हैं, इन्होंने बाकी बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं। चलिए हम अगला

0: संदेश ले लेते हैं। फरमाइशकर्ताओं के नाम हैं जाकिर, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानुबी, बादशाह और पूरा मुलानी परिवार। कहते हैं प्यार भरा आदाब, आपको भी आदाब। कहते हैं नमस्कार बहिना जी, क्या बात है। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा जी हैं हमारे साथ, संदेश भेज रहे हैं और आगे अमित कुछ कहना चाहते हैं।
1: हाँ, संदेशों का सिलसिला लगातार जारी है और चूंकि संदेशों की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है और सब संदेशों को शामिल करना उतना सरल भी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अपने दिल की बात भी हम कहना चाहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: कि कुसुम, जैसे कि जिंदगी की भागदौड़ में अक्सर हम खुद से बात करना भूल जाते हैं, लेकिन संगीत हमें कुछ पल रुकने, मुस्कुराने और भीतर झांकने का अवसर देता है।
0: बिल्कुल।
1: इसी एहसास के साथ अगला एक खूबसूरत प्यारा सा गीत सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।
0: बिल्कुल।

0: खोया खोया चांद। मोहम्मद रफी की आवाज में आपने बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गीत सुना अभी।
1: भाई संगीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि बिना कुछ कहे दिल की बात कह देता है।
0: बिल्कुल सही कहा कुसुम जी आपने कि संगीत जो होता है वो दिल से दिल तक दस्तक देता है, और जब भी संगीत की बात होती है वो हमारे किसी ना किसी ऐसे तार को छेड़ देती है जिसका जो संबंध है हमारे अतीत से, हमारे विचारों से, हमारे किसी विशेष एक पल से भी जुड़ा हुआ होता है।
1: कहते हैं ना कि जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की नहीं, कुछ अच्छे लोगों की और अच्छे गीतों की ज़रूरत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा कुसुम आपने कि अच्छे लोग अगर ज़िंदगी में हो और अच्छे गीत ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाती है, और संदेशों का सिलसिला भी लगातार जारी है। और संदेश हमें मिला है जिला हंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोखड़े, नंदा बोखड़े, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव टोरोवाल ज़िला नवाशहर पंजाब से, गगनदीप, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी भूमिका और वाणी। और इसके साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा। इसके अलावा अगला संदेश हमें मिला है
1: बहुत सारे संदेश
0: लगता
1: हमें
0: है कि
1: ऐसे
0: कुछ
1: हैं कि हमें
0: रिपीट हो रहे
1: लगातार
0: हैं बहुत
1: रिपीट
0: ज़्यादा।
1: मिल रहे हैं। देखे ना, ये प्यार है हमारे श्रोताओं का हमसे कि कहते हैं कि नहीं, एक बार से हमारा मन नहीं भरा, हम कई बार ही संदेश
0: अगला
1: भेजेंगे।
0: संदेश जो है वो
1: हाँ, और ये
0: मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी का, और गांव लोहखड़ ठाकुर वाला से स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज का।
1: और इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अल्ताफ, खतीजा बेगम, आफरीन कौसर और नीलोफर फातिमा का। कहते हैं शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए आप हमारी बधाई अवश्य ही स्वीकार करें, धन्यवाद। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से ये बधाई भेजी है हमें अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने।
0: ज़िला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिव गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपा का एक संदेश मिला है। बहुत ही रंग बिरंगा सा संदेश था।
1: हाँ, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा कलर करके ना भेजें, क्योंकि उससे
0: हाँ
1: हमें आपका मैसेज तो बहुत सुंदर लिखता है लेकिन
0: थोड़ा,
1: थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा
0: हाँ
1: समस्या आती है, तो सिंपल ही भेजें। और ये हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अलकबीर।
0: और अगला संदेश हमें मिला है बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना वीना मस्कीन, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु खुराना का संदेश हमें
1: तुलसी
0: मिला।
1: मस्कीन जी के हमें लगातार संदेश मिलते हैं, लेकिन हम उनसे कहेंगे कि कृपया आप कार्यक्रम सुने, क्योंकि आप जिन होस्ट के नाम लिखकर भेज रहे हैं वो शायद अब नहीं है, अब हैं कुसुम और अमित।
0: तो जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्टो का हमें संदेश मिला है।
1: जी, और ये संदेश आया है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से, सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत, सानवी और हर्षिता का।
0: और अगला संदेश हमें मिला है गांव फरासी जिला हिसार से, राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार, और लिखते हैं एक ही कलाकार में आज प्रियंका, एक माफ कीजिएगा।
1: वही बात है कि आप हमें संदेश इस तरह से भेजे कि हमें ठीक लगे। देखिए, अनिल मोहन जी ने भेज ही दिया, कुसुम जी और अमित जी, जी धन्यवाद आपका। और जसपुर से, उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, प्रवीन, माहिरा नूर।
0: और ये संदेश हमें मिला है।

0: है, रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा है कि संदेश बार बार आ रहा है, लेकिन शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन, रोशनी और बिरबी प्रियांशी का संदेश हमें मिला है। और
1: कहते हैं आरजे अमित जी थोड़ा सा माइक के नज़दीक आ जाइए। मुझे भी अभी अमित मैं कहने ही वाली थी, मुझे लग रहा था कि आप जो संदेश पढ़ने के लिए स्क्रीन के आगे हो गए, लेकिन माइक से थोड़ा सा
0: हाँ,
1: दूरी बन गई है आपकी।
0: मैं इसको कर लिया है अभी, लेकिन अगला संदेश लिखा है। नमस्कार अमित भाई और कुसुम बहना जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कदर करना सीख लीजिए, ना जिंदगी वापस आती है ना जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती। बहुत ही खूबसूरत लाइनें इन्होंने लिखी, चंडीगढ़
1: वाकई।
0: सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा
1: तो
0: का
1: अब एक
0: संदेश था।
1: गीत हम सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को, क्योंकि बहुत सारे नाम हो गए, लेकिन हम आगे भी आपके संदेश लेंगे। फिलहाल सुनते हैं प्यारा सा गीत।
0: तो अगला गीत जो है वो किशोर कुमार की आवाज में,
1: बहुत ही बगैर रिमझिम गिरे सावन, बहुत ही प्यारा सा गीत है, लीजिए सुनते हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल खूबसूरत सा प्यारा सा गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। और कुसुम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: अमित, मेरा कहना ये है कि जिंदगी में अगर संगीत ना हो तो शायद खुशियों के रंग भी थोड़ा फीके लगे।
0: बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि संगीत के बिना जो है वो जीवन एकदम बिल्कुल ऐसा नीरस हो जाता है। कि ये उस पेंटिंग की तरह है जिसमें चित्रकार ने चित्रकारी तो कर दी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसमें रंग भरना भूल गया। और

0: कलाकार अपनी चित्रकारी में रंग भरता है तो संगीत भी जीवन में वही रंग का मतलब वही रंग भरने का काम करता है, जिससे ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खूबसूरत और इतनी प्यारी सी हो जाती है कि ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल जाता है।
1: वाकई। और कभी कभी कोई गीत हमें उस दौर में वापस ले जाता है जहाँ हम फिर से जीना चाहते हैं, क्यों, है ना?
0: बिल्कुल सही बात है। और संदेशों का सिलसिला लगातार जारी है और संदेश हमें भेजा है अहमद फूलवाले ने, और इसके बाद अगला संदेश हमें मिला है।
1: ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे का, और ये है गोविंदगढ़ माझी वाला, श्री करणपुर राजस्थान से, राजू टुटेजा, खुशी उर्मिला, खुशदिल, गुड्डू, जीनू, मनु, शिव सेठी, करणपुरी, स्माइल टुटेजा, पोटियागला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक, सीमा, और ये अगला संदेश है कस्बा गन्नौर, यूपी से फारूक अली अंसारी, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा।
0: फारूक अली। और अगला
1: मुकेश
0: संदेश,
1: भट्टा जी का संदेश हमें मिल चुका है कनेरा मोहल्ला
0: पटियाला से।
1: जी, इनके साथ हैं नीलम भट्टा, निहारिका भट्टा, हार्दिक वंश भट्टा।
0: और अगला संदेश हमें मिला है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति, रानी, गुरमंत।
1: अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद, और उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। जसपुर उत्तराखंड से रियासत नाजमा, रियाज, रिफाकत, इनका
0: मुझे
1: संदेश हम
0: लगता है
1: पहले
0: ऐसे
1: भी
0: हम
1: ले
0: पहले
1: चुके
0: भी ले
1: हैं।
0: चुके
1: हाँ
0: हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और अगला संदेश हमें जो मिला है वो है शाहू नगर यवतमाल से राहुल, सरला और बेबी प्रियांशी का संदेश हमें मिला है। और संदेशों का सिलसिला लगातार जारी है और एक संदेश हमें मिला है
1: एयरपोर्ट रोड, वंदना नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी हैं ये साथ में। बहुत सारे संदेश इन्होंने एक साथ भेज दिए।
0: बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर, आयशा अहमद, इकबाल अहमद, अखलाक, आमना, रबिया, आशु, सदफ, आरजू का संदेश हमें मिला है। और अगला संदेश हमें मिला है
1: समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह जी ने संदेश भेजा।
0: और मारहटा दरवाज़ा एटा से नबी हसन, सहनाज, नवेद, सुहेल, अनम और रसीद का संदेश हमें मिला है। किदवई नगर सिद्धूपुरा से टाउन से
1: जुबैर अली खान और सभी अंजुमन खान का संदेश हमें मिला। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू।
0: हाँ ये कुछ लाइनें भी लिख रहे हैं कि बरसात की हर बूंद धरती को नया जीवन दे जाती है और भीगी हुई हवाएं हर दिल में नई उम्मीद जगा जाती है। मुझे
1: क्या
0: लगता
1: बात
0: है
1: है।
0: कि रिमझिम गिरे सावन का जो गीत का असर है वो इन पर दिखाई दे रहा है। और अगला इनका संदेश जो है वो आया है हमें।
1: राजेश कुमार मेहरा, नंद किशोर, विनोद अर्जुन, दुर्गा शंकर, सिकंदर, राहुल, चंदू देवराज, लक्ष्य एवं समस्त ग्रामवासी, ग्राम बकानी खुर्द, आंवली कला, भवानी मंडी, झालावाड़, राजस्थान से।
0: लगता है कि संदेश जो है वो रिपीट ज़्यादा हो रहे हैं।
1: आदर्श नगर मलोट कैंप से है ये डॉक्टर रमेश कुमार
0: नहीं,
1: जजौरी।
0: पटेल नगर मलोट से डॉक्टर
1: हाँ
0: रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जजोरिया और गुड्डू का संदेश हमें मिला है।
1: और ये कहते हैं, ये संदेश है नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहाँ, तलत जहाँ, फरत जहाँ, रिफत जहाँ, नुजत जहाँ, साजिया शाहिन, नाजिया नूरी नाज, इन सभी का हमें संदेश मिला।
0: कुसुम कहते हैं हर गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है, और किसी के लिए पहली मुलाकात, किसी के लिए दोस्ती, तो किसी के लिए बचपन की मीठी यादें संजो के लेके
1: जी
0: आते हैं। ये
1: बिल्कुल
0: संगीत की खूबसूरती भी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो अगला खूबसूरत प्यारा सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और

0: तो बहुत ही खूबसूरत गीत, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम था तीन देवियां।
1: क्या बात है, फिल्म का नाम तो आपने बताया लेकिन श्रोताओं के नाम मैं बताऊंगी।
0: बिल्कुल
1: तो देखिए ना, हमारे पास संदेश मिला हमें राजीव वर्मा, दिग्दर्शन आर कुमार, पूनम गगनेजा का, बाकी क्या आप बताएं।
0: संदेश हमें मिला है वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी और आरती का, लवली और आरती का संदेश हमें मिला है। और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित का संदेश हमें मिला है। और इसके साथ ही अगला संदेश है
1: गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, ये हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का। ये शीशपाल वर्धन जी हैं,
0: शीशपाल वर्धन जी।
1: वर्धन जी हैं, इन्होंने संदेश भेजा हमें। और गन्नौर से आदिल कुमार, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, शुक्रिया धन्यवाद आपका।
0: और फागुराम यादव का संदेश हमें मिला है, लिखते हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी।
1: सतीश अनेजा जी का हमें संदेश मिला, इनके साथ है बिमला अनेजा, चंडीगढ़ सिटी से। और इनके अलावा हमें बहुत सारे संदेश और भी मिले हैं, और बराबर लगातार हमें एक के बाद एक रिपीटेशन वाले संदेश भी मिले हैं।
0: बिल्कुल
1: फिलहाल एक
0: बिल्कुल।
1: नया संदेश है ग्राम पंजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से, सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया का।
0: तो कुसुम, जैसे कि हम गीत संगीत की बात कर रहे हैं कि अक्सर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद से ही बातें करना भूल जाते हैं। अक्सर हमने नोट किया होगा कि हमारे जिंदगी के अंदर इतनी चीज़ें चल रही होती हैं कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तमाम जो चुनौतियां हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है, और इस
1: बिल्कुल
0: बीच में कहीं ना कहीं हम जो है संगीत को सुनना भूल जाते हैं या संगीत को थोड़ा दरकिनार कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि संगीत बहुत ज़रूरी है जीवन
1: वो
0: में।
1: हो जाता है, हम करते तो नहीं है लेकिन हम जो इतने बातों में उलझे रहते हैं उन उलझनों में कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। लेकिन अब मत भूलिएगा और बहुत अच्छा सा गीत सुनवा दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा प्रयास है कि अगला गीत जो है वो सुखविंदर सिंह और साधना सरगम की आवाज़ में, इनको हमारे श्रोताओं को बहुत ही पसंद आएगा। तो सुनते हैं अगला गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, कितना अजीब है ना कि समय बीत जाता है, लोग बदल जाते हैं,

मौसम बदल जाते हैं, लेकिन कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते। वे हर बार सुनने पर वही एहसास, वही मुस्कान और वही अपनापन लौटा लाते हैं जैसा आपने उसको उस दौर में, उस समय में सुना था। शायद यही संगीत की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये दूरी नहीं देखता, उम्र नहीं देखता, बस सीधे दिल पर दस्तक करता है। और चूंकि इस घड़ी की सुइयां भी बता रही है कार्यक्रम को संपन्न करने की, लेकिन आपको इस खूबसूरत प्यारे से गीत के साथ छोड़े जाते हैं। और इस गीत को सुनिए जिसे अपनी आवाज से सजाया है कुमार सानू, और चित्रा ने। तो आइए सुनते हैं क्रिमिनल फिल्म से ये गीत।

0: इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। रात्रि के 12 बजने को है, इन मीटरों पर हमारे प्रसारण अब संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को आपसे कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी

0: का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचान नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राद रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
1: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों के संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसद के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। जाने माने उद्योगपति रविकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी पुस्तक लीडिंग फ्रॉम द बैक टू अचीव इम्पॉसिबल की एक प्रति भी भेंट की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nipunika Shahid. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards yesterday in New Delhi, Chairman of Jury Feature Film, Jairat said Mammootty and Karthik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahmayugam and Chandu Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370. Chairman of Jury Non-Feature Film Asim Kumar Sinha said Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Featuring Film Award. Best Short Film is Hamsafar in Marathi. He said Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Pratik.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 12:10:15 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में। और आज के एपिसोड में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सरिता, लाई हूं आपके लिए सुरों का खूबसूरत सफर। जी हाँ, ये वो कार्यक्रम जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए किसी खूबसूरत बेहतरीन ऐसे कलाकार को कि जिसका गीत संगीत होगा आपके साथ, साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी के कुछ सुहाने पल भी हम साझा करेंगे आपके साथ। तो आज जिस कलाकार के सुरीले सफ़र पर चलेंगे हम, वो हैं बॉलीवुड के सफल और पॉपुलर संगीतकार, जी हाँ, प्रीतम चक्रवर्ती। और प्यार से इन्हें हम प्रीतम के नाम से भी जानते हैं। और आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे प्रीतम के जीवन और उनके संगीत में सफ़र के बारे में। लेकिन कार्यक्रम का आगाज़ इस खूबसूरत से गीत के साथ।

दोस्तों सुरों का सफ़रनामा में इस सफ़र में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आप मेल कर सकते हैं हमें ibradiodelhi@gmail.com। जी हाँ, ये वो माध्यम है जिसके ज़रिए आप इस सफ़र में हमारे हम सफ़र बन सकते हैं।

दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कलाकार प्रीतम की। जी हाँ, सुरों का सफ़रनामा में हम प्रीतम, संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि उनका जन्म 14 जून 1971 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रबोध चक्रवर्ती एक संगीत शिक्षक थे और बचपन से ही जो घर का वातावरण था वो संगीत से सराबोर था। अगर उनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने सेंट जेम्स स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा की, वहीं प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की और बाद में साउंड रिकॉर्डिंग और इंजीनियरिंग सीखने के लिए FTII पुणे चले गए।

दोस्तों, प्रीतम बॉलीवुड के सबसे सफल और प्रसिद्ध संगीत निदेशक, संगीतकार और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं। पिछले दो दशकों से भी अधिक समय में उन्होंने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में ज़बरदस्त संगीत दिया है और उस संगीत को, जी हाँ, श्रोताओं ने सराहा है।

दोस्तों प्रीतम अपनी वर्सटाइल संगीत शैली के लिए तो जाने ही जाते हैं, साथ ही साथ उन्होंने हाई एनर्जी डांस नंबर्स से लेकर दिल छूने वाले रोमांटिक गानों तक हर तरह का संगीत दिया था। उनके म्यूजिक की खासियत ये थी कि वे भारतीय शास्त्रीय संगीत को भी पाश्चात्य रॉक पॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स के साथ बहुत ही खूबसूरती से जोड़ते थे। साल 2004 में आई फिल्म धूम से उन्होंने इंडस्ट्री में एक बड़ा धमाका किया। जी हाँ, ये वो फिल्म थी जिसमें उन्हें ब्रेक मिला म्यूजिक कंपोज करने का। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक पूरे देश में बहुत बहुत बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और लोगों ने इसे खूब सराहा। इस गीत को आज भी लोग सुनते हैं तो पार्टी में चार चांद लग जाते हैं। और ये वो गीत जिसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आइए वही गीत सुनते हैं, फिल्म धूम का टाइटल ट्रैक।

दोस्तों, जनवरी 1993 में प्रीतम ने साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड इंजीनियरिंग के एक कोर्स के लिए पुणे में फिल्म और टेलीविजन संस्थान में दाखिला लिया था। इस दौरान हंगरी के फिल्म निर्माता इस्तवान वोल, जी हाँ, उनकी फिल्म आ रही थी और उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार करनी थी उसके संगीत की रचना करने के लिए। प्रीतम को मौका उन्होंने दिया और उन्होंने संगीत सिद्धांत, स्वर संगति और रचना की शिक्षा ली थी ख्याल गायक वॉरेन सैंडर्स से। उन्हें अफ्रीकी संगीत का भी अच्छा खासा ज्ञान था और इन सभी का मिला जुला जो असर था वो हमें देखने को मिला उनके, जी हाँ, गीतों में। तो अगला जो गीत है उसका आनंद लीजिए।

दोस्तों, प्रीतम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मुंबई में रहकर विज्ञापनों के लिए जिंगल लिखने शुरू किए। प्रीतम को पहला मौका मिला संजय गद्वी की, जो फिल्म थी तेरे लिए, 2001 में आई थी ये फिल्म। संजय गद्वी ने जिसे निर्देशित किया था और इस फिल्म में संगीत निर्देशक थे जीत, जी हाँ, इंद्रजीत गांगुली, और उनके साथ प्रीतम। ये फिल्म तो उतनी नहीं चली, लेकिन इस फिल्म के जो गीत थे, उन गीतों को पब्लिक ने खूब सराहा था। और उसके बाद तो हमने आपको बताया है कि 2004 में धूम के संगीत ने चारों ओर धूम मचा दी। उसके बाद एक लंबी झड़ी लग गई उनके खूबसूरत गीतों की, जिनमें फिल्म चॉकलेट, गरम मसाला, गैंगस्टर के लिए उन्होंने खूबसूरत संगीत दिया, और बाद में धूम 2 और लाइफ इन अ मेट्रो के लिए भी बहुत ही खूबसूरत संगीत दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें हम बात करें, जब वी मेट की, रेस की, बिल्लू, लव आजकल, गोलमाल रिटर्न्स, तुम मिले, अतिथि तुम कब आओगे, बदमाश कंपनी, राजनीति, खट्टा मीठा, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और इसके अलावा बहुत बहुत सारी बेहतरीन फिल्में और बेहतरीन संगीत।

दोस्तों प्रीतम को साल 2007, 2008, 2009 और 2010 में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के स्टार स्क्रीन पुरस्कार, आईफा सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। लव आजकल में उनके संगीत के लिए 2010 में उन्हें आईफा पुरस्कार, जी सिने अवार्ड्स और अप्सरा प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और उन्होंने ये पुरस्कार जीता भी। फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी, जी हाँ, अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म में अपने संगीत के लिए उन्होंने रेडियो मिर्ची वर्ष का संगीतकार पुरस्कार भी जीता। और अगला जो गीत है वो इसी फिल्म का है। इंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से म्यूजिकल ट्रैक को।

दोस्तों, अरिजीत सिंह को बॉलीवुड में पहला ब्रेक किसने दिया था आप जानते हैं? जी हाँ, प्रीतम जी। ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने अरिजीत सिंह को बॉलीवुड में पहला ब्रेक दिया था। फिल्म मर्डर 2 का गीत फिर मोहब्बत अरिजीत सिंह ने प्रीतम के लिए ही रिकॉर्ड किया था। और इसके बाद बर्फी का गीत आया और ये जवानी है दीवानी, और भी बहुत सारे ऐसे गीत थे जो अरिजीत ने गाए और म्यूज़िक कंपोज दिया किया प्रीतम ने। अरिजीत को प्रीतम ने सुपर सिंगर बना दिया। बॉलीवुड की सबसे कामयाब सिंगर कंपोज़र की जोड़ी की अगर बात की जाए तो अरिजीत और प्रीतम दाजी हैं। दोस्तों, सालाना करोड़ों का बिजनेस करने और बॉलीवुड में टॉप पर होने के बावजूद प्रीतम बेहद सादगी पसंद इंसान है। वो पेज 3 की पार्टियों में, अवार्ड शो में और सोशल मीडिया में उतना ज़्यादा नहीं नज़र आते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि उन्हें स्टार बनने में नहीं बल्कि अपने स्टूडियो के कोने में बैठकर धुनें बनाने में असली

प्रीतम की एक अनोखी आदत की हम बात करें तो वो दिन में जो दिन का टाइम था उसमें म्यूज़िक कंपोज नहीं करते थे, उन्हें पसंद नहीं था म्यूज़िक कंपोजिशन करना। उनका स्टूडियो रात के वक्त एक्टिव होता है। प्रीतम के साथ रिकॉर्डिंग का मतलब है देर रात या सुबह 3-4 बजे तक काम करना। जब वो मुंबई आए थे तो उन्हें काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, और इसलिए वो नए कलाकार, नए टैलेंट और नए बच्चों को न सिर्फ काम देते हैं बल्कि उन्हें बड़े डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट भी करते हैं और उन्हें पूरा मौका देते हैं। तो ऐसे हैं हमारे प्रीतम दा। और फिलहाल दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी मुझे इशारा कर रही है कि आपसे शुरू का सफ़रनामा का जो सफ़र है वो यहीं ख़त्म करने का, अलविदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर किसी दिन फिर किसी मोड़ पर होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह से जुड़े रहिए AIL लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल के साथ। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का एआई लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1 बजने को हैं। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती है। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई।

0: से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
1: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। मणिपुर में 6 नगा नागरिकों की हत्या के मामले में सुरक्षा बलों ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर लगातार चलाए गए अभियान के बाद ये गिरफ्तारियां की गई। संदिग्धों से अभी पूछताछ की जा रही है जिससे मामले से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने कहा कि जांच आगे बढ़ रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है। अधिकारियों ने पीड़ितों को न्याय दिलाने और इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रस्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की भविष्यवाणी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अब तक श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान 370,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। इस वर्ष की यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन आज रात न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Mehvash Fatima. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards yesterday in New Delhi, Chairman of Jury Feature Film Jai Raj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahmayugam and Chandu Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370. Chairman of Jury Non-Feature Film Asim Kumar Sinha said Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Featuring Film Award. Best Short Film is Hamsafar in Marathi. He said Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. Award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book Nani Ruvude Nimagagi Nadi Ruvude Nanagagi Kannada Cinemada Tatvamattu Rajakiya. Lok Sabha Speaker Om Birla has given approval for a separate seating in the House for the 20 rebel TMC MPs who have joined Nationalist Citizens Party of India NCPI. Mr. Birla also gave his approval to the merger of 6 Shiv Sena UBT MPs with the Shiv Sena led by Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10:15 हुए हैं और श्रोताओं, ये वक्त होता है कार्यक्रम गीत सुनहरे का। गीत सुनहरे ये वो कार्यक्रम है जिसमें आप सुनते हैं ओल्ड म्यूज़िक, वो संगीत जो हमारे दिलों में छा गया है। और जब भी आप इस गीत को सुने, आप खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो आइए गीत सुनहरे कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ। फिल्म का नाम है शागिर्द, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार हैं मजरूह।

ढा ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो

गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म राम और श्याम से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। संगीत दिया है नौशाद ने।

आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम। आवाज़ें मुकेश की हैं और संगीत यह है मजरूह ने।

चलिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है नाइट इन लंदन। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की और संगीत यह है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है मिलन, आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

चलिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म हमराज से। आवाज़ें महेंद्र कपूर की, संगीत दिया है रवि ने।

आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है फर्ज। आवाज़ें सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की हैं। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है छोटी सी मुलाकात। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई,

आइए सुनते हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है लाट साहब, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी की और संगीत दिया है

शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए AIR Live News 24x7 चैनल के साथ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात के 2 बजने को हैं, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में

0: के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे DigiLocker परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी और उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस वर्ष 15 मई से 21 मई तक हुई। CBSE ने बताया कि इस वर्ष की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96.78% छात्र छात्राएँ उत्तीर्ण हुए हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की भविष्यवाणी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्ते को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। अब तक इस यात्रा के दौरान 370,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। इस वर्ष की यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। खेल खबरों में फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अनाउंसिंग द अवार्ड्स यस्टरडे इन न्यू दिल्ली, चेयरमैन ऑफ ज्यूरी फीचर फिल्म जयराज सेट, ममूटी एंड कार्तिक आर्यन हैव वन द नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन बेस्ट एक्टर कैटेगरी फॉर देयर मूवीज ब्रह्मयुगम एंड चंदू चैंपियन। ही सेट यामी गौतम विल बी गिवन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस इन द फिल्म आर्टिकल 370। Chairman of Jury non-feature film Asim Kumar Sinha said, Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Featuring Film Award. Best Short Film is Humsafar in Marathi. He said, Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. Award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book, नानी रुवुदे नेमगागी नादी रुवुदे नानागागी कन्नडा सिनेमाडा थत्वमट्टु राजकीया। The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of the parliament beginning on Monday. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence on Monday and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislation are scheduled to be taken up for discussion and passage. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal yesterday addressed the India-Estonia Business Forum in Tallinn during his visit to Estonia, calling for deeper collaboration in trade, investment, innovation and technology. The forum brought together senior government representatives, industry leaders and business delegations from both

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयरलाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2:10:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ सरिता, लाई हूँ आपके लिए बेहतरीन नक में। कार्यक्रम का आगाज़ इस खूबसूरत से गीत के साथ, आनंद लीजिए इन नॉन स्टॉप गीत संगीत के कार्यक्रम का।

दोस्तों, इसी खूबसूरत से गीत के साथ फिलहाल गीत बाहर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए, या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास को और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं अभय जोधपुरकर और विकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कड़ू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्रात रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार

शिवसेना के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाए गए 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे DigiLocker परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई। उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस वर्ष 15 मई से 21 मई तक हुई। CBSE ने बताया कि इस वर्ष की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96% 7-8% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की चेतावनी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा एक बार फिर से शुरू की जाएगी। इस वर्ष यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शफक कहते हैं किरणों को रेस, और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक, धनुक, महताब, घटाएं, तारे, नगमे, बिजली, फूल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत एंड गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 4:10 हो चुके हैं, 4:01 और 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आराधना।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

दिशि दिशि गोपियमृ जावे वेणु नम्बाजे कानगा।

श्रोताओं, ये सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं उषा विजय कुमार, रागम चारू केसी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 जुलाई 2026। सुबह के 4:54 हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज आप कौन कौन से कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ पर सुनेंगे, इसकी आइए आपको बता देते हैं संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आओ योग करें। इस कार्यक्रम में आज तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में जानेंगे। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत हिंदी फिल्मों से, देशगान हम जिंदा हैं सतीश भाटिया की आवाज में। कार्यक्रम स्वररंजनी होगा 5:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस कार्यक्रम में एमडी अलीम खान का वायलिन वादन राग अहीर भैरव में।

0: श्रोताओं, सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना और 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर आधारित कार्यक्रम। सुबह 6:45 पर हर रोज की तरह आपके लिए लेकर आएंगे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ, जिसमें आज आप सुनेंगे बाल कांड। श्रोताओं, सुबह 7:10 पर कार्यक्रम होगा संगीतिका और सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग गीतों भरी और 8:00 समाचार प्रभात और हर रोज की तरह 8:15 पर आपके लिए लेकर आएंगे न्यूज इन इंग्लिश और 8:30 पर उर्दू में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून सत्र कल से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने कहा है कि ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एनटीए के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा परिणाम को चुनौती देने के लिए फर्जी दस्तावेज या एआई से तैयार की गई ओएमआर शीट का इस्तेमाल करना गलत है। ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपने नतीजे डिजीलॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार सीबीएसई ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी और उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस साल 15 मई से 21 मई तक हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके तहत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्री

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारा खास कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाई जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम। आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान

धीरे धीरे पेट फूलेगा। जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है। दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 5:30 होने को हैं। थोड़ी देर में होगा कार्यक्रम स्वर रंजनी।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में आइए सुनते हैं एमडी अलीम खान का वायलिन वादन राग अहीर भैरव।